0: नुकजाखा हिनके दै गोबांखे मारिथाय तामुनि हिनमाले अबखरै जरि कलायानि बागै बुबार बारमानि सालचि बानि सिमि सालनैजि सालनि बिसिंगन मसो बथाय थायनानि जेंगो बथाय राखा हिनके खागैसिनानि नांगौ हाइकेसे तेब बुबारनि बथाय थायमानि नुकजागौ हाइके जों आसिद जरा तिनिनि तां बिदि अ मसो गोथां खालायमानतै ककिसा खोनालायखा आव फायदि जों ताबुक खोनालायानो तिनिनि कक थुमरक कक मंगासेव साखलायजाखा सोकांगो जे बर' रक फरेस्टार तै फरेस्ट गार्डनि आचुक थायो अनलाइन निबिसिंतै कयलायरिखा बरकनि बागै हाइनहाय अनलाइन पर्टाल फियगजाक फिगनाय तामुनि हिनमाले गोबांखौ केन्डिडेट्स रकन' बरकनि लेंगुवेज सेक्सनाव लेंगुवेज सिलेक्सन खालायमानलिया एबा फर्म सय सयखे सुफुं मानफानो कक बरक एबा बांला ब कक बाय आमजुक मंग आचुकनाय आब' सुफुं मानियानि बागै तैबायसा बरकन' लेंगुवेज सिलेक्सन खालायनायनि बागै 6 जुलाइ 2026 एबा खनानि सिमि 8 जुलाइ 2026 जरा सालथाम रमै अनलाइन पर्टाल फियगजाखनाय जरा हिंके फुंनि दामचि दामफ्रुनि सिमि सारिखनि दामबा दामै सति थामचि जरा फिया अब जे बर' रक सोकांग कयलायरिखा बरकनि बागै सिमिसे हिनै ब साजाखा अफिसियेल वेबसाइटखा https://forestrecruitment.tripura.gov.in तै कैसा हंके https://forest.tripura.gov.in तापुगे ओ शाक्लाई मुंखा जेआरबीटी नि बखाखते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नि बागै एब्सेंट कैंडिडेट्स रखनो पाइथाकनि शेप रिजाक मुंनि उनकुटी नर्थ धलाइ डिस्ट्रिक्ट नि फाइनल एबा लास्ट डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंगनाय 9 जुलाइ 2026 एबा सांग्रं सालो खवाई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अंगनाय 10 जुलाइ 2026 फा सालो सिपाहीजला साउथ गुमटी डिस्ट्रिक्ट अंगनाय 13 जुलाइ 2026 तां सालो जराहिनके फुंनि दामचि तामफ्रुनि सिमि सारिखनि दाम दक ताम्मा जरा अबरक ओंखा जे केन्डिडेट्स रक डकुमेन्ट भेरिफिकेशन खालायमानलिया बरकनि बागै पाइथाकनि सेप रिजाकमानि साल रक तैब साजाखा जे केन्डिडेट्स रक डकुमेन्ट भेरिफिकेशन खालायखा फिया जेसा कायसानति सिलायना रक तंखा हिंके बरकनब हाइन साखानि अ साखलायजाक सालमारि अ जानिजा डिस्ट्रिक्ट तंनानि बागै साजाखा केन्डिडेट्स रकनो बेबाक नांमानि डकुमेन्ट्सनि अरिजिनल तै लगिव कांनै सेट खालायि सेल्फ एटेस्टेड फट'कपि रक तुबुइ माफायनाय हिनिब साजाखा हदा हामक्राय तै हदा रों दप्तरनि बोखाखतै बेबाक साकुप्लुं तै आबुक्तै चारि तंनाय बुमा रकन' सायमान दिनानि बागै कक मुं कायसानि बोखाखतै साखलायजाखा इन्डिया गभर्नमेन्ट 15 जुन 2026 सिमि 15 जुलाइ 2026 इंराजि बिसि जरा PMMBY एबा प्रधान मन्त्री मात्र बन्धना योजना स्किमनि कायसा आलायजा सामुं बोतां नाहारखा अ सामुं बोतांग बिसि टिचार एबा आबुनि साय गोबां उमरनि बेबाक साकुप्लुं बोरै तै आबुक तैचारि तन्नाय बुमारक पुइला चेरायनि बागै वाइनै खेप बेबागै 5000 एबा बासाय रां तै आबुनि यागुलो तैसा चेराय तुमुं बोरै बोसा ओंखाहिनके कायसा खेप एबा कायसा इन्सटलमेन्ट बेबागै 6000 एबा दक्साय रांनि सेप माननाय अरतिब साताय क्लायो गभर्नमेन्ट एमप्लयि बोरै रक एबा सेबुक ख्लाय तंनाय बोरै रक तै PSUनि बिसिं फबजाक सामुं ख्लाय तंनाय बोरै रकन' कारै अब रिजाकनाय हिनै তেই যে অবনি বাগৈ নাংমানি রকমখা এস টি এস সি সার্টিফিকেট বিপিএল রেশন কার্ড ব্রী রকনি মূ টংজাকা নামায় আয়ুষ্মান কার্ড কিষাণ সম্মান নিধি কার্ড রেগা জব কার্ড এবার এনুয়াল ফ্যামিলি ইনকাম এবার নুখুং বিশিও আজিমা 8 লাখ নিশাই গবাং মাংলা অঙ্গনওয়ারি ওয়ার্কার্স অঙ্গনওয়ারি হেল্পার্স এই আশা ওয়ার্কার্স রকব এপ্লাই খাইমাননাই হিনেই সাজাখা কাহামকে সিনানি বাগৈ গানাগিনি আমচাইনি সিডিপিও অফিস এবার অঙ্গনওয়ারি সেন্টার গরংনানি বাগৈ সাকলাই যাখা
1: জরাও সেবুক বরফলামানী কক সাইমালায়ন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবার বা IOCL বরফলাং জাগানো খরক সা সাই বারা নৈজি ব্রুহাই এবার বা জায়গাও বরক লাং জাগান অ্যাপ্রেন্টিস ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড নি বাকি ও জায়গাও বরক লাং থানিও গবামুখী নুনজাক আবনি যে চেংমানী এবার বা ফর্ম ফিল আপ নি জরা 29 জুন নিশিমি চেঙ্গিনি রেখা তে আবো পোর্টাল চালু দায় এবার নরক তাবো ফান যে রক ফর্ম ফিল আপ খাইনা মুসুঙ্গি দায় রক অনলাইন নরক ফিল আপ খাইমানাই জুলাই তালনি 28 জুলাই জরা সারিখনি দাম্বা জরা নি বিশিঙ্গন আও বিশিঙ্গন রকনি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন বাই তে ট্রেড এইড টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস আবো হাইব লাংজাকাই আবার বিশিঙ্গ সাইমানো নগুই টঙা জায়গাও হলদিয়া বঙ্গাইগাঁও গুজরাট মথুরা প্যারাদ্বীপ আবো হাই যত থাই মিলি উইন সা সাই বারা নৈজিব্রীহাই ভ্যাকেন্সি দো আজারও আবনি বাকি তমুন ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস নামায় মানি ন কেমিক্যাল প্ল্যান্ট যে বিএসসি পড়ি পরিচাক রক বরক 50% নাম্বার নামায় দে বিশিক থামনি পরিচাক ইমানো ম্যাথমেটিক্স এবার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি আমার হাইরক পরিচাক নামায় তমু আজাগাও ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ফিটার পোস্ট মেকানিক্যাল বাকিকে মাধ্যমিক পাস নামায় আবনি বাকি বিশিকনৈনি আইটিআই সার্টিফিকেট বানানি নামায় আবন কারিফানো উমর রকনি জায়নি থাকা হাঙ্গে 30 জুন 2026 বিশ নাই বয়স জি চার বিশ সিমি জিব্রীহাই বিশি ইংনানি নামায় তমু এস টি এস সি পিডাব্লিউ বিডি বরকনি গাঙ্গাই উমরনি 10 বছর এবার বিশি চিহাই বরকন রিল্যাক্সেশন এবার এইচ রিল্যাক্সেশন রিজাকায় আও অব সাইমানী বাকি নরক তেইব নাইমানো ওয়েবসাইট IOCL.com অ্যাপ্রেন্টিসিপস অবহাই ওয়েবসাইট থাঙে নরক পোর্টাল থাঙে মানায় তে আবনি বাকি নরক তাবুনি সিমিন নরক বাকি অনলাইনে লামা ফিয়াক তে জুলাই তালনি 24 জরা অবনো এপ্লাই খাইমানো গাগে জব সাইমা লাইন ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স আজ জায়গাও বাকসা খাইনি মুসুঙ্গি দায় রক নরক বাকি ফিগুন রেজাক ও 2026 02-2026 বংখা এডভার্টাইজ নাম্বার তমুং নরক আজ জায়গাও খাইনি মুসুঙ্গি দোকানকে আজ জায়গানি গরংনানি বাকি থাই ওখা কমান্ডেড IAM IAF বিমানাপুরা পিউ বেঙ্গালুরু 5600173 আ জায়গাও ক্লাং জাগনাই মাল্টিটাস্কিং স্টাফ দে আবনি বাকি কায়দ ক্লাং জাগনাই জেনারেল লগনি বাকি কায়থাম ওবিসি রং বাকি কায়নাই দে আবনি কারি ফানো UWS রঙনি বাকি কাইসা উমরংনানি নামায় বিশি চিচারনি সিমি 25 জরা আবনি বাকি বোর্ড এক্সাম এবার খাইবা ইউনিভার্সিটি লেভেল জেসকাইপানো ইয়াহমানি না ম্যাট্রিকুলেশন আবহাই পাস নানি নামায় তমু অব নি জরা অংখা পাইথাক সালমারি থামচি নি বিশিঙ্গনো এমপ্লয়মেন্ট নিউজ নি বিশিং যে অঙ্কলজাক দেই তমুনি আবনি বিশিঙ্গনো নরক এপ্লাই মা খালাইনাই জায়গা থাকাখাই গবাং মা অজরাও আচুক থাইতো দোনো গাইনরক আপনি বাকি ওয়েবসাইট দগো থাঙিনাই মানিনাই नोंतमु वेबसाइट नायनो थाखाय www.dxcindia.gov.in नोंओ जागाव बनाय माने आबोनो कारिफोनो est-utxc@nic.in आ जागाव नरक तमु नायखांखाय हायना हाय नरक नायमानाय ओ वेबसाइट नब आव गंगाय सं आसु जरा तो साइमन लेखे गंगाय तेब अजराव तो साइमन नि बागै हिंगांगे सं तंखफिया आङो जरा एम्प्लॉयमेंट न्यूज सं तो साइन तो आबनो कारि इन्फॉर्मेशन आनि थानि जे तं मानि थासिं दां सानानि शेप मालियाबा गंगाय आं अजराव इन्फॉर्मेशन बो किसा साइरि वन गे इन्फॉर्मेशन तंगि तं मानन थानि अजराव जेरक ल एन्ट्रान्स रिनानि हिनै वान सुगि तंगाय र एबाखा फर्म फिल आप खलाय जाग्रक नरकनि बागै जुलाइ तारनि 9 तारिख जुलाइ सांग्रंशालत बीर विक्रम मेमोरियल कलेज आबनि बागै थाय रिजाखा एन्ट्रान्स नि बागै डेट का रिजाखा ते फुंनि दामचिसा निसिमि दामसा जरा फियाबा रिपोर्टिंग टाइम हिंके फुंनि दामचगु तामै सति थामचिनि बिसिङुनो नरक थांगै मासगैने आ जागाव नरक एप्लिकेशन नि आइडी आबरखन तलांगै ल एन्ट्रान्स नि नरक ताबफान जेरक नरक नि जे आइडी र कलेक्ट खलाय एबाखाबो डाउनलोड खलाय करक नरक कलेक्ट खलाय दि आबनो गारिफानो आनि थानियो ते गाइसा अजराव तंग फायनाय नैचिनै सालमारिव खाथि मोताय नाय आबनि बागै आफ्रोनि सिमि फायनाय नैचिनै नि सिमि नैचिसार जुलाइ जरा खाथि तेर ओंनानि फासिं थाङै दङ आबनि बागै गोबां मा लुवाजि मुं हुकुमु मुकुमु पान्दानो थै लुवाजिखा चिनि त्रिपुरा हास्थानि बरम गोनां मन्त्री अख्रा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा आव अबंख बिसि बुरुम बुरुम न साना थाखांखाय चतुर्दश एबाखा बिब्रि मोताय आ जागाव ओंमानि सों नुजागै दं फिया गोबां मा आ जागाव नरक जे थाङैनाय मानाय र एबाखाबो नायना मुसुङै दं नायर थाङैनाय मानाय अ जुलाइ तालनि नैचिनै सालबारिनि सिमि नैचिसार जुलाइ जरा गांगे हायनहाय देगायसा अजराव जेरक नरक ICAT बेदेकनि को नरक ऑडिशन दिनानि बागै वान सुगि तंनाय रक नरकनि बागै ब ककतमा काहाम नरक अ तालनि पुरा जरा न जरा तंग एबा खाबा ओ जुलाइ तालनि थामजिसा जरा त तंग न आबुन कारि फन अगस्त ताल ब तंग अब हाय जरा जे मानान साइ मानानि मुसुनाय रक नरक वेबसाइट ओ थाङै ICAT.tripura.gov.in ओ थाङै नरक करङै माननाय ते जानिजा डिस्ट्रिक्ट ओ थाङै नरक आरो थाङै मालायै माननाय ओंखाय अजराव किसा नरक न सावै बरिनाय नबारतिबानि हालक दिनै नखा किसा मगजाक तङानो फेरांखौगै जुदा जुदा थायो वादै वावानो सालनि तुंमारि दिनै ओंगानो 36 डिग्रि सेलसियास नि गानागिनियाव दै तङानो जांमारि 27 डिग्रि सेलसियास नियानि जे तुंमारि 36.10 डिग्रि सेलसियास ते जे जांमारि 26.4 डिग्रि सेलसियास नंबरति हकुनि बांमारि राव रा ते किसांमानि मारि दक्सिब्रै फियाबा फुंनि दाम बातामै सति थामजि जरा वाते वाखा 3.4 मिलिमिटार फेरांखगै जुदा जुदा थायो वाते वानाय हिनै हजाखलाय रेजाखा नर्थ धलाइ गुमटि सालथां सिपेही जला ते साउथ डिस्ट्रिक्ट फेरांखगै वाते वानाय हिनै हजाखलाय रिजाखा आसक जरा
0: आव जों थांदे थांदे चिनि याफाबो आसिक जरा करै खाबा जों माबा जालासिनाय दिनैनि अपान्दानो संसाखा तै कम थिंका आं सीमा तै आनि लगि
1: आं जिकाश्मी
0: हायके जतनन हामबाय फिया थांनानि सिगां जों रोजाबुं थाइसा खाना लायानो दिनैनि रोजाबुंगो खरांग रिमानो उषा देव बर्मा

मंत्री बक्रक नरेंद्र मोदी मिया गुजरात नि सानंदाव सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर एसेंबली एंड टेस्ट केंद्र न सेंगिर का अब स्नामाव रंग बाई का खक्स निसी स्नि साय बारा रजाक नि बकबांग रंग अब चेंगजाकमा बाई आरो बिसाव बारा रजाक चिप स्नामै मानाना अब मालखंगुसको तारन खबै जुदा जुदा स्नाम खर सामुंग फनांग जागाना सानंदाव मंत्री बक्रक कताल तांगसे बाई स्नामजाक ओ स्नाम खटन बेराय नायखाथाय आरो सामुं तांनाय रक बाय कक्लाम सालायखा कन्द्रिनि मन्त्री अश्विनी बैष्णव साका आरो स्नामै तिसाजाक मेड इन इन्डिया चीन जापान आमेरिका ता युरोप रहर जागाना अब बाय भारतनि तांसेब हायुंग सिनेमं मानाना मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी मिया राजस्थानी पसपदार खक्सा रासाय बा साय रेजाकनि बकबां रांनि हामख्राय गोनां तांबोतां न सेंगि रेखा ताय हलं थं काहि रेखा ओ तांबोतां तां बेखरेब सकजाक नाय रेखालाय मुं ताय सामुं मान थग्रमुंग नांमा बारजा यासाकाना मन्त्री बक्रक जोधपुरनि बिरकुं खलानि कताल टार्मिनाल न बसेंगि रेखाथाय हायुं कताल ग्रीनफिल्ड रिफाइनारि ताय पेट्रोकेमिकल तांबोतांन हाकतनि बखाक याफारखा मन्त्री बक्रक कक नारकमा साखा ओ तांबोतांनि सेबबाय राजस्थानि स्नामखर रांबक सेंमुं ताय सामुं मान थग्रमुंग कताल सेब फियक जागाना मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी खाना निसिमे नखास हालदकनि बागै इन्डोनेसिया अस्ट्रेलिया ताय निउजिलेण्ड बेरायमाव थांगोन बुहार नायखुनि सालका बेदेकनि तांग्रा रुद्रेन्द्र टेन्डन साखा जुलाइ तालनि दकनि सिमि चार सालमेरै मन्त्री बक्रक इन्डोनेसिया बेरायमाव थांगोन बेरायमा जरा मन्त्री बक्रक प्रेसिडेन्ट प्रभु सुबियन्तो बाय खाक नैनि ककलाम सालायान ताय जाकार्ताव भारतनि तंनाय रग बाय सानजा पान्दा अ मानजागोन जुलाइनि ताल नि साल चारनि सिमि जुलाइ तालनि चारनि सिमि सि सालमारि वा मन्त्री बक्रक अस्ट्रेलियाव बेरायमा तंगाना ब आरो अस्ट्रेलियानि मन्त्री बक्रक बाय जुदा जुदा नांकुकमा बाबाया कक्लाम सालायन्थाय भारत अस्ट्रेलिया सिइओ फोराम म मानजाकना कक तंगो बेरायमा पाइथाखौ मन्त्री बक्रक सि साय सिसा सालमारि सि ताय सि सा सालमारि निउजिलेण्डाव बेरायमा थांगाना बुहा मन्त्री डक्टर एस जयशंकर टेनिनि सिमि हाकत किसासे काटार बाहारायन कुवेत ताय उमान हाफांनि ओंगै बेरायमुंग जेंगाना अतालनि सालसि सालमारि जरानि बिनि अ बेरायमुं सालथां हाकतरनि बुहा मन्त्री ताय आब बाय बाक्सा खतर अजारक बाय मालायमाव अ आमसायनि बेबाक हामख्रायना तै कबिति कक्लाम सालायना उमान बेरायमा उल सालसि थाम जुलाइयाव निउयर्क थांगोना आरो जातिसंघनि नायमथांनाय मथानि पान्डाव मानजाकनानि कक तंगो आबनि उला मोसां जयशंकर सालसि ब्रै ताय सालसि बा जुलाइयाव ब्रेसेल्सआव फिल थाम भारत इउरोप मथा बानिया ताय तांसेब मथानि पान्डाव मानजागोना ताय इउरोपनि इउनियन ताय बेल्जियामनि बुहाति न तैयै मन्त्री ताय आदं संबाय कक्लाम सालायाना सालसि सालका आरि रेलवे सालसि सालका हास्ते रगनि बिसिंग अबन पुइला मेमो ट्रेन सेपसाप मिया आगरतलानि सिमि सेंग्रोखा मन्त्री अग्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा आगरतला रेल स्टेसनआव बानानारै आगरतलानि सिमि करिमगंज र मेमो ट्रेन न सेंग्रोखा अ ट्रेन ककपि सालन कारै बिसकांतां साल डक सालमारिनि सिमि सयावै सलिबाना पान्डव मन्त्री अग्रा साखा हास्ते रेल थांलाइसनि सेपसाप डाक्टिन सासावै दङ आसामनि चन्द्रनाथपुरनि सिमि साब्रुम जरा रेल लाइन डाबल लाइन खालायना बागै सार्भेनि सामुं पारि जाखा स्राय स्रायके प्रजेक्ट रिपोर्ट रजाखा यां जिरानियानि सिमि बुजं नगर जरा कायसि ब्रै किल'मिटार कटार रेल लाइन सिनामनानि सार्भेनि सामुं सलुवै दङ बसाका हास्ते हाफांनि बोखाकै आगरतलानि सिमि जम्मु पुरिताय गयानि बिसिंग दादाक सिदाक रेल सलिनानि बागै रेल नायखंनो कयमुं बलाय रहर जाखा अमृत भारत योजनानि धर्मनगर कुमारघाटाय उदयपुर रेल स्टेशन न कतालके सामनानि सामुं चलै दङ अबनि बागै रेल नायखंखक सुकुसिदक रोजाक दक्षि रासाय रांनि गसिमुं रोजाखा पान्डव मान्जाखा रोखामुं मन्त्री सुशान्त चौधरी एमपि राजीव भट्टाचार्य एमएलए मिनारानी सरकार लामदिं डिभिसननि डिआरएम समीर लोहाने सेमा प्रसाद मुखोपाध्यायनि लांमानि नाहार मुंथाय बसंन हामजाक मुनि वानसुकमुं तिमिया आगतला टाउन हल प्रदेश बिजेपि जुब मोर्चानि चेतन बाय सोलोंनाय रोंनाय ककमालामुं पान्डा सांसा जाखा अ पान्डा डक्टर सेमा प्रसाद मुखोपाध्यायनि लांमानि वानसुकमुं नतैयै शुक्रबै ककनारेखा मन्त्री अख्रा पान्डा कुबुनि बिसिं ककनारेखा एमपि राजीव भट्टाचार्य आगतला पुर नायख्रायनि मेयर दीपक मजुमदार प्रदेश बिजेपि कास्को अभिषेक देवराय जुब मोर्चानि कास्को सुशान्त देव आकाशं हायंका फुटबलनि राउन्ड अफ
16 ni thumung kainiyo Morocco tai France quarter final lo kasanai ungsuka puila thumungo Morocco goal kai thambuk jani pher bai Canada na mechen khatai kaisa thumungo France goal kaisa buk jani pher bai Paraguay na mechen kha nobar tibar ni sekang bari ko mungo saja kha tini nokha chumui kobol jak tonga na pherang ko goi wati phai mano phia haste ni hangkor kaidok salsi dolai gumoti salthang sipahi jola tai salgra hangkor am chaiyo pherang ko goi mojomok bang wati phai mano mia phungni simi agartola tai abani gana gini am chaiyo Tabuzarawati Paikar, Tam Dosomics are millimeter, Tini Sakanitumari, Tam Sidok degree Celsius, Ningana Ginitongani, Tini Pungo, Kamanitumari Tonka, Nichidok Dosomic Bri degree Celsius. Coctumapor Mung Tabuzarati, Orono Paika, Ulnikok Borog by Coctuma Aoyangana, Horny Dams Nitamus Hoti, Brisiba War.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
5: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: শুনলেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে সমাচার প্রভাত, আকাশবাণী বিলোনিয়া। এখন শুনুন অনুষ্ঠান যা দেখলাম এ জীবনে। এতে আজ বলবেন আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে কিঙ্কর নারায়ণ দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, নাট্য ব্যক্তিত্ব, গীতিকার ও সুরকার।
9: নমস্কার, আমি কিঙ্কর নারায়ণ দত্ত, একজন অবসরপ্রাপ্ত হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। ছোটবেলা থেকে আমার লেখালেখি এবং সংস্কৃতি চর্চার একটা অভ্যেস রয়ে গেছে আমার, সেটা আমার পিতামাতার উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে হয়েছে। এবং আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন থেকেই নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। যখন আস্তে আস্তে বড় হই, কলেজে যাই, ইউনিভার্সিটি যাই, তখন আবার নাটকের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি নাটকের গান লেখার যে চর্চাটা সেটা শুরু হয়। তারপর আস্তে আস্তে আমার চাকরি জীবন শুরু হয়, শিক্ষক হিসাবে আমি চাকরিতে জয়েন করি। আমি বায়োলজির বিষয় শিক্ষক হিসাবে চাকরি করতাম। চাকরি করতে করতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নাটকের আগ্রহ আমি সৃষ্টি করতে থাকি, নাটক লিখতে থাকি এবং প্রচুর নাটক তাদের উপযোগী করে আমি তৈরি করতে থাকি এবং তাদের দিয়ে আমি নাটক শো করতে থাকি।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के इलाकों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू हो जाएगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: শুনলেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি সংবাদ আকাশবাণী বিলোনিয়া। এখন শুনুন গানে গানে অনুষ্ঠান। গানে গানে অনুষ্ঠানে আজকের প্রথম গানটি শুনুন রাজা হিন্দুস্তানি ছবি থেকে। গানটি শুনুন অলকা ইয়াগনিকের কণ্ঠে।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति

0: की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: শুনলেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি সংবাদ আকাশবাণী বিলোনিয়া। এখন শুনুন দেশবন্দনা অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है।

0: राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: শুনলেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি সংবাদ, আকাশবাণী বিলোনিয়া। এখন শুনুন আগরতলা কেন্দ্র থেকে এফএম জয়ন্তের ককবরক অনুষ্ঠান।

ਸਭ ਨੂੰ

Oh, no.

살래 가시 연락이오 또유 가지고 무슨 일 커시냐.

지금 아, 나 지금 나 지금 나 지금

0: और सामने नहीं मूवता हूँ। खाखलायो नरो खा सिनेमा खाना नै नै ओ जरा साबो कक दुगो त हेलो हेलो
1: हेलो दीपर कहाम तखो गने ब्लेचना
0: दीवर कहाम सामका
1: माखानी जरे
0: आइ सारी और सामुं साबै र सबजक र सामुं ताखो
1: सिनि ताखो अखरा खिरुद देबरमा बेरे सबद र सामुं
0: आ नन साव ताखो अखरा खिरुद बाय आ खिरुद देबरमा बाय र सबजक र सामुं वाखलो नै ताखु जरिब लगितौ रे नागरा ना छाब त्यही छाब त कक दुग छाब सय सय छै मान खा हेलो हेलो आ कादर नि थाका कक रे ते छाब त चिनी पांडा नरो का दादक सिदाके सोशल मिडिया एन बिसिंग तै खनाय मानौ अनलाइन खनाना नि गनरो गुगलाव थांनानै टाइप खालामदि एफ एम उज्जैन त टाइप खालामनाय सार्च खालामखांके हायखौबा माइकआव सादि एफ एम उज्जैन त पुलानि सार्च बटनआव क्लिक खालामदि आरो प्ले बटनआव क्लिक खालामखांके नर दादा सिदा खैसिनियाव पान्दा खानायबो दं माने हेलो लामसको सावंका ताखु
2: सिंने दुखिया मान्दैने
0: आ ताखु दुखिया सारी और सब्जेक्ट रसाम सब बैर सब जग रसाम
2: बुशराय
0: बिशराय लोगी तंग दे ते शब तंग कॉक दुग दो दी फाट फाट के कॉक दुग बैक रंग दे 2 3 2 6 2 5 3 कॉक दुग नंबर हेलो
3: हेलो
0: लामसो को ताकुक सारी और सामु साबाई रे सब जग रसाम কিরো দেব্রমা বের সব জাগ রে সামো নি নি সিনেম জম্পুই জলানি তাকু বিশরাই থাইসিং তো নি বুঝতন ছাই মেলে ফিয়া নি লে সাই থাকা বেলে হামবাই নাগে না তাবুং নি চাদা সানো তাম তা বো ভাই খা খালাই চা সানো কাঠছিং নি থাকা

0: हेलो
1: जम्पुई जलानी ताकू बिसर आइसारि
2: हामजाका सोंबो खाथा तों जागौ
1: बनाजी बिथि बनाजी बिथिनि बुफा बेलाय रसा मुंनो वाइस वान सुगिनाय दि निने बारा बासिं जरा कैसे जरा नो वन सुगिनाय दि नों न नुगन आइ आबो मखल बुसकांग आ
3: थांगे आ आम थनि नो पाइला बंगा बतो पाइला बंगा वो से को नैगा आ जाय नैगा पाइला बंगा वों गानि मानि पारंग सान दा तो तो बै रिचा तब तो
1: दाका बेलाय हामबाय ताखुंग नो बेलाय हामबाय हेलो हेलो
4: हेलो
1: आ लामसगो साबंखा
2: आबन
1: बगे कॉल खलाका आबन साइ खनाका आबन बो छाना मुसु माने बन बखले बुसुक तंग खबि तो खता कक मा साका आसु आसु नो आबन दादा सिदा के नग न कक सान नै तिनि नि चिनि नारवाई तंग संगीत नाटक एकेडमी नि एवार्डी राष्ट्रपति पुरस्कार बाय नॉमिनेटेड दिं जा बरम गनां तिपुरा हास्ते नि रिसाब करन सदागर दे ब्रह्मा फिया बनि मुं सयं के सूर्य कुमार दे ब्रह्मा ओ मुं बाहेके फाइका सेलायनाय ते कैसे कॉल फाइतो माबा या सगै नायसिनो बखा खेप खेप बुंनि तंगन बरबो हेलो खुलुमका लामसगो
2: खुलुमका ए
5: ओ दादु न जान न कासे खनाना मुतुम छु
2: आं ए सादे बबो न
5: जान न कासे खनाना मुतुम न का ओ आ बात हे बार राजा
2: ओ
5: दारि मा थांगो नि सामान्य
2: आ जान न ए
1: ए आ नंबरन छिमि कॉल खा नंबर नंबरन छिमि कॉल खालाय नेनि मुछिनि मुंतिसा सादे
5: राजा न ने
1: बो खनाय दङ दा दाग सिदाके नों बाबाय कक सायमानाय सादे
5: आबुन खनागा दैद्रा
1: ओइ
5: मोन नम्बर बाय जे कुनो समय दो मन
1: मानाय मानाय
5: माने जे नों स्टुडियो जतो मानाय
1: मानाय मानाय ताबुं सिम मानाय कायनि न मानाय दा सागारा दे नों बुरन सिमि कल खालाय दं नि सिनि मुं किसा सागारा दे
5: आंखै बयनि अजय बर्मा
1: खवायनि ताखु गजय चिनि तिनिनि नारवाय बरम गोनां रोजाब गोरों दादु सदागर ताम सोंना मोजों बा ताम खोनाना मोजों मोन खुगदै सिलाय संसारदै
2: आरो
1: दा बेलाय हामबाय सिलाय संसारदै कल तो फाइमा

0: Hello.
1: No,
0: Funkaham, Kolumka Lamsago.
2: Tim Kolumka.
0: Hello.

0: कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरल के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जेनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये तो कुछ सुन लें दिल्ली केंद्र থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ আকাশবাণী বিলুনিয়া। এখন শুনুন রাষ্ট্রীয় সেবার অনুষ্ঠান বিবিধ ভারতী।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से, आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपकी पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाही गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ये बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंकी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की, और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज, सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखू जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैली के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
1: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
2: कौन
1: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
3: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
1: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
4: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
5: भला हम कौन होती है
4: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
5: चलो।
1: इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
3: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
1: जी हाँ, आप एकदम सच के।

0: रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
1: परंतु देवी,
0: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आर में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
1: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
0: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आलीपुरी का हम चले यहाँ।

0: अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी ईरावती ने महाराज।
1: लगता है ईरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी ईरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकुला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति? महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन रहा हो कान में सुनिए।
1: हाँ।
0: मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जयसिंह को सब समझा दो।
0: अभी समझा देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचे। जयसिंह इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजी आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे श्यारे, गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
6: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेकर चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरी के सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े।
5: मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला न हो।
5: मेरा तो अंदर जा रहा है, सारे शरीर में
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो ये दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम, तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
5: मैं आपका पाल सका हूँ, सुना तो मेरे बात मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
6: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
6: देव की कैसी आज्ञा।
5: कौन जाने मैं जीव या मरूं, श्रवण करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुके हो वो क्षमा कीजिए।
3: नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
6: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
6: देवी की जैसी आज्ञा। आइए आइए भगवान।
0: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना।
1: और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमोदवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन और रिकॉर्ड तुम? आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी के अंगूठे।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह,
1: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
0: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्यगण, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढ कर वहीं लाया।
2: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है। अच्छा सखी, तुम भी मुझे बना रही हो?
1: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। हाँ? तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
0: स्वामी की जय हो।
1: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में जी भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़े प्रेम भरे चित्रण से देख रहे हैं?
1: ये छोटी रानी इरावती है।
0: ओ सखी, महाराज के प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है। तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
2: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
2: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रोट गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रोट गई थी?
0: स्वामी जी जय हो।
2: प्रिय,
3: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
2: मित्र क्या बताऊं, उन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझे अभागी की तो महाराज से स्वप्न के प्रति भेद नहीं हुई।
0: महाराज इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
2: उत्तर क्या दें बकलावल का, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।

0: बेचारी बकिया वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरन चले जा रहा है। आ, आ, आ, उसे भगा ले।
1: चले महाराज, घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
2: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं।
3: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
2: बेचारे को सांस नहीं काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हाल चाल जान ले। और
3: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
2: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
3: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही चक्कर क्यों नहीं मना लेती?
2: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
0: सुना स्वामी ने, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
0: ये कृतघ्न ब्राह्मण, ठहरिए आइए हम दोनों उस खंभे की वट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक ब्राह्मण पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
1: अच्छा तो ये बात है समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केत की ये कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: कहाँ है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छुपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई।
4: देवी रावती,
1: सखी बकुलावली का ये किसान है। बकुलावली का तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया
2: तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। तो मेरे से छोटा हुआ कबूतर कैसा नहीं आके रहा।
6: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना।
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सखी बकुला वाली का मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
7: अच्छा तो ये सब इस ब्राह्मण के करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
3: यदि मन नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे प्रश्न देता?
7: मैं सब

अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दौर पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले

विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न हार

विशापति महाराज अग्नि में प्रबल वन उत्सव।

0: जय हो। विदर्भ विजेता आर्यपुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजे देव, विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
0: आपके मन की सात पूरी हो। आर्यपुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। हाथ के लिए अशोक का ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
2: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियां आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
3: ले आओ।
2: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो। महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आके देव, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमार, आप यहाँ? जय हो राजकुमारी की जय हो।
0: अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सिंह को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी है।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सिंह हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य स्मृति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सिंह को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री स्मृति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
4: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
5: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप?
4: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
5: हाँ वही है। प्रणाम भगवती, कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
5: हाँ महाराज, अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
5: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बिगड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
0: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यह तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
1: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
5: भैया आप भी तो?
1: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
0: क्या हुआ? क्या सब लोग एक साथ रुक क्यों गए?
6: जानकारी है वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
0: कोई हुआ ना जिसका भाई था?
7: डरिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघुमान होकर इधर आ रहे हैं और डाकुओं ने भैया को अकेले छोड़ दिया है। हम
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ही मालविका फिर यहां दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहां महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
1: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
3: ऐसा ना कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
1: वो क्या?
3: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
1: राजकुमारी, वो तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी रात का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
1: ओह, मेरा जीव इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ। फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ा कर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों के ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
5: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
5: जय सिंह। रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी रावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को नहीं मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था। हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
4: देवी की जैसी आज्ञा।
5: मालविका इधर आओ।
6: प्रस्तुत हूँ देवी।
5: आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए।
6: आप लज्जा क्यों रही हैं? मालविका को ग्रहण कीजिए।
4: देवी,
6: महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे मजाक करते हैं।
7: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
8: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक टैग लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं। बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
2: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
2: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहाँ गाना सुनते हैं।

आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली

0: हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे। हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा ची कामा कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी
1: जनाना रोल आ
0: हाँ,
1: रहा है।
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था,
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतियां क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत
1: आज तक
0: बहुत
1: उसकी
0: ज्यादा
1: रीलें चलती हैं, और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं
0: करेक्ट
1: जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी
0: ओ
1: है।
0: यस ऑफ कोर्स। हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल।
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त,
1: एटीज वाला दौर जो पूरा
0: हाँ हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे, और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे,
1: हाँ,
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है, और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में,
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग,
1: हाँ
0: काला नाग राइट, बीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू,
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो आई विल नेवर फॉरगेट ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे,
1: अच्छा
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग
1: अरे गजब
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी
1: बाप रे
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में, तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना,
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई मैं बताऊं क्यों, क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है,
1: बिल्कुल
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती, मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है,
0: करेक्ट,
1: वहां
0: करेक्ट।
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है, तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ,
0: करेक्ट,
1: आखिरी रास्ता में, वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही और उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था,
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो, अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी, तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट, सब लोगों को ऐसे जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे, और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे, मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे,
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं, वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है,
0: पूरा पूरा, दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है मुझे क्या करना है मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: अपना फर्ज निभाओ
0: उसमें वो रहते थे, तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट, तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे क्योंकि उनको

0: मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है, और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था, मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी न किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है।
1: Okay.
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं। बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको देखते बैठेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम

0: आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त, करीबी दोस्त है, उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है, तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़ के। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ, वो अजंठा में जा ही नहीं पाए,
1: अरे अरे अरे
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है,
1: बिल्कुल
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहां हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: श्योर।

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: ओके, फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी फैमिली चल रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी, और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन,
1: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया,
0: बिंदु जी के साथ, सो रहे और वो जगाने आती है
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
0: दिखाऊंगी
1: ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
0: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
1: बहुत ही अलग,
0: क्या लीग थी वो।
1: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंद्र कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया. मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
0: बिल्कुल,
1: पर
0: लेकिन
1: वो इतनी
0: कुछ
1: ओवर द टॉप नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी.
0: यस,
1: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी. तो जो चाहिए वो करो. मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था.
0: अच्छा.
1: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी. और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए. फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं. फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था. तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी. आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म. ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी.
0: बिल्कुल.
1: जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है.
0: हाँ.
1: ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है.
0: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
1: प्लीज.

0: जब वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकथनकर, इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसर, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी, तब
0: और
1: तक
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और

0: के बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी, क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
1: हाँ।
0: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को
1: मिला
0: नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
0: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसे मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
1: राइट,
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है, क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
1: जी।
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
0: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवान घेवान कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को अभी हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी। तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था।
1: बिल्कुल,
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है
1: जी।
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी। तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर, तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है, तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में। ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
2: এতক্ষণ শুনলেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিবিধ ভারতীর রাষ্ট্রীয় সেবার অনুষ্ঠান আকাশবাণী বিলোনিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে শুনবেন প্রথমে দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ, এরপর শুনবেন ইংরেজি সংবাদ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने

तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनो एक तराना, नया एक फसाना, कि आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: மாமானி
1: ஆமா ஆமா
0: நீ நீ தான் சொல்ல மாச்சாரி பைக்கு நீ நானவ மைக்குரு ருதி சாரு பைக்கு கஹாம்கே கொலபோ இப்பா கசா கத்தி சாய் ருதி நுங்து துக
2: தாம
0: ஓ பரக்சான பர மாலை கசா
2: பர மாலை நீ ஆ மாலை சாபை மா ஜாக்கு தாம பிசாரு குங்க சக் சக் அச்சுதாக மக்கரா ஜாரா ஹா
0: தாம ஹிசா சுமி தினை கா
2: தாய் தாம ஒங்கனி கும்பாண்டா சானோ কব্ব চাবা
0: কব্ব নিবু চাবা কুম্বা তো সাংকে হিঙ্কিবা নকছে নাই বোলে বলং কুথু রগ তামং তুরুং চাব করি করি নি বুনি ওয়ানা নি দ্রব ইয়াকু ইয়াসে বুকরা দাগে থাংবাই কা তাই কুবুনি দং খাহিনি সে তাং সা হিঙ্কিবা কাহাম কোকছে বুলা কাই খিবা কাল কাই রুসি নাই তাই তাম তাম হেন
2: আও কাই আ খাই তাই তাম খাইন সা ছোসি দি খনা পুঙাই কে ইয়া সাজা নাঙ্গন বরং কথুক মাহিমি ফেমনি লেং সকা হরি হরি

0: रुखा मायमगा तंगई किसा तग रुगी तंगसीदी सलासा भाई बुरीमा निकाली बाई चुआकिया संग नांगान
1: बुझीखा ओ बर रा आनो खगैसे दिदा भाई आनो कई नाय थुसे मानो आंले दिदा भाई कई जगिया उमु तुमा कपाल सानी तो बुखा मतई दायद्र नाखा सिने कई थरचा तुमा बसैखा ताबु खाई हानी मुने मु बुनी आलाम मानी तंगनाखा माफने कक नब बाहेके नरनाय किसीव थुई करानो मुथुई साय अ खालय तुगुसार हुई तरी तु मान बाहाइबा कक न नरनानी अंखा आबनी बागिन मा बाबु संग पारानी गरम न लाय खलानी छाबाय आं थुमासे सासेव हरदि थुंनायखा
2: ए करम नों तावन आसुग वानाय दं तावन आसुगनि वाना माबांखा आं जत्न सैलांबाय नों तावन थां बलंग चेखं बुसा फांसा नायदुबै गामि देखंग पुसिबाय गतै थालि किसालि हाय हिनै सालि हानि साखाबाय नखानि तला निनिबाय आनि गेरां गाथमा थादोंना दंखायबा दा बुंनि बिसिङ लगजालिथ' चेथ'आ होनो हायखायनो नों बान्जिबाय थाला

दिखने वाले हैं फिबी लिचफील्ड। और ये दोस्तों मैं कहूंगा बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलियन टीम की रीढ़ की हड्डी है। शुरुआत से आप देखें तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया जो कि ताबड़तोड़ क्रिकेट को आगे रखता है और उसी परिभाषा को सही साबित करते हैं फिबी लिचफील्ड जो कि 360 प्लेयर हैं, चाहे पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स, दोनों के सामने फिबी लिचफील्ड डटकर बैटिंग करते हैं और इस वर्ल्ड कप में लगभग 150 का स्ट्राइक रेट इनका नजर आया है। नंबर चार के स्थान पर एलिस पैरी टीम का हिस्सा आपको आज के मुकाबले में दिख सकते हैं। हालांकि खेलेंगे या फिर दोस्तों नहीं खेलेंगे इस पर पक्का खबर टॉस के वक्त आएगी, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था वेस्टइंडीज के सामने वहां पर एलिस पैरी थोड़ा सा चोटिल हो गई थी और बीच मैदान में इनको दोस्तों मुकाबला छोड़कर वापस जाना पड़ा। और यदि आज के मैच में एलिस पैरी को मौका नहीं मिल पाता है, स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, तो फिर उनके स्थान पर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के अंदर मौका दिया जा सकता है टाइलर मैकग्रैथ को। इसके बाद पांचवे पायदान पर एक और बेहतरीन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से गार्डनर टीम का हिस्सा दिख जाएंगे। गार्डनर सबसे बड़े चैंपियन हैं। ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में यदि कोई मुकाबला नहीं हारी है तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ा श्रेय जाता है गार्डनर को। वो जो भारत के साथ मैच हुआ था वहां पर भी आपने देखा था जब लगातार शुरुआत में 3 विकेटें गिरी थी, लगातार ऑस्ट्रेलिया दबाव में चला जाएगा, लेकिन मध्यक्रम में आकर गार्डनर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी में टीम को संभाला वहीं से मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वापसी कर गई थी। और एक बहुत बड़ी साझेदारी एलिस पैरी और गार्डनर के दरमियान उस मैच के अंदर बनी थी। तो ओवरऑल यही काम पूरे वर्ल्ड कप में गार्डनर हमें करते नजर आ रहे हैं। गार्डनर के बाद आज के इस बड़े खेल में आपको नंबर 6 के स्थान पर एक और ऑलराउंडर दिखने वाले हैं, गेंदबाजी ऑलराउंडर जो कि जॉर्जिया वरहम रहेंगे। सातवें पायदान पर अनेबेल सदरलैंड, इनके कंधों पर दोस्तों मुख्य तौर पर तेज गेंदबाजी का बहुत बड़ा भार रहने वाला है और बतौर बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर सदरलैंड इनका जब दिन रहता है तो बतौर बल्लेबाज भी मैचेस निकालते हैं ये। आठवें पायदान पर मौका दिया जाएगा निकोला कैरी को। हालांकि इस वर्ल्ड कप में दोस्तों निकोला कैरी का प्रॉपर क्या रोल है ये अभी तक पता चल नहीं पाया है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ना तो कप्तान ज्यादा इनको गेंदबाजी देते हैं और ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में होने की वजह से इनको ना ही ज्यादा बल्लेबाजी में योगदान करने का मौका मिला। और जरूर हर खिलाड़ी को योगदान वहां पर करना होता है, लेकिन निकोला कैरी थोड़ा सा वहां पर दुर्भाग्यशाली साबित हुए हैं। आज देखते हैं कप्तान क्या गेंदबाजी में ज्यादा बेहतर अंदाज में निकोला कैरी का इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 9 के स्थान पर आज टीम के कैप्टन सोफी मोलिनिक्स हैं और हमेशा दोस्तों टीम की रणनीति कप्तान बनाते हैं और बतौर कैप्टन सोफी मोलिनिक्स आज कोई गलती नहीं कर सकती है, और यदि आप गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर टाइटल जीतना काफी ज्यादा मुश्किलात वाला काम हो जाएगा। हालांकि बतौर गेंदबाज इस वर्ल्ड कप में सोफी मोलिनिक्स ने हर मौके पर विकेट निकाले, चाहे वो भारत वाला मुकाबला हो या फिर पिछले मैच में वेस्टइंडीज के सामने भी बतौर गेंदबाज एक बहुत बड़ा रोल आप कह सकते हैं सोफी मोलिनिक्स के द्वारा। सोफी मोलिनिक्स के बाद 200 नंबर 10 के स्थान पर टीम के फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज आपको टीम का ऐसा रहने वाले हैं किम गर्थ, और 11वें पायदान पर आज के मैच के अंदर आपको फिलहाल लूसी हैमिल्टन टीम का हिस्सा दिख जाएंगे। तो ओवरऑल बल्लेबाज भरे पड़े हैं, नंबर 9 नंबर 10 तक आपके पास बल्लेबाज हैं और 11वें नंबर पर लूसी हैमिल्टन, ये भी दोस्तों बहुत अच्छी बैटिंग कर देती हैं। और गेंदबाजी की आप बात करेंगे तेज गेंदबाजी में आपके पास फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज में किम गर्थ मौजूद हैं,

0: साथ में सदरलैंड रहने वाले हैं, और इसके अतिरिक्त आपके पास लूसी हैमिल्टन, जो कि लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा नई बॉल के दौरान वहां पर गेंदबाजी करते नजर आए थे, और बाकी चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर आपके पास निकोला कैरी आज के मुकाबले में रहेंगे। तो तेज गेंदबाजी के कप्तान के पास बहुत सारे विकल्प हैं, यदि एलिसा पेरी इस मुकाबले में खेलती है तो वो भी दोस्तों बहुत अच्छी आपको बॉलिंग कर सकती है। स्पिन विकल्प में आपके पास हालांकि ऑप्शन काफी लिमिटेड है, और उसमें सोपी मोलेनिक्स टीम के कैप्टन रहेंगे, और साथ में आपको जॉर्जिया वरेम और इसके अलावा गार्डनर, हालांकि तीन स्पिन विकल्प भी आपके पास वहां पर उपलब्ध रहेंगे। और किसी गेंदबाज का समय यदि खराब रहता, दिन खराब रहता है, तो कप्तान बहुत ही आसानी के साथ वहां पर गेंदबाजी को रोटेट करते नजर आ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 के बाद दोस्तों बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आज के मैच के अंदर टॉस कौन जीता। देखिए टॉस अभी नहीं हुआ है, लॉर्ड्स का मैदान रहेगा, ऐतिहासिक मैदान होने वाला आज के दिन, और दोनों कैप्टन इस वक्त टॉस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सिग्नल जैसे ही दोस्तों उछलता है उसकी अपडेट आपको यहां पर सबसे पहले देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं यहां पर इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11, फिर आपको दोस्तों आज फाइनल मैच का विनर कौन हो सकता है विनर के बारे में अपडेट देंगे, और उससे दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी आज लॉर्ड्स के अंदर मौसम कैसा होने वाला है, क्या आज के मैच में आ सकती है बारिश, करेंगे बात। इंग्लैंड टीम की ओर से आज पारी का आगाज करने वाले हैं इनके सबसे डेंजरस बैटर एमी जॉन्स, क्या वर्ल्ड कप रहा, वर्ल्ड कप से पहले जरूर दोस्तों जो भारत के साथ श्रृंखला हुई थी वहां पर एमी जॉन्स का बल्ला खामोश रहा था, लेकिन बिल्कुल तीर ठिकाने पर लगा दिया, सही मौके पर ये फॉर्म में आ चुके हैं, और साथ में आपको ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर डैनी निकोला व्यार टीम का हिस्सा दिखने वाले हैं। इस वर्ल्ड कप में दोस्तों आप कह सकते हैं इंग्लैंड टीम के सलामी बल्लेबाज इस टीम की सफलता का सबसे बड़ा जरिया आप कह सकते हैं, जब आपके टॉप क्रम के बल्लेबाज रन कर जाते हैं तो फिर बाकी प्लेयर्स का काम बहुत आसान हो जाता है। नंबर तीन के स्थान पर इस मैच में आपको वन डाउन दिखने वाले हैं, टीम के कैप्टन नैट सिबल ब्रंट, देखिए हमेशा किसी एक प्लेयर पर इंग्लैंड टीम निर्भर नहीं रही है, इससे पहले जब नैट सिबल ब्रंट टीम का ऐसा नहीं थे उस दौरान कप्तानी चार्ली डीन कर रही थी, और वहां पर भी इंग्लैंड कोई मुकाबला हारी नहीं, और कप्तान के वापस टीम में आने से भी ये टीम दोस्तों और ज्यादा मजबूत हुई है, और लास्ट मैच में अपनी मौजूदगी को बिल्कुल साबित किया नैट सिबल ब्रंट ने, साउथ अफ्रीका के सामने कमाल की अर्धशतक की पारी, और उस साझेदारी ने इंग्लैंड टीम को एक ऐसे स्कोर तक लेकर गए जहां से वापस साउथ अफ्रीका मैच में चेज नहीं कर पाई। नंबर चार के स्थान पर आज के इस मैच में आपको एलिस कैप्सी टीम का हिस्सा रहेंगे मध्यक्रम के अंदर। पांचवें पायदान पर दोस्तों हैदर नाइट, और ये वो साझेदारी हैदर नाइट और नैट सिबल ब्रंट के दरमियान अफ्रीका के सामने 100 रन की वहां पर पार्टनरशिप बनी थी, और वहीं से दोस्तों जीत का मोमेंटम और फाइनल का टिकट वहां पर प्राप्त हुआ था टीम इंग्लैंड को। नंबर छह के स्थान पर आज के इस मैच में आपको फ्रिया कैंप रहेंगे, और इनकी दोस्तों मुझे आज बल्लेबाजी देखनी है क्योंकि विकेटें जाहिर तौर पर गिरने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया जिनकी गेंदबाजी बहुत मजबूत है और टॉप क्रम की बल्लेबाज मेरे ख्याल में इंग्लैंड टीम की ओर से आज उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिम्मेदारी मध्यक्रम पर आने वाली है, और वहां पर एलिस कैप्सी, हैदर नाइट और इनके साथ साथ मुझे यहां पर अफ्रिया कैंप की बल्लेबाजी देखनी है। सातवें पायदान पर आज एक और गेंदबाज और साथ में ऑलराउंडर डैनी गिब्सन रहेंगे, जो कि कुछ मैचेस में आपको नई बॉल के दौरान भी गेंदबाजी करते दिखे हैं, और बल्लेबाजी में भाई साहब आपने 100 में देखा होगा जो विमेंस 100 लीग है वहां पर लंबे लंबे छक्के मारते नजर आए हैं। आठवें पायदान पर टीम का हिस्सा रहेंगे चार्ली डीन, बहुत ही होनहार खिलाड़ी, और जिस तरीके से ये चाहे बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी दोनों तरीके से योगदान करती हैं, फील्डिंग में बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं और एक कंप्लीट मैच विनर प्लेयर आप कह सकते हैं चार्ली डीन। नंबर 9 के स्थान पर आज के इस मुकाबले में सोफिया क्लस्टन रहेंगे, एक और गेंदबाजी ऑलराउंडर। 10वें पायदान पर दोस्तों लिंसी स्मिथ, फ्रंट लाइन स्पिनर, जो कि लगातार सोफिया क्लस्टन के साथ मिलकर स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। और 11वें पायदान पर दोस्तों आज के मैच में आपको लॉरेन बेल फिलहाल टीम का हिस्सा रहेंगे। तो ये बात यहां पर हो गई दोस्तों इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर, लेकिन मैं आपको दोस्तों इससे पहले एक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देने वाला था, और वो रिकॉर्ड मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम के खेमे के अंदर खलबली मचा देगा। रिकॉर्ड ये है कि अभी तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में 3 बार आमने सामने हुए हैं, और तीनों बार ऑस्ट्रेलियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर दोस्तों इंग्लैंड टीम को परास्त किया, और अब ये चौथा मौका बना है, और क्या चौथी बार भी इंग्लैंड टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल।
1: माई प्रोजेक्ट फॉर टुडे इज माई विलेज, कम विद मी, लेट मी शो यू माई विलेज। फॉर जीवन चाचा, हिज फोन इज हिज बैंक, दिस इज मोनू भैया, फॉर हिम हिज
0: के दिन सुधारना चाहेगी। एक भाई का सवाल इस वक्त आ चुका है, और इनका कहना है कि आज मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। देखिए अभी कहना बहुत आसान नहीं होगा, पर यदि हम लोग स्टैटिक्स की बात करते हैं, स्टैटिक्स के जरिए दोस्तों यहां पर जरूर एनालिसिस किया जा सकता है कि आज के मैच को कौन सी टीम जीत सकती है। देखिए फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर दोनों टीमें बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने लास्ट के पांचों मैचेस को जीत के आ रहा है, कोई मुकाबला नहीं हारा। इंग्लैंड टीम भी इस कैंपेन में अपने पिछले पांचों के पांचों मुकाबले जीते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी आप यदि हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, यहां पर बिल्कुल कहानी ऑस्ट्रेलियन टीम के पक्ष में जाती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके दरमियान जो लास्ट के 10 मैचेस खेले गए हैं, इसमें 7 बार ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंग्लैंड टीम को परास्त किया और जवाब में इंग्लैंड टीम मात्र 3 ही बार ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा पाई है। तो हेड टू हेड आंकड़ा दोस्तों यहां पर पक्ष में जाता है ऑस्ट्रेलिया के। और ऐसे में आज के मुकाबले के अंदर आप यदि जीत प्रतिशत की बात करते हैं, तो इस मैच में साफ तौर पर आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे चल रही है। आज 75% दोस्तों टाइटल जीतने की संभावना ऑस्ट्रेलियन टीम की, और 25% दोस्तों इंग्लैंड टीम की वहां पर टाइटल जीतने की संभावना फिलहाल रहने वाली है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो कि दोस्तों बहुत ही मजबूत टीम है, और उनको हराने के लिए आपको यहां पर अलग अलग पैंतरे आजमाने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों फाइनल मैच का वेदर भी आज देखने लायक रहने वाला है। आज के मैच में बारिश नहीं आएगी तब ये मुकाबला पूरा चलने वाला है, और जानते हैं आज पिच और वेदर का मिजाज कैसा रहेगा। मुकाबला खेला जाएगा लॉर्ड्स के ऐतिहासिक वेन्यू पर, और यहाँ की पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान नहीं है, और आज के दिन ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी, और उसके चलते 200 पिच और ज्यादा धीमा हो सकता है। पहली पारी का एवरेज स्कोर 152 रन, सेकंड पारी का एवरेज स्कोर यहाँ पर 139 रन रहता है। इस वेन्यू पर दोस्तों 11 वुमेन्स के T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, और इसमें 55% मैचेस पहले बल्लेबाजी वाली टीम जीती और 45% मैचेस पहले गेंदबाजी वाली टीम जीत पाई है। तो ओवरऑल दोस्तों कप्तान टॉस जीत के आज हो सकता है कि पहले आपको बैटिंग लेना पसंद करें, क्योंकि यहां पर गेंदबाजों को बहुत हेल्प है। आप यदि आज पहले बैटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर 160-170 का स्कोर भी एक बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, और जवाब में चेज करना सामने वाली टीम के लिए बहुत आसान नहीं होगा। पेसर्स को यहां पर हेल्प है, लास्ट के 10 मैचों में यहां पर 59 विकेटें पेसर्स को मिली हैं, और कई बार दोस्तों स्पिनर्स भी गेम के अंदर बने रहते हैं। आपको यहां पर 44 विकेटें लास्ट के 10 मैचों में स्पिनर्स निकाल चुके हैं। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो पिच धीमा होगा, कप्तान टॉस जीत के बैटिंग ले सकते हैं, और यहां पर आपको दोस्तों पेसर्स बिल्कुल इस वेन्यू पर डोमिनेट करते दिखने वाले हैं। बाकी वेदर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, आज लॉर्ड्स के वेन्यू पर तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस का है, और हल्की फुल्की इस वक्त दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि धूप खिली हुई है, और यहां पर आज ह्यूमिडिटी 74% है। लेकिन आप बारिश की संभावना की बात करेंगे वो बहुत कम रहेगी, मुकाबला पूरा चलने वाला है, मात्र 10% दोस्तों आज बारिश की संभावना रहेगी, और उसके चलते ये कहा जा सकता है ये मुकाबला पूरे 20-20 ओवर्स तक आपको फिलहाल चलता नजर आने वाला है। बाकी ये बात बिल्कुल साफ है, इस बार की T20 वर्ल्ड कप के अंदर टूर्नामेंट की दो सबसे बेहतरीन टीमें आमने सामने हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि कोई मैच नहीं हारा इस वर्ल्ड कप में, और इंग्लैंड भी अपने तमाम मैचेस को फिलहाल जीत के इस वक्त आ रही हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में वर्ल्ड कप का ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी भी इंग्लैंड टीम तोड़ नहीं पाई है, और आगे चल के उस रिकॉर्ड के बारे में करेंगे चर्चा। लेकिन आप यदि वर्ल्ड कप चैंपियंस की करते हैं बात, तो इसी बीच आप देख पाएंगे अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप एडिशन हुए हैं उसमें इंग्लैंड मात्र एक ही एडिशन जीत पाई है, 2009 का, जो कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया लगातार इतिहास रच रही है, 2010, 2012, 2014, 2018, 19 और 2022, तो ये 6 टाइटल आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, और जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया हमेशा सही वर्ल्ड क्रिकेट पर दोस्तों डोमिनेट करना है। और उसके अतिरिक्त इंग्लैंड एक बार चैंपियन बना, वेस्ट इंडीज एक बार चैंपियन बना, और न्यूजीलैंड भी दोस्तों एक ही बार चैंपियन फिलहाल हमें बनते नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों टीम्स की आप ताकत देखें, इनकी टीम बहुत बैलेंस है, और ये टीमें कभी भी एक प्लेयर पर दोस्तों निर्भर नहीं रहती हैं। जब आप टीम के सारे खिलाड़ी 10 से 11 प्लेयर्स लगातार परफॉर्म करते हैं तो उस टीम को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल बन जाता है, और यही दोस्तों इन टीम्स की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी ताकत आपको फिलहाल यहां से नजर आने वाली है। बाकी लॉर्ड्स का वेन्यू दोस्तों आज के मैच का वेन्यू रहने वाला है, और ऐतिहासिक मैदान पर आज क्या मेजबान टीम इंग्लैंड टाइटल जीत पाने में सफल होगी दोस्तों, ये एक बहुत ही इस वक्त दिलचस्प सवाल बन चुका है। हालांकि अपने सेमीफाइनल मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को हरा के आया है, क्योंकि बहुत मजबूत टीम नहीं थी, परंतु आप इंग्लैंड की बात करेंगे इनकी ताकत नजर आई थी साउथ अफ्रीका के सामने। साउथ अफ्रीका को 40 रन से बहुत बड़े मार्जिन के साथ दोस्तों इंग्लैंड टीम ने वहां पर फिलहाल परास्त कर दिया है। तो चलिए मैच का टॉस इस वक्त होने जा रहा है, और बहुत जल्दी आपको दो कैप्टन टॉस का सिक्का उछालते नजर आने वाले हैं। लेकिन टॉस से पहले जानते हैं आज के मैच में आपको दोनों

टीमों की ओर से किस अंदाज में वहां पर प्लेइंग 11 नजर आने वाली है। लेकिन चलिए जानते हैं इस मैच के अंदर आपको दोनों टीम्स की ओर से प्लेइंग 11 किस अंदाज में नजर आने वाली है। आज के बड़े मुकाबले में आपको ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से पारी का आगाज करेंगे जॉर्जिया बॉल और उनके साथ में रहने वाले हैं बैथ मोनी। ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से ये ऐसी ओपनिंग जोड़ी है जहां पर दाएं हाथ और बाएं हाथ का बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन नजर आता है। हालांकि ये बात सच है जहां पर जॉर्जिया वॉल पिछले 2-3 मैचों में आउट ऑफ फॉर्म रही। वो जो बड़ा मैच हुआ था भारत के खिलाफ वहां पर भी जॉर्जिया वॉल कुछ खास योगदान नहीं कर पाई थी और लास्ट मैच में वेस्टइंडीज के सामने भी जहां बाकी प्लेयर्स ने जमकर रन बरसाए थे जॉर्जिया वॉल वहां पर भी चलती बनी। आज ये फाइनल मैच है और इस मंच पर आप गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रख सकते हैं। ऐसे में दोनों प्लेयर्स को रन करने पड़ेंगे। नंबर 3 के स्थान पर आपको आज के मैच में वन डाउन युवा खिलाड़ी दिखने वाले हैं फिबी लिचफील्ड और ये दोस्तों मैं कहूंगा बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलियन टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। शुरुआत से आप देखें तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया जो कि ताबड़तोड़ क्रिकेट को आगे रखता है और उसी परिभाषा को सही साबित करते हैं फिबी लिचफील्ड जो कि 360 प्लेयर हैं। चाहे पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स दोनों के सामने फिबी लिचफील्ड डटकर बैटिंग करते हैं और इस वर्ल्ड कप में लगभग 150 का स्ट्राइक रेट इनका नजर आया है। नंबर 4 के स्थान पर एलिस पेरी टीम का हिस्सा आपको आज के मुकाबले में दिख सकते हैं। हालांकि खेलेंगे या फिर दोस्तों नहीं खेलेंगे इस पर पक्का खबर टॉस के वक्त आएगी क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था वेस्टइंडीज के सामने वहां पर एलिस पेरी थोड़ा सा चोटिल हो गई थी और बीच मैदान में इनको दोस्तों मुकाबला छोड़कर वापस जाना पड़ा और यदि आज के मैच में एलिस पेरी को मौका नहीं मिल पाता है स्वस्थ नहीं हो पाते हैं तो फिर उनके स्थान पर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के अंदर मौका दिया जा सकता टाइलर मैकग्रा को। इसके बाद 5वें पायदान पर एक और बेहतरीन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से गार्डनर टीम का हिस्सा दिख जाएंगे। गार्डनर सबसे बड़े चैंपियन हैं। ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में यदि कोई मुकाबला नहीं हारी है तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ा श्रेय जाता है गार्डनर को। वो जो भारत के साथ मैच हुआ था वहां पर भी आपने देखा था जब लगातार शुरुआत में 3 विकेटें गिरी थी लगातार ऑस्ट्रेलिया दबाव में चला जाएगा लेकिन मध्यक्रम में आकर गार्डनर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी में टीम को संभाला वहीं से मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वापसी कर गई थी और एक बहुत बड़ी साझेदारी एलिस पेरी और गार्डनर के दरमियान उस मैच के अंदर बनी थी। तो ओवरऑल यही काम पूरे वर्ल्ड कप में गार्डनर हमें करते नजर आ रहे हैं। गार्डनर के बाद आज के इस बड़े खेल में आपको नंबर 6 के स्थान पर एक और ऑलराउंडर दिखने वाले हैं गेंदबाजी ऑलराउंडर जो कि जॉर्जिया वरहम रहेंगे। 7वें पायदान पर अनबेल सदरलैंड इनके कंधों पर दोस्तों मुख्य तौर पर तेज गेंदबाजी का बहुत बड़ा भार रहने वाला है और बतौर बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है। यहां पर सदरलैंड इनका जब दिन रहता है तो बतौर बल्लेबाज भी मैचेस निकालते हैं ये। 8वें पायदान पर मौका दिया जाएगा निकोला कैरी को। हालांकि इस वर्ल्ड कप में दोस्तों निकोला कैरी का प्रॉपर क्या रोल है ये अभी तक पता चल नहीं पाया है क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ना तो कप्तान ज्यादा इनको गेंदबाजी देते हैं और ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में होने की वजह से इनको ना ही ज्यादा बल्लेबाजी में योगदान करने का मौका मिला और जरूर हर खिलाड़ी को योगदान वहां पर करना होता है लेकिन निकोला कैरी थोड़ा सा वहां पर दुर्भाग्यशाली साबित हुए हैं। आज देखते हैं कप्तान क्या गेंदबाजी में ज्यादा बेहतर अंदाज में निकोला कैरी का इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 9 के स्थान पर आज टीम के कैप्टन सोफी मोलिनिक्स हैं और हमेशा दोस्तों टीम की रणनीति कप्तान बनाते हैं और बतौर कैप्टन सोफी मोलिनिक्स आज कोई गलती नहीं कर सकती हैं और यदि आप गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर टाइटल जीतना काफी ज्यादा मुश्किलात वाला काम हो जाएगा। हालांकि बतौर गेंदबाज इस वर्ल्ड कप में सोफी मोलिनिक्स ने हर मौके पर विकेट निकाले चाहे वो भारत वाला मुकाबला हो या फिर पिछले मैच में वेस्टइंडीज के सामने भी बतौर गेंदबाज एक बहुत बड़ा रोल आप कह सकते हैं सोफी मोलिनिक्स के द्वारा। सोफी मोलिनिक्स के बाद 200 नंबर 10 के स्थान पर टीम के फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज आपको टीम का ऐसा रहने वाले हैं किम गर्थ और 11वें पायदान पर आज के मैच के अंदर आपको फिलहाल लूसी हैमिल्टन टीम का हिस्सा दिख जाएंगे। तो ओवरऑल बल्लेबाज भरे पड़े हैं नंबर 9 नंबर 10 तक आपके पास बल्लेबाज हैं और 11वें नंबर पर लूसी हैमिल्टन ये भी दोस्तों बहुत अच्छी बैटिंग कर देती हैं और गेंदबाजी की आप बात करेंगे तेज गेंदबाजी में आपके पास फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज में किम गर्थ मौजूद हैं साथ में सदरलैंड रहने वाले हैं और इसके अतिरिक्त आपके पास लूसी हैमिल्टन जो कि लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा नई बॉल के दौरान वहां पर गेंदबाजी करते नजर आए थे और बाकी 4th तेज गेंदबाज के तौर पर आपके पास निकोला कैरी आज के मुकाबले में रहेंगे। तो तेज गेंदबाजी के कप्तान के पास बहुत सारे विकल्प हैं। यदि एलिसा पेरी इस मुकाबले में खेलती है तो वो भी दोस्तों बहुत अच्छी आपको बॉलिंग कर सकती है। स्पिन विकल्प में आपके पास हालांकि ऑप्शन काफी लिमिटेड है और उसमें सोफी मोलिनिक्स टीम के कैप्टन रहेंगे और साथ में आपके जॉर्जिया वरहम और इसके अलावा गार्डनर हालांकि 3 स्पिन विकल्प भी आपके पास वहां पर उपलब्ध रहेंगे।
और किसी गेंदबाज का समय यदि खराब रहता, दिन खराब रहता है, तो कप्तान बहुत ही आसानी के साथ वहां पर गेंदबाजी को रोटेट करते नजर आ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 के बाद दोस्तों बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आज के मैच के अंदर टॉस कौन जीता। देखिए टॉस अभी नहीं हुआ है, लॉर्ड्स का मैदान रहेगा, ऐतिहासिक मैदान होने वाला आज के दिन, और दोनों कैप्टन इस वक्त टॉस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सिक्का जैसे ही दोस्तों उछलता है उसकी अपडेट आपको यहां पर सबसे पहले देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं यहां पर इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11, फिर आपको दोस्तों आज फाइनल मैच का विनर कौन हो सकता है विनर के बारे में अपडेट देंगे, और उससे दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी आज लॉर्ड्स के अंदर मौसम कैसा होने वाला है, क्या आज के मैच में आ सकती है बारिश, करेंगे बात। इंग्लैंड टीम की ओर से आज पारी का आगाज करने वाले हैं इनके सबसे डेंजरस बैटर एमी जॉन्स। क्या वर्ल्ड कप रहा, वर्ल्ड कप से पहले जरूर दोस्तों जो भारत के साथ श्रृंखला हुई थी वहां पर एमी जॉन्स का बल्ला खामोश रहा था, लेकिन बिल्कुल तीर ठिकाने पर लगा दिया, सही मौके पर ये फॉर्म में आ चुके हैं, और साथ में आपको ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर डेनी निकोला व्यार टीम का हिस्सा दिखने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में। दोस्तों आप कह सकते हैं इंग्लैंड टीम के सलामी बल्लेबाज इस टीम की सफलता का सबसे बड़ा जरिया आप कह सकते हैं। जब आपके टॉप क्रम के बल्लेबाज रन कर जाते हैं तो फिर बाकी प्लेयर्स का काम बहुत आसान हो जाता है। नंबर तीन के स्थान पर इस मैच में आपको वन डाउन दिखने वाले हैं टीम के कैप्टन नैट सिबर ब्रंट। देखिए हमेशा किसी एक प्लेयर पर इंग्लैंड टीम निर्भर नहीं रही है, इससे पहले जब नैट सिबर ब्रंट टीम का हिस्सा नहीं थे उस दौरान कप्तानी चार्ली डीन कर रही थी और वहां पर भी इंग्लैंड कोई मुकाबला हारी नहीं, और कप्तान के वापस टीम में आने से भी ये टीम दोस्तों और ज्यादा मजबूत हुई है और लास्ट मैच में अपनी मौजूदगी को बिल्कुल साबित किया नैट सिबर ब्रंट ने। साउथ अफ्रीका के सामने कमाल की अर्धशतक की पारी और उस साझेदारी ने इंग्लैंड टीम को एक ऐसे स्कोर तक लेकर गए जहां से वापस साउथ अफ्रीका मैच में चेज नहीं कर पाई। नंबर चार के स्थान पर आज के इस मैच में आपको एलिस कैप्सी टीम का हिस्सा रहेंगे मध्यक्रम के अंदर। पांचवें पायदान पर दोस्तों हैदर नाइट, और ये वो साझेदारी हैदर नाइट और नैट सिबर ब्रंट के दरमियान अफ्रीका के सामने 100 रन की वहां पर पार्टनरशिप बनी थी और वहीं से दोस्तों जीत का मोमेंटम और फाइनल का टिकट वहां पर प्राप्त हुआ था टीम इंग्लैंड को। नंबर छह के स्थान पर आज के इस मैच में आपको फ्रिया कैंप रहेंगे, और इनकी दोस्तों मुझे आज बल्लेबाजी देखनी है क्योंकि विकेटें जाहिर तौर पर गिरने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया जिनकी गेंदबाजी बहुत मजबूत है और टॉप क्रम की बल्लेबाज मेरे ख्याल में इंग्लैंड टीम की ओर से आज उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिम्मेदारी मध्यक्रम पर आने वाली है और वहां पर एलिस कैप्सी, हैदर नाइट और इनके साथ साथ मुझे यहां पर फ्रिया कैंप की बल्लेबाजी देखनी है। सातवें पायदान पर आज एक और गेंदबाज और साथ में ऑलराउंडर डैनी गिब्सन रहेंगे जो कि कुछ मैचेस में आपको नई बॉल के दौरान भी गेंदबाजी करते दिखे हैं, और बल्लेबाजी में भाई साहब आपने 100 में देखा होगा जो विमेंस 100 लीग है वहां पर लंबे लंबे छक्के मारते नजर आए हैं। आठवें पायदान पर टीम का हिस्सा रहेंगे चार्ली डीन, बहुत ही होनहार खिलाड़ी और जिस तरीके से ये चाहे बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी दोनों तरीके से योगदान करती हैं, फील्डिंग में बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं और एक कंप्लीट मैच विनर प्लेयर आप कह सकते हैं चार्ली डीन। नंबर 9 के स्थान पर आज के इस मुकाबले में सोफिया क्लस्टन रहेंगे, एक और गेंदबाजी ऑलराउंडर। 10वें पायदान पर दोस्तों लिंसी स्मिथ, फ्रंट लाइन स्पिनर जो कि लगातार सोफिया क्लस्टन के साथ मिलकर स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, और 11वें पायदान पर दोस्तों आज के मैच में आपको लॉरेन बेल फिलहाल टीम का हिस्सा रहेंगे। तो ये बात यहां पर हो गई दोस्तों इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर, लेकिन मैं आपको दोस्तों इससे पहले एक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देने वाला था और वो रिकॉर्ड मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम के खेमे के अंदर खलबली मचा देगा। रिकॉर्ड ये है कि अभी तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में 3 बार आमने सामने हुए हैं और तीनों बार ऑस्ट्रेलियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर दोस्तों इंग्लैंड टीम को परास्त किया, और अब ये चौथा मौका बना है, और क्या चौथी बार भी इंग्लैंड टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम से हारने वाली है या फिर दोस्तों जो पिछले 3 पराजय हैं उसका बदला लेंगे, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंग्लैंड टीम इस रिकॉर्ड को आज के दिन सुधारना चाहेगी। एक भाई का सवाल इस वक्त आ चुका है और इनका कहना है कि आज मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। देखिए अभी कहना बहुत आसान नहीं होगा, पर यदि हम लोग स्टैटिक्स की बात करते हैं स्टैटिक्स के जरिए दोस्तों यहां पर जरूर एनालिसिस किया जा सकता है कि आज के मैच को कौन सी टीम जीत सकती है। देखिए फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर दोनों टीमें बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने लास्ट के 5 मैचेस को जीत के आ रहा है, कोई मुकाबला नहीं हारा। इंग्लैंड टीम भी इस कैंपेन में अपने पिछले 5 के 5 मुकाबले जीते हैं, लेकिन दोस्तों कहानी आप यदि हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे यहां पर बिल्कुल कहानी ऑस्ट्रेलियन टीम के पक्ष में जाती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके दरमियान जो लास्ट के 10 मैचेस खेले गए हैं इसमें 7 बार ऑस्ट्रेलियन टीम ने
इंग्लैंड टीम को परास्त किया और जवाब में इंग्लैंड टीम मात्र 3 ही बार ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा पाई है। तो हेड टू हेड आंकड़ा दोस्तों यहां पर पक्ष में जाता है ऑस्ट्रेलिया के। और ऐसे में आज के मुकाबले के अंदर आप यदि जीत प्रतिशत की बात करते हैं तो इस मैच में साफ तौर पर आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे चल रही है। आज

75% दोस्तों टाइटल जीतने की संभावना ऑस्ट्रेलियन टीम की, और 25% दोस्तों इंग्लैंड टीम की वहां पर टाइटल जीतने की संभावना फिलहाल रहने वाली है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो कि दोस्तों बहुत ही मजबूत टीम है, और उनको हराने के लिए आपको यहां पर अलग अलग पैंतरे आजमाने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों फाइनल मैच का वेदर भी आज देखने लायक रहने वाला है। आज के मैच में बारिश नहीं आएगी तब ये मुकाबला पूरा चलने वाला है, और जानते हैं आज पिच और वेदर का मिजाज कैसा रहेगा। मुकाबला खेला जाएगा लॉर्ड्स के ऐतिहासिक वेन्यू पर, और यहाँ की पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान नहीं है, और आज के दिन ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी, और उसके चलते दोस्तों पिच और ज्यादा धीमा हो सकता है। पहली पारी का एवरेज स्कोर 152 रन, सेकेंड पारी का एवरेज स्कोर यहाँ पर 139 रन रहता है। इस वेन्यू पर दोस्तों 11 वुमेन्स के T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, और इसमें 55% मैचेस पहले बल्लेबाजी वाली टीम जीती और 45% मैचेस पहले गेंदबाजी वाली टीम जीत पाई है। तो ओवरऑल दोस्तों कप्तान टॉस जीत के आज हो सकता है कि पहले आपको बैटिंग लेना पसंद करें, क्योंकि यहां पर गेंदबाजों को बहुत हेल्प है। आप यदि आज पहले बैटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर 160-170 का स्कोर भी एक बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, और जवाब में चेज करना सामने वाली टीम के लिए बहुत आसान नहीं होगा। पेसर्स को यहां पर हेल्प है, लास्ट के 10 मैचों में यहां पर 59 विकेटें पेसर्स को मिली हैं, और कई बार दोस्तों स्पिनर्स भी गेम के अंदर बने रहते हैं। आपको यहां पर 44 विकेटें लास्ट के 10 मैचों में स्पिनर्स निकाल चुके हैं। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो पिच धीमा होगा, कप्तान टॉस जीत के बैटिंग ले सकते हैं, और यहां पर आपको दोस्तों पेसर्स बिल्कुल इस वेन्यू पर डोमिनेट करते दिखने वाले हैं। बाकी वेदर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। आज लॉर्ड्स के वेन्यू पर तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस का है, और हल्की फुल्की इस वक्त दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि धूप खिली हुई है, और यहाँ पर आज ह्यूमिडिटी 74% है। लेकिन आप बारिश की संभावना की बात करेंगे वो बहुत कम रहेगी, मुकाबला पूरा चलने वाला है, मात्र 10% दोस्तों आज बारिश की संभावना रहेगी, और उसके चलते ये कहा जा सकता है ये मुकाबला पूरे 20-20 ओवर तक आपको फिलहाल चलता नजर आने वाला है। बाकी ये बात बिल्कुल साफ है, इस बार की T20 वर्ल्ड कप के अंदर टूर्नामेंट की दो सबसे बेहतरीन टीमें आमने सामने हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि कोई मैच नहीं हारा इस वर्ल्ड कप में, और इंग्लैंड भी अपने तमाम मैचेस को फिलहाल जीत के इस वक्त आ रही हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में वर्ल्ड कप का ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी भी इंग्लैंड टीम तोड़ नहीं पाई है, और आगे चल के उस रिकॉर्ड के बारे में करेंगे चर्चा। लेकिन आप यदि वर्ल्ड कप चैंपियंस की करते हैं बात, तो इसी बीच आप देख पाएंगे अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप एडिशन हुए हैं उसमें इंग्लैंड मात्र एक ही एडिशन जीत पाई है, 2009 का, जो कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया लगातार इतिहास रच रही है, 2010, 2012, 2014, 2018, 19 और 2022, तो ये 6 टाइटल आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। और जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही वर्ल्ड क्रिकेट पर दोस्तों डोमिनेट कर रहा है, और उसके अतिरिक्त इंग्लैंड एक बार चैंपियन बना, वेस्टइंडीज एक बार चैंपियन बना, और न्यूजीलैंड भी दोस्तों एक ही बार चैंपियन फिलहाल हमें बनते नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों टीम्स की आप ताकत देखें, इनकी टीम बहुत बैलेंस है, और ये टीमें कभी भी एक प्लेयर पर दोस्तों निर्भर नहीं रहती हैं। जब आप टीम के सारे खिलाड़ी 10 से 11 प्लेयर्स लगातार परफॉर्म करते हैं तो उस टीम को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल बन जाता है, और यही दोस्तों इन टीम्स की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी ताकत आपको फिलहाल यहां से नजर आने वाली है। बाकी लॉर्ड्स का वेन्यू दोस्तों आज के मैच का वेन्यू रहने वाला है, और ऐतिहासिक मैदान पर आज क्या मेजबान टीम इंग्लैंड टाइटल जीत पाने में सफल होगी दोस्तों, ये एक बहुत ही इस वक्त दिलचस्प सवाल बन चुका है। हालांकि अपने सेमीफाइनल मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को हरा के आया है जो कि बहुत मजबूत टीम नहीं थी, परंतु आप इंग्लैंड की बात करेंगे इनकी ताकत नजर आई थी साउथ अफ्रीका के सामने, साउथ अफ्रीका को 40 रन से बहुत बड़े मार्जिन के साथ दोस्तों इंग्लैंड टीम ने वहां पर फिलहाल परास्त कर दिया है। तो चलिए मैच का टॉस इस वक्त होने जा रहा है, और बहुत जल्दी आपको दो कैप्टन टॉस का सिक्का उछालते नजर आने वाले हैं। लेकिन टॉस से पहले जानते हैं आज के मैच में आपको दोनों टीमों की ओर से किस अंदाज में वहां पर प्लेइंग 11 नजर आने वाली है। लेकिन चलिए जानते हैं इस मैच के अंदर आपको दोनों टीम्स की ओर से प्लेइंग 11 किस अंदाज में नजर आने वाली है। आज के बड़े मुकाबले में आपको ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से पारी का आगाज करेंगे जॉर्जिया बॉल, और उनके साथ में रहने वाले हैं बैथ मोनी। ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से ये ऐसी ओपनिंग जोड़ी है जहां पर दाएं हाथ और बाएं हाथ का बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन नजर आता है। हालांकि ये बात सच है जहां पर जॉर्जिया वॉल पिछले 2-3 मैचों में आउट ऑफ फॉर्म रही, और वो जो बड़ा मैच हुआ था भारत के खिलाफ वहां पर भी जॉर्जिया वॉल कुछ खास योगदान नहीं कर पाई थी, और लास्ट मैच में वेस्टइंडीज के सामने भी जहां बाकी प्लेयर्स ने जमकर रन बरसाए थे जॉर्जिया वॉल वहां पर भी चलती बनी। आज ये फाइनल मैच है और इस मंच पर आप गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रख सकते हैं, ऐसे

हालांकि बल्लेबाज की निगाहें गेंद के ऊपर से हट गई थी, स्वीप करने का प्रयास किया था और उसके चलते उछाल से बीट हुए और गेंद सीधा पैड पर लगी, कोई रन नहीं। 20 पर एक है इस वक्त इंग्लैंड टीम का स्कोर 3 ओवर 5 गेंदों के बाद। लास्ट बॉल सामने डेनी निकोला लेग स्टंप पर थी। इस बार बैटर ने आगे निकलकर फ्रंट फुट पर आए गेंद को फ्लिक किया था स्क्वायर लेग में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद रहेगा पीछे। अंतिम बॉल पर देखा जाए तो रन बनाने का कोई मौका वहां पर मौजूद नहीं था। अंतिम बॉल डॉट है, ओवर से आए हैं 6 रन और फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 20 एक विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ में धीरन प्रजापति जी आ चुके हैं, उमा शंकर त्रिवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में और गेरहर्ड मिचेल भाई आ चुके हैं, जसकरण भाई हमारे साथ में स्टार एनिमेशन है, चरित भाई हैं, रिजवान भाई आपका बहुत स्वागत है। पहला विकेट जल्दी खो दिया लेकिन आने वाले बल्लेबाजों में इनके पास मौजूद हैं इस वक्त एलिस कैप्सी नंबर 4 पर 5 पर हैदर नाइट हैं, फिर आएंगे फ्रिया कैंप इस टीम के अंदर और डैनी गिब्सन होने वाले हैं, चार्ली डीन रहेंगे आपके पास जो कि बल्लेबाजी में काफी डेप्थ देते हैं, इसके बाद लिंसी स्मिथ हैं, सोफिया क्लिस्टन रहेंगे आपके पास और लॉरेन बेल होने वाले हैं। पारी का फिलहाल 5वां ओवर, गेंदबाजी में परिवर्तन और इस वक्त आए हैं सदरलैंड, खराब गेंद थी सदरलैंड की और इस गेंद पर बहुत ही प्यारे अंदाज में गेंद को टाइम कर दिया नेट सीवर बंट ने, स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाज का स्वागत इस गेंद पर। चौकी के साथ 24 पर एक है टीम इंग्लैंड 4 ओवर 1 गेंद के बाद। देखिए आमतौर पर जब आप पैर पकड़ते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है, पर क्रिकेट में आप यदि पैरों पर गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपको वहां पर मार पड़ेगी। शॉर्ट फाइनल और स्क्वायर लेग के बीच में 50 मीटर का गैप था, उसको भेदा, फिर से फ्लिक किया उसी दिशा में लेकिन इस बार प्रॉपर स्क्वायर लेग के हाथों में चली गई, एक बाउंस के बाद गेंद को रोका, परिणाम स्वरूप सिंगल मिलेगा। एलिस पेरी वहां पर मौजूद थे बाउंड्री के पास जिन्होंने गेंद को थ्रो किया। 4 ओवर 2 गेंदे, 25 पर 1 है इंग्लैंड, 12 पर पहुंचे नेट सीवर ब्रंट, 13 गेंदों का इन्होंने किया सामना। अब देखिएगा दोस्तों जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नेट सीवर ब्रंट का स्ट्राइक रेट और अब तेज होने वाला है और डैनी निकोला 7 गेंदों पर इस वक्त 7 रनों पर। बाबा भाई हमारे साथ में आ चुके हैं, कालूराम मेघवाल जी आपका स्वागत है। अच्छी गेंद थी, ओवर पिच डिलीवरी अंदर की ओर आई, स्टंप्स को टारगेट किया, बॉल कमाल की और इसी बीच कला दिखाई बल्लेबाज ने, सॉफ्ट हैंड के सहारे गेंद को पुश किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, रन की मांग, बढ़िया वहां पर कॉलिंग और बहुत तेज गति के साथ एक और सिंगल करेंगे पूरा। 4 ओवर 3 गेंदे, 26 पर 1 है इस वक्त इंग्लैंड वुमेन्स का स्कोर। जसकरण भाई हमारे साथ में आ चुके हैं, बाबा भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गेरहर्ड मिचेल भाई आपका थैंक यू सो मच, इसी तरीके से हमारे साथ में आप बने रहिएगा। पहले 3 गेंदों पर इस वक्त 6 रन आ चुके हैं, वंस अगेन बॉलर जो कि तैयार अगली गेंद के साथ, और इसी बीच नो बॉल डाल दी आपने, ये गलती और मुझे लगता है कि आगे चल के गलती आप पर भारी पड़ सकती है। गेंदबाज सदरलैंड जिनका पैर बॉलिंग क्रीज की जो लाइन होती है दोस्तों उसके आगे निकल गया और अंपायर बिल्कुल चील की निगाह से वहां पर अंपायरिंग कर रहे थे और इनकी निगाहों से बचना नामुमकिन है। तो तैयार रहिए इस वक्त नेट सीवर ब्रंट, अब दोनों खिलाड़ी लेग साइड में लगा दिए बाउंड्री के पास, डीप स्क्वायर लेग और साथ में डीप मिड विकेट, चलेंगे फ्री हिट बॉल लेकर नेट सीवर ब्रंट के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, शॉट इस बार काफी करारा, गैप में रोकना मुश्किल होगा, मिड विकेट भागा लेकिन 4 रन कामयाब नहीं हो पाए, मिला मौका लगा दिया चौका, नाम है नेट सीवर ब्रंट और ये इनकी पारी का 3रा चौका, बल्लेबाज 16 के निजी स्कोर पर पहुंचे, 31 पर 1 है इंग्लैंड 4 ओवर 3 गेंदों के बाद। सैयद वाजिद भाई हमारे साथ में आ चुके हैं, उमा शंकर भाई हैं, रूबी देवी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। अगले गेंद के साथ चले सदरलैंड, ओवर द स्टंप्स, ये बॉल लेग स्टंप पर थी, ओवर पिच डिलीवरी फ्लिक किया, हालांकि यॉर्कर डाली और उतने ही अच्छे अंदाज में बैटर ने फ्लिक किया गेंद को स्क्वायर लेग में, तेज गति के साथ एक और सिंगल करेंगे पूरा। 32 पर 1 इंग्लैंड, ये पावर प्ले का 5वां ओवर इस वक्त चल रहा है।

होगी। और फिलहाल कप्तान सोपी मोलिनिक्स ने कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू लिया है और फैसला किया तीसरे अंपायर के पास जाने का। देखना होगा थर्ड अंपायर की ओर से क्या फैसला आता है। चार ओवर चार गेंदे 33 पर एक टीम का स्कोर। और इस बड़े फाइनल मैच में यह पहला मौका आया है जहां पर कप्तान ने थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया। देखिए बॉल ग्लव्स के बहुत नजदीक तो है, लेकिन क्या वाकई में ग्लव्स के संपर्क में आई थी यह देखना होगा। ग्लव्स के बहुत नजदीक तो इस वक्त दिख रही हैं। अल्ट्रा इसमें मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उसके बगैर तो खैर कहानी स्पष्ट करना उतना आसान नहीं रहने वाला है। ओहो हो, इंग्लैंड टीम के लिए परेशानियां इस वक्त दोस्तों कम होने का नाम नहीं ले रही है। थर्ड अंपायर किम कॉटन जो कि इस वक्त चेक कर रहे हैं, और फिलहाल अल्ट्राइज में स्पाइक आ चुके हैं और अब बचना काफी मुश्किल होगा डैनी निकोला का। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि करना बाकी है थर्ड अंपायर के द्वारा, कैच को भी इस वक्त चेक किया जा रहा है। लेकिन देखिए बल्ले के ऊपर गेंद लगी थी, कैच तो खैर क्लियर था, बेसिकली गेंद बल्ले पर नहीं बल्कि ग्लव्स के ऊपर लगी थी, कैच तो बिल्कुल क्लीन था, कोई दिक्कत यहां पर है नहीं, कैच एकदम क्लीन है, तो बचना मुश्किल होगा यहां पर बल्लेबाज का। वो पहली कोशिश में अपनी बाई और डाइव लगाई और शुरुआत में दोनों हाथों से कैच कंप्लीट करने के लिए गए थे बैतमुनि, लेकिन जब अंत में अपना कंट्रोल खोया तब एक हाथ पीछे कर दिया और एक ही हाथ से वहां पर कैच को किया कंप्लीट। बिल्कुल ऑन फील्ड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ेगा, आउट हो जाएंगे इस वक्त बल्लेबाज डैनी व्याट आज फाइनल की शाम। और ये शाम दोस्तों इनको बिल्कुल रास नहीं आई और आठ गेंदों का सामना करके इस वक्त आठ रनों पर आउट हो जाएंगे, तो बहुत ही बड़ा इस वक्त दोस्तों नुकसान हो चुका है इंग्लैंड टीम का मैच के अंदर। बड़ी ही निराशा के साथ ये प्लेयर जा रहे हैं बाहर की ओर, बहुत ही बड़ी विकेट आज के खेल में। और अब आएंगे नंबर चार के स्थान पर मुकाबले के अंदर एलिस कैप्सी, हालांकि ये धुआंधार प्लेयर माने जाते हैं, पर आप यदि इस वर्ल्ड कप की बात करेंगे कई ऐसे मौके थे जहां पर ये जल्दी आउट हो गए। तो आज भी दोस्तों उसी जगह पर इंग्लैंड टीम फंसा हुआ है जैसा आपने लास्ट मैच में देखा था। ये पांचवा मैच और लगभग 50 रन बनाए इस वर्ल्ड कप में एलिस कैप्सी ने। सदरलैंड चले इस ओवर की अंतिम बॉल के साथ, राइट आर्म ओवर द विकेट से अच्छी गेंद थी, कमाल का टप्पा, क्या बात है, तेज गति की बॉल को कट किया बल्लेबाज ने थर्ड मैन की तरफ, हालांकि सीमा रेखा के पास खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं। अंतिम बॉल पर मौका था एक रन का, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तेज गति के साथ अंतिम बॉल पर एक और सिंगल मुकम्मल किया। ओवर से आए हैं 13 रन और फिलहाल पांच ओवर के खेल के बाद इंग्लैंड टीम का स्कोर इस मैच में 33, दो विकेटों के नुकसान। नैट सिवर ब्रंट इस वक्त 15 गेंदों में 16 रनों के निजी स्कोर पर तीन चौके मार चुके हैं, 106 का स्ट्राइक रेट। और आज भी आप कह सकते हैं इंग्लैंड टीम की पारी इन्हीं के कंधों पर इस वक्त सवरती नजर आ रही है, बाकी और कोई प्लेयर तो उतना अच्छा योगदान कर नहीं पाया। गैरेट मिचेल भाई लगातार इस वक्त बने हुए हैं और इसी बीच विप्लव घोष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। किंग खान जी आपका वेलकम है और साथ में चिन्मय विस्पुटे जी आ चुके हैं, कालूराम मेघवाल जी हमारे साथ में हैं, वंश भाई ने सब्सक्राइब कर दिया चैनल, आपका नाम आ चुका है स्क्रीन पर, थैंक यू सो मच वंश भाई हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बॉलिंग पर वापस दोस्तों कप्तान ने लूसी हैमिल्टन को लाने का फैसला किया, अपने पहले ओवर में 4 रन दिए थे और वहां पर विकेट निकाली। पहली गेंद सामने एलिस कैप्सी, कमाल का टप्पा, ओहो हो गेंद बेहतरीन तरीके से बल्ले को मिस करके विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अब वो एंगल ने परेशान किया बल्लेबाज को, आमतौर पर जब गेंद सीधा रहती है तो फिर खेलना आसान हो जाता है, पर जैसे ही गेंद जाएगी बाहर की ओर दिक्कतें बढ़ेगी बल्लेबाज के लिए, और वो भी तब जब आप ज्यादा कुछ खास फुटवर्क नहीं दिखा रहे हो। 33 पर 2 और ये खूबसूरती के साथ गेंद को कट किया पॉइंट की रीजन में, कमाल का प्रहार, प्रयास था चौका मारने का लेकिन फील्डर बीच रास्ते में आ गए थे, अच्छी फील्डिंग वहां पर, हालांकि आखिरी मौके पर गेंद हाथ में से निकली और इसी बीच एक रन, टीम का स्कोर 34, दो विकेटों का नुकसान।
एलएस कैप्सी दो पर पहुंचे।

और कप्तान नैर सिवर ब्रंट यहां से आ जाएंगे स्ट्राइक पर। हमारे साथ में अली सर आ चुके हैं, बहुत स्वागत है। गैरेट मिचेल भाई आपका भी वेलकम करते हैं। बड़ा शॉट का प्रयास था, यॉर्कर डाली, कमाल की गेंद वहां पर हैमिल्टन की, ऑफ स्टंप पे फॉरवर्ड जाकर सामने मारना चाहते थे लेकिन इस बार बीट हुए नैर सिवर ब्रंट। बैट का मोटा किनारा, गेंद जा रही है शॉर्ट फाइनल की दिशा में और एक रन मिलेगा। 35-2 है इंग्लैंड। इंग्लैंड टीम को यहां से साझेदारी की आवश्यकता है, बगैर साझेदारी के मैच में अब यहां से सरवाइव करना इस टीम के लिए बहुत आसान साबित नहीं होगा। हालांकि एक अच्छी साझेदारी वापसी करवा सकती है। अच्छी गेंद थी, स्लोर वन, हल्का सा बाहर की तरफ डाली, तैयार थे बल्लेबाज, कट करने का प्रयास था लेकिन वो गति को समझ नहीं पाए और दोबारा एलिस कैप्सी बीट हो गए। रन नहीं मिलेगा। विकेट कीपर बैथ मुनी इस गेंद को अपने दस्तानों में लेकर गैदर करेंगे। 5 ओवर 4 गेंदे, 35-2। हमारे साथ में सूरज वालवे जी आ चुके हैं। जगदीश भाई आपका बहुत वेलकम है। ओहो, एक और नो बॉल, जो पिछली फ्री हिट आपने डाली थी लास्ट ओवर के अंदर वहां पर चौका पड़ा और इस बार भी लूसी हैमिल्टन, ये दबाव साफ तौर पर झलकता हुआ, पैर हल्का सा लाइन से आगे निकला, अंपायर की नजरें यानी कि बाज की नजरें, और अब तैयार रहेंगे बैटर एलिस कैप्सी। इससे बढ़िया मौका मुझे लगता है कि फॉर्म में आने का हो नहीं सकता।

फ्री हिट गेंद इस वक्त लेकर चले ओवर द विकेट और इस बीच यॉर्कर डाली ऑफ स्टंप पर थी, बल्लेबाज ने सामने खेल दिया और मिल जाएगा सिंगल इस मौके पर।

अब तक 5 गेंदें इस ओवर से हो चुकी हैं, 5 गेंदों में अब तक आए 5 रन। तेज गेंदबाज हैमिल्टन ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार हैं। आखिरी गेंद ओवर की स्ट्राइक में मौजूद एलेक्स कैप्सी, क्या आखिरी गेंद पे कोई बड़ा शॉट आएगा, चलिए देखते हैं। आखिरी गेंद ओवर की और आखिरी गेंद के ऊपर आता हुआ एक और सिंगल। अब यहां से 6 ओवर का जो खेल है ना वो समाप्त हो चुका है, 6 ओवर के बाद इंग्लैंड इस समय 39 रनों पे पहुंच चुकी है 2 विकेट के नुकसान पे। इस समय जो मौजूदा रन रेट है इंग्लैंड का वो चलता हुआ लगभग 6.5 का, कम से कम 170-180 रन बनाने चाहिए इंग्लैंड को। और अब तो यार देखो बाउंड्री की दरकार है, बड़े शॉट्स की दरकार है, ऐसे सिंगल डबल से काम होगा नहीं। खैर अब तो पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है। गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। हालांकि दोस्तों ये जो मैदान है लॉर्ड्स का, ये बड़ा मैदान है और पीछे उतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए। गेंद जो है हल्का सा रुक करके आ रहा है, फंस करके आ रहा है। अगर 155-160 रन भी इंग्लैंड बना लेती है तो शायद वो एक मैच विनिंग टोटल रह सकता है।

बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी, इन्होंने अब तक 6 गेंदों का सामना किया, बनाए 4 रन। नटालिया स्काइवर ब्रंट, अब तक इन्होंने खेली 17 गेंदे, बनाए 18 रन। और अगर आप साझेदारी की भी बात करें ना, तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में अब तक 7 गेंदों में 7 रनों की साझेदारी हो चुकी है।

गेंदबाजी के लिए यहाँ पे अगर लूसी हैमिल्टन देखे तो इस गेंदबाज के पास उतना अनुभव नहीं है, लेकिन हैमिल्टन ने अच्छी गेंदबाजी करी है। और दीपक भाई कहते हुए कि इंग्लैंड 160 रन बनाएगा, 160-170 वो एक अच्छा खासा टोटल रहेगा मेरे हिसाब से, 160-165 या 170 के आसपास गेंदबाजी के लिए। इसी के साथ जॉर्जी या वरेहम आती हुई, जॉर्जी या हरे वरेहम ये भी बड़ी कमाल की गेंदबाज है। इस गेंदबाज के पास भी जो है ना विकेट लेने की काबिलियत है। पहली गेंद रहेंगी जॉर्जी या वरेहम के इस ओवर की। स्ट्राइक में मौजूद बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी। इंग्लैंड के जो दोनों ही सलामी बल्लेबाज थे वो यहाँ पे आउट हो चुके हैं। राउंड विकेट से जॉर्जी वरेहम, ओवर की पहली गेंद ऑस्टम के बाहर, फ्लाइटेड गेंद थी, बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी बैकफुट पर गई और हल्के हाथों से कलायू के सारे इस गेंद को कट किया। गेंद जाती हुई पीछे, शॉर्ट थर्ड मैन बाउंड्री की और मिलता हुआ एक रन। और इसी एक रन के साथ अब इंग्लैंड टीम की जो कप्तान है नटालिया स्काइवर, उनके हाथों में स्ट्राइक आ चुकी है। नटालिया स्काइवर कप्तान, अब तक इन्होंने 17 गेंदों का सामना किए, बनाई 18 रन। जॉर्जी वरेहम राउंड विकेट से ओवर की दूसरी गेंद लेकर के तैयार हैं। इस बार पैरों पर डाली हुई फुल लेंथ की गेंद, नटालिया स्काइवर कदमों का इस्तेमाल करिए, गेंद जाती हुई मिड ऑन और मिड ऑफ बाउंड्री की और एलेक्स पैरी गेंद के पीछे भागती हुई, लेकिन यहाँ पे भी 2 रन मिलेंगे। कहीं ना कहीं जब ऐसे बड़े मैच होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग है ना बड़ी लाजवाब रहती है। इस समय जिस तरीके से गेंद बल्ले से निकली थी शायद ऐसा लगा था कि चौका होगा, लेकिन एलेक्स पैरी कमाल की फील्डिंग उनकी ओर से देखने को मिली है। जॉर्जी वरेहम ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार। इस बार ऑफ साइड पर डाली हुई गेंद थी, कट करने की कोशिश करी बल्लेबाज नटालिया स्काइवर ने, लेकिन यहां पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। जॉर्जी वरेहम ओवर की चौथी गेंद लेकर के अब तैयार हैं। चौथी गेंद ओवर की है, इस बार पैरों पर डाली हुई गुगली गेंद, बल्लेबाज नटालिया स्काइवर ने घुटना टिका करके आड़े बल्ले से इस गेंद को खेल दिया। गेंद जाती हुई पीछे, लेग साइड पे मिलता हुआ एक रन और इसी एक रन के साथ स्ट्राइक के ऊपर आ चुकी बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी। बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी ने अब तक खेली है 7 गेंदे, बनाई 5 रन। और ये जो ओवर रहा है ना बड़ा ही कमाल का ओवर रहा है, 5 गेंदों में केवल 4 ही रन आए हैं। आखिरी गेंद जॉर्जी वरेहम के इस ओवर की, स्ट्राइक पे मौजूद एलेक्स कैप्सी। क्या आखिरी गेंद पे एलेक्स कैप्सी कोई बड़ा शॉट खेलेंगी? बाउंड्री की तलाश इंग्लैंड को और एक खराब गेंद थी, वैसे बहुत ज्यादा लेग साइड पे गेंद डाली थी है बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी। इस गेंद को छोड़ती ना तो निश्चित तौर से गेंद वाइड हो सकती है, हो सकती थी मतलब, लेकिन गेंद पैड पे लग गई। 7 ओवर के बाद इंग्लैंड 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस समय इंग्लैंड का मौजूदा रन रेट चलता हुआ 6.14 का। दोस्तों ये जो है ना विश्व कप का फाइनल मैच है और ये कोई छोटा मोटा मैच तो नहीं है। हालांकि अब तक इंग्लैंड ने बड़ा ही सादा रन ही प्रदर्शन किया है।

और ये जो पिच है ना बैटिंग के लिए उतनी आसान भी नहीं है। इसी के साथ गेंदबाजी के लिए वापस आती हुई एनाबेल सदरलैंड। एनाबेल सदरलैंड ने अपने पहले ओवर में 12 रन दिए थे और निकाली थी एक विकेट। पहली गेंद एनाबेल सदरलैंड की स्टोर की, इस बार ऑफ साइड पर डाली हुई गेंद थी। बल्लेबाज नटालिया स्काइवर कट करने की कोशिश करी लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। एनाबेल सदरलैंड ओवर द विकेट से ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार हैं। इस बार हल्के से पैरों पर डाली हुई फुलर लेंथ की ये गेंद थी। बल्लेबाज नटालिया स्काइवर ड्राइव किया इस गेंद को, गेंद जाती हुई पीछे मिड ऑफ बाउंड्री की ओर, मिलता हुआ एक रन। और इसी एक रन के साथ स्ट्राइक के ऊपर आते हुए एलेक्स कैप्सी ने अब तक 9 गेंदें खेली, बनाई 5 रन। इस समय जो दोनों बल्लेबाज हैं ना वो ऐसे कुछ बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट की जा रही है। इस बार एक खराब गेंद, बहुत ज्यादा लेग साइड पे गेंद डाली थी एनाबेल सदरलैंड ने। बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी के पैड पे जाकर के गेंद लगी, हालांकि एक रन यहाँ पे मिलता हुआ। एम्पायर का इशारा आता हुआ लेग बाय का, और इसी एक रन के साथ स्ट्राइक के ऊपर आती हुई नटालिया स्काइवर। एनाबेल सदरलैंड ओवर की अब चौथी गेंद लेकर के तैयार। इस बार फुल लेंथ की डाली हुई गेंद, बल्लेबाज नटालिया स्काइवर ने सामने की ओर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया। गेंद जाती हुई पीछे मिड ऑफ बाउंड्री की ओर, मिलता हुआ एक रन। एलेक्स कैप्सी इन्होंने अब तक 10 गेंदें खेली, बनाए 5 रन। एलेक्स कैप्सी भी जो है ना बड़ा धीमा खेलते हुए। पांचवी गेंद एनाबेल सदरलैंड के इस ओवर की, और एक खराब गेंद। इस बार एनाबेल सदरलैंड ने जो है ना बहुत ज्यादा लेग साइड पर ही गेंद खेली। एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड का, एक अतिरिक्त रन इंग्लैंड को मिलता हुआ वाइड के रूप में। एलेक्स कैप्सी इस समय 10 गेंदों में 5 रन बनाकर खेलते हुए। तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड ओवर की अब पांचवी गेंद लेकर के तैयार हैं। इस बार पैरों पर डाली हुई लेग साइड पे गेंद थी, फ्लिक करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है और गेंद जाकर के सीधा पैड पे लगी है, कोई रन नहीं मिलेगा। 5 गेंदे ओवर से हुई हैं, 5 गेंदों में अब तक आए 4 रन। आखिरी गेंद ओवर की है और आखिरी गेंद के ऊपर भी केवल एक ही रन मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5 रन आए ओवर से। शुरुआत हुई ओवर के शून्य के साथ, अंत हुआ है ओवर का सिंगल के साथ। 8 ओवर के बाद जो स्कोर है वो है 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इंग्लैंड का इस समय अगर आप मौजूदा रन रेट देखें तो 5 का चलता हुआ। अनुभव आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। दोस्तों आप सभी तमाम साथी मिलकर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है करते रहिएगा। गेंदबाजी के लिए यहां पे इस समय एशली गार्डनर आती हुई। पहली गेंद एशली गार्डनर के इस ओवर की रहेंगी। तेज गेंदबाज एशली गार्डनर राउंड विकेट से ओवर की पहली गेंद लेकर कहता है।

इस बार गुड लेंथ की डाली हुई गेंद थी और गेंद जाती हुई पीछे लेग साइड पे चार रनों के लिए। ये थोड़ी सी खराब गेंद डाली थी एशले गार्डनर ने, बहुत ज्यादा लेग साइड पे थी, ये गेंद वाइड हो जाती अगर बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी छोड़ देती तो। बहरहाल एशले गार्डनर ओवर के दूसरे गेंद, इस बार फुल लेंथ की डाली हुई गेंद थी और कदमों का इस्तेमाल किया बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी ने। गेंद जाती हुई पीछे ऑफ साइड पे मिलता हुआ एक रन, और इसी एक रन के साथ स्ट्राइक के ऊपर आ चुके नटालिया स्काइवर।

अगर आप साझेदारी की भी बात करें ना, तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में अब तक 22 गेंदों में ही 22 रनों की साझेदारी हो चुकी है। बहरहाल एशले गार्डनर ओवर की अब चौथी गेंद लेकर के तैयार है। चौथी गेंद ओवर की, इस बार एलेक्स कैप्सी बड़ा शॉट खेला है गेंद हवा में और गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए एक लंबा छक्का एलेक्स कैप्सी के बल्ले से आता हुआ। पैरों पर डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी ने कदमों का इस्तेमाल करी और इस गेंद को मिड विकेट और डिप मिड विकेट के इलाके में खेल दिया 6 रनों के लिए। पीछे अगर आप देखें तो वहां पर एलेक्स पेरी मौजूद थी, लेकिन केवल दर्शक बन के रह जाएंगी। एक लंबा छक्का एलेक्स कैप्सी के बल्ले से आता हुआ, बड़ा ओवर इंग्लैंड के लिए। 5 गेंदों में अब तक आ चुके 12 रन। एशले गार्डनर राउंड विकेट से ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार हैं। इस बार एलेक्स कैप्सी वापस से कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद जाते हुए मिड ऑफ बाउंड्री की और 4 रन मिलेंगे। आखिरी गेंद पे एक और चौका, शुरुआत हुई ओवर की चौके के साथ, अंत हुआ है ओवर का चौके के साथ। एशले गार्डनर के ओवर से आते हुए 16 रन। अब जो 9 ओवर का खेल है वो यहाँ पे समाप्त होता हुआ, इंग्लैंड का स्कोर जा पहुंचा है 64 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एलेक्स कैप्सी जो कि धीमा दिख रही थी, इन्होंने अब अपने रनों की गति को एकदम से तेज किया है। 16 रन का ये ओवर इंग्लैंड के लिए, 9 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 64 रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। अगर आप साझेदारी की बात करें तो अब तक 25 गेंदों में हो चुकी है 32 रनों की ये साझेदारी। नटालिया स्काइवर 24 गेंदों में 24 रन बनाकर के स्ट्राइक पे खड़ी है। पहली गेंद ओवर की गेंदबाजी के लिए कप्तान सोफी मुलेन एक्साइट थी। पहली गेंद पर 1 रन निकाल करके स्ट्राइक आ चुकी है एलेक्स कैप्सी के हाथों में। एलेक्स कैप्सी ये एक ऐसी बल्लेबाज है जिसके पास वो छक्के मारने की ताकत है। जिस तरीके से टीम इंडिया में ऋचा घोष है, उसी प्रकार से इंग्लैंड में है एलेक्स कैप्सी। सोफी मोलिनेक्स ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार, स्ट्राइक में मौजूद एलेक्स कैप्सी। इस बार एलेक्स कैप्सी रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, गेंद पैड पे लगी, एम्पायर का इशारा नॉट आउट का है। क्या यहां पर रिव्यू लिया जाएगा? बातचीत होती हुई विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच और ले लिया रिव्यू। दूसरी गेंद थी कप्तान सोफी मोलिनेक्स की, हल्की सी घुगली टाइप की ये गेंद थी और बल्लेबाज एलेक्स कैप्सी जो है घुटना टिका करके यहां पर रिवर्स स्वीप करना चाहती थी। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद जाकर के लगी सीधा पैड पे और जो एम्पायर हैं उन्होंने यहां पे दिया है आउट, सॉरी नॉट आउट दिया एम्पायर ने। और उसके बाद जो कप्तान थे सोफी मोलिनेक्स, उन्होंने विकेट कीपर बैट मुनिस से बात करी और रिव्यू यहां पे लिया गया है। इस समय जो एम्पायर हैं वो थर्ड एम्पायर की मदद से LBW यहां पे चेक करते हुए, हालांकि देखने से तो मुझे नॉट आउट लग रहा है। और जी हां, एम्पायर का फैसला नॉट आउट का था और नॉट आउट का ही रहेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम अपना रिव्यू गवाती हुई, एलेक्स कैप्सी अभी भी क्रिस में नॉट आउट खड़ी है। तीसरी गेंद ओवर की, स्ट्राइक में मौजूद एलेक्स कैप्सी। इस बार विकेट कीपर के ऊपर से खेला है, यहां पे कम से कम 2 रन मिलने चाहिए और 2 रन मिल भी जाएंगे। कमाल का तालमेल नटालिया स्काइवर ब्रंट और एलेक्स कैप्सी के बीच देखने को मिला है। दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से भाग करके 2 रन यहां पे पूरे किए। इंग्लैंड का स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 67 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। एलेक्स कैप्सी इस समय 19 गेंदों में 23 रन बनाकर खेलती हुई। चौथी गेंद ओवर के, इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद जाकर के सीधा डंडे पे लगी है। बड़ा विकेट ऑस्ट्रेलिया को मिलता हुआ। एलेक्स कैप्सी जो ऐसा लग रहा था कि ये बड़े शॉट खेलने के लिए तैयार हैं, वो यहां पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश करी।
बड़ा ही खराब शॉट सिलेक्शन में कहूंगा, जब आप सीधे बल्ले से इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या ही जरूरत है आपको ऐसे आड़े टेढ़े शॉट खेलने की। गेंद जा करके डंडे पे लगी, एलेक्स कैप्सी हो चुकी है आउट। एलेक्स कैप्सी ने 20 गेंदें खेली, बनाई 23 रन जिसमें दो चौके और एक छक्का जो है शामिल था। नौ दशमलव चार ओवरों का जो खेल है वो यहां पे समाप्त होता हुआ। स्कोर इंग्लैंड का 67 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। और इसी के साथ आपको बताता चलूं कि बल्लेबाजी के लिए हिटर नाइट आ चुकी है। हिटर नाइट आ चुकी है क्रीज पे, बल्लेबाज हिटर नाइट के पास भी वो बड़े बड़े शॉट्स खेलने का दमगम है। 9.4 ओवर के बाद इंग्लैंड 67 रनों पे 3 विकेट गवा चुकी है। राउंड विकेट से सोफी मोलियनेक्स ओवर की अब पांचवी गेंद लेकर के तैयार। एक और डॉट गेंद, 5 गेंदों में अब तक केवल 3 रन आए हैं। आखिरी गेंद ओवर की शुरुआत हुई ओवर के सिंगल के साथ, अंत हुआ है ओवर का सिंगल के साथ। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 4 रन आए ओवर से और साथ में आती हुई एक बड़ी विकेट। दस ओवर का खेल समाप्त और 10 ओवर के बाद इंग्लैंड वुमेन्स 68 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब अगर आप साझेदारी की बात करें तो 2 गेंदों में 1 रन की साझेदारी हुई है। इस समय बल्लेबाज हिटर नाइट इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। हिटर नाइट अब तक खेलिए 2 गेंदे बनाए 1 रन। अगर आप गेंदबाज किम गार्ड को देखें तो इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की, बनाए 10 रन।

अगर आप साझेदारी की बात करें तो अब तक 2 गेंदों में 1 रनों की साझेदारी हुई। तेज गेंदबाज किम गार्थ ओवर की पहली गेंद लेकर के तैयार। पहली गेंद किम गार्थ के इस ओवर की, इस बार फुल लेंथ की डाली हुई गेंद। बल्लेबाज हिटर नाइट ड्राइव की इस गेंद को, गेंद जाती हुई मिड ऑफ पे मौजूद एलिस पैरी के हाथों में। एलिस पैरी जब तक के इस गेंद को उठा करके थ्रो करती ना, दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके 1 रन पूरा किए हैं और इसी 1 रन के साथ स्ट्राइक के ऊपर आ चुकी कप्तान नटालिया स्काइवर। नटालिया स्काइवर इस समय 25 गेंदों में 25 रन बनाकर खेलती हुई।

स्कोर पहुंच चुका है 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। राइट आर्म ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज कीम गार्थ ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर के

तैयार। स्ट्राइक में मौजूद बल्लेबाज नटालिया स्काइवर। दूसरी गेंद ओवर की रहेंगी, इस बार पैरों पर डाली हुई गेंद। बल्लेबाज नटालिया स्काइवर ने पॉइंट की ओर खेली इस गेंद को, गेंद जाती हुई। वहां पर मौजूद थी एशले गार्डनर, और एशले गार्डनर जब तक कि इस गेंद को उठा करके थ्रो करती, दोनों बल्लेबाजों ने भाग करके एक रन पूरा किए हैं। स्ट्राइक के ऊपर आती हुई बल्लेबाज हिटर नाइट। हिटर नाइट ने अब तक खेली है 3 गेंदें, बनाई 2 रन। किम गार्थ ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार, इस बार ऑफसाइड पे डाली हुई गेंद। बल्लेबाज हिटर नाइट कट करने की कोशिश करी, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, और एक टप्पा खाने के बाद जो गेंद है वो सीधा विकेट कीपर बैट मुनी के दस्तानों में जाती हुई। कोई रन यहां पे नहीं मिलेगा। तीन गेंदों में अब तक 2 रन आए हैं। तेज गेंदबाज किम गार्थ ओवर की अब चौथी गेंद लेकर के तैयार। स्ट्राइक में मौजूद हिटर नाइट इस बार वापस से हल्की सी यॉर्कर डालना चाहती थी गेंदबाज किम गार्थ, लेकिन गेंद जो है ना थोड़ी सी लो फुल टॉस रह गई। मौका था हालांकि बल्लेबाज हिटर नाइट के पास बड़ा शॉट खेलने का, गेंद जो है बल्ले के बॉटम पे लगी और कोई रन यहां पे नहीं मिलेगा। 4 गेंदों में अब तक आए केवल 2 रन। इंग्लैंड की कप्तान नटालिया स्काइवर और हिटर नाइट दोनों बल्लेबाज के पास वो अनुभव है, और दोनों बल्लेबाज जो बड़े शॉट खेल सकते हैं। इस बार ये गेंद जाकर के पैड पे लगी और एम्पायर की उंगली खड़ी होती हुई, बल्लेबाज हिटर नाइट यहाँ पे आउट होती हुई। 5वीं गेंद थी किम गार्थ के इस ओवर की, बिल्कुल स्टंप्स के लाइन में डाली हुई गेंद थी, और हिटर नाइट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी, गेंद जाकर के लगी सीधा पैड पे। ऑनफील्ड एम्पायर ने बिना किसी देरी के तुरंत आउट का इशारा दिया है। हालांकि जैसे ही एम्पायर ने आउट दिया उसके बाद बल्लेबाज हिटर नाइट ने रिव्यू की मांग की है, और इस समय जो एम्पायर है वो थर्ड एम्पायर की मदद से LBW यहां पे चेक करते हुए। क्या लगता है दोस्तों, ये आउट होगा या नॉट आउट होगा? अगर ये गेंद बल्ले पे नहीं सीधा पैड पे लगी तो मेरे विचार में ये आउट है। बल्लेबाज हिटर नाइट बिल्कुल 3 स्टंप्स के सामने खड़ी थी। इंपैक्ट इन लाइन, पिचिंग इन लाइन और विकेट सेटिंग, इंग्लैंड की टीम ने अपना विकेट तो गवाया ही है लेकिन साथ में अपना रिव्यू भी गवा दिया। बल्लेबाज हिटर नाइट हो चुकी है 6 गेंदों में 2 रन बना करके आउट। इंग्लैंड वुमेन्स 70 रनों पे 4 विकेटें गवा चुकी हैं। इंग्लैंड की टीम जो है ना एक के बाद एक विकेट गवाते हुए चले जा रही है। ऐसा लगता है कि अब साझेदारी बनेगी लेकिन साझेदारी बनती ही नहीं है। मयूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। नई बल्लेबाज क्रिस के ऊपर आ चुकी है फ्रिया कैंप, और फ्रिया कैंप ये भी एक ऐसी बल्लेबाज है जो बड़े शॉट्स अमूमन खेलती हैं। इस समय तो यार देखो सच कहो ना तो इंग्लैंड को चाहिए एक साझेदारी, और वो साझेदारी भी जो है ना बड़ी तेजी से बननी चाहिए। और अगर यहाँ पे नटालिया स्काइवर आउट हो जाती है ना तो फिर इंग्लैंड के लिए तो यार मुश्किल रहेगा रन बनाना। आखिरी गेंद प्रिया कैम के इस ओवर की है। आखिरी गेंद ओवर की, कोई रन नहीं मिलेगा। शुरुआत हुई ओवर की सिंगल के साथ, अंत हुआ है ओवर का 0 के साथ। 11 ओवर का खेल समाप्त। इंग्लैंड इस समय 70 रनों पे 4 विकेट गवाती हुई।

ओलची अवरे हम गेंदबाजी के लिए आती हुई। पहली गेंद जॉर्जी अवरेम के इस ओवर की, स्ट्राइक में मौजूद कप्तान नटालिया स्काइवर। नटालिया स्काइवर इस समय 26 गेंदों में 26 रन बनाकर खेलती हुई। जॉर्जी अवरेम ऑफ स्टंप के बाहर, फ्लाइटेड गेंद। नटालिया स्काइवर बैकफुट पर गई, कट की इस गेंद को, गेंद जाती हुई पीछे शॉर्ट हेड मैन बाउंड्री की, और यहां पे भी केवल एक ही रन मिलेगा। कुल मिलाकर के देखे ना तो अब तक नटालिया स्काइवर ब्रंट ने रन तो बनाया, लेकिन इन्होंने भी काफी धीमाई खेला है। दूसरी गेंद जॉर्जी अवरेम की इस ओवर की,

बहरहाल ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज जॉर्जी अवरे हम ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। इस बार लेग स्टंप पे डाली हुई गेंद, बल्लेबाज नटालिया स्कैवल लेग साइड पे गेंद थी, फ्लिक किया है, यहाँ पे भी मिलता हुआ एक रन।

0: और कैसे आप कह सकते हैं हाँ मतलब मैच में इंग्लैंड टीम बनी हुई है, छोटा बॉल लेग स्टंप पर था, बहुत जल्दी अपनी पोजीशन में चले गए थे वहां पर प्रिया कैंप और गेंद को फ्लिक किया स्क्वायर लेग में। ओवर की फिलहाल चौथी गेंद पर एक और सिंगल मिलेगा, मुकाबले का स्कोर 74-4 विकेटों के नुकसान पे 11 ओवर 4 गेंदों के बाद।
1: सॉरी वर्ष में 4 बार आउट हुई हैं और स्पिन के खिलाफ 2 बार। नहीं वापस जाना होगा लेकिन आज वो इस बारे में नहीं सोच रही होंगी, आज वो सोच रही होंगी किस तरह से नाबाद रहूं और अपनी टीम को आबाद करूं कुछ रनों से।
2: बिल्कुल 160-170 का लक्ष्य हो जाएगा तो बिल्कुल गेम में रहेंगे, पर ये एक शॉट इनको बहुत पसंद है, बढ़िया खेलते हैं। फील्डिंग का जवाब दे वहां पर, कमाल की फील्डिंग, हर बार रन रोके।
1: किरण सर का तो हमेशा से मानना है कि अगर रुक जाती है नेट सीवर ब्रंट तो 170 के पार पिन टीम को लेकर जाती है, सवाल तो यह है कि आज भी क्या उसी को दोहरा पाएंगी। मौजूदा रन रेट से आप 128 तक पहुंचेंगे और वो आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य पहला पड़ाव 150 पार करना होना चाहिए। ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन शायद वह मदद करे। 12 ओवर समाप्त, 76 for 4।

0: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो ये लोग हमारी जान ले लेंगे।
1: पकड़ो इन्हें।
0: इस नकली शादी से आपकी और हमारी, हम दोनों की जान बच सकती है।
2: ओवर का खेल इस पारी में बाकी। बल्लेबाजी का न्योता दिया गया सोफी मॉलिन्यू द्वारा। मैक्सिव ब्रंट का विकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रायोरिटी नंबर वन। हैमिल्टन ने आज पहला ओवर नहीं लेकिन दूसरा ओवर डालने आई थी और वो सफलता एमी जोन्स के रूप में। ये पेस ऑफ की एक बड़ी सोची समझी सी रणनीति लग रही है अब ऑस्ट्रेलिया द्वारा। फ्रेश पिच, जैसा कि वेदा ने बताया था अपनी पिच रिपोर्ट में।
3: रणनीति यही है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पे सिंगल दे रहे हैं वो मैक्सिव ब्रंट को और नए बल्लेबाज को स्ट्राइक पे ले आने की पूरी कोशिश चल रही है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रणनीति चल रही है ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट इंग्लैंड।
4: गति नहीं दे रहे, पिछले वाला बहुत

0: भी मिशन करते रहे हर ओवर में, और जिसे आपने बताया एक रन दे के आप सामने चले जाओ। ये अच्छा गेंद, बढ़िया गेंद थी यहाँ पर, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, तो दो रन मिले यहाँ पर, बाल बाल बच गए, जो लगता ना पैड पर थे बिल्कुल आउट थी। कमाल की कप्तानी और जो रणनीति लेके आए पूरी अश्विन टीम, बहुत ही बेहतरीन।
1: आगे शिखा जो हुआ इस गेंद पे, उससे प्रिया कैंप के लिए भी कुछ सबक हैं जब वो गेंदबाजी करने आएंगी। श्रीलंका के खिलाफ बहुत इंप्रेसिव स्पेल डाली थी प्रिया कैंप ने, मैच का रुख बदला था, गजब की ऑलराउंड खिलाड़ी हैं। उसके लिए थोड़ा साथ निभाने की जरूरत, कमाल का शॉट, फील्डर ऊपर, लेंथ ऊपर, चार रन।
2: प्रिया कैंप और डैनी गिब्सन की जो पार्टनरशिप हुई थी अगेंस्ट स्कॉटलैंड, 19 गेंदों पे 61 रन बनाए थे, और ये बैक टू द बॉलर ये खेल रही हैं, काउंटर अटैक चल रहा है मेरे हिसाब से, तो शी वोंट बैक डाउन। और बहुत ही बढ़िया शॉट, शायद यहाँ पे लेंथ मिस कर गई स्लोअर बॉल के साथ, हैमिल्टन थोड़ा आगे था। ये
1: अच्छा संकेत इंग्लैंड के लिए इस साझेदारी के दम पे, जरूरी है कि नैच से वो ब्रंट को अकेले वो भार ना उठाना पड़े। फील्डिंग एफर्ट्स आज के देखते हैं, तो ये शुरुआत में किया था, उसके बाद ये कैच और जो वॉल द्वारा सेफ हैंड्स, जहां पे आसान सिंगल लगता है शिखा, कितनी बार वो एंगल्स कट करके फील्डर को थोड़ा सा एक दो यार्ड ऊपर रख के तो गुंजाइश ही बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और फिर बेथ मूनी का ये वर्ल्डी, माल का कैच एक बार फिर से, नो की कॉल है, डायरेक्ट हिट खतरा नहीं, बच गई।
0: फील्डिंग बढ़िया करते हो तो बिल्कुल आप गेंदबाज को बैक करते हो, और जो कैच पकड़ा बेथ मूनी ने बहुत ही बेहतरीन था कैच, क्योंकि यही गेंदबाज को टॉप पर लेके आते हो, और जो डीआरएफ लिया बहुत ही महत्वपूर्ण था वो, क्योंकि वो आउट हो गई वहाँ पे डैनी वाइट। डैनी वाइट अच्छे फॉर्म में, 300 रन बनाए इस विश्व कप में, बहुत क्रूशियल विकेट थी वो।
1: या, 300 का आंकड़ा पहली बार पार किया गया एक विमेंस टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन में। गति धीमी, आउटसाइड दी ऑफ स्वीप खेलने गई थी इससे वो ब्रंट, लेकिन मिलेगा सिंगल, रखेंगी स्ट्राइक, 7 ओवर बाकी।
3: मान ले अदिति वांटेड, बाय बाय।
4: दो मिनट में विंडो बंद, माँ को बोलो जल्दी UPI करें, नहीं तो कैश दो।
5: जब अतिथि कॉलेज खुद चूज कर सकती है तो UPI खुद क्यों नहीं शुरू करे अपने ग्रोन अप्स के लिए। पॉकेट मनी ऑन गूगल पे,
6: गूगल पे सब टिक है।
7: मेरे प्यार और परिवार के लिए जो भी बुरा सोचेगा उसे जिंदा दफना दूंगा।

0: Well over Mehenga tha, Ash Gardner ka round the wicket. बहुत समय से इंतजार कर रही है कि लेंथ थोड़ी सी ऊपर आए तो वो स्वीप शॉट लगा सके, जैसा कि कई बार किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। शुरुआत वहां भी रन बॉल के आसपास थी, लेकिन फिर एक्सेलरेटर पे पैर जैसे ही 30 गेंदों का वो फेस क्रॉस किया।
1: हाँ, उसी टेम्पलेट पे खेल रहे हैं, यहाँ पर भी सेट हो चुके हैं वो, बस उन्हें चाहिए कि उनका जो पार्टनर है उनको सपोर्ट करे। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, सिंगल मिलेगा। और नैट सेवर ब्रंट को स्वीप बहुत पसंद है, डाउन द लेग साइड डीप स्क्वायर लेग मूव करती है लैटरली, डीप स्क्वायर लेग का फील्डर कहीं भी आप प्लेस कर लें, डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में भी बढ़िया शॉट्स हैं इनके पास, पैडल स्वीप भी करती हैं, ऑलराउंड खिलाड़ी हैं ये, हर जगह मारती हैं। और जिस वजह से इन्होंने एशली गार्डनर को लाया था फ्रेया कैम्प को गेंदबाजी करने के लिए, ये रही। ओ, यहाँ पे सिंगल ले लिया है फ्रेया कैम्प ने, बढ़िया बल्लेबाजी, दो रन की मांग है यहाँ पे। ओ, एलिस पेरी से बॉल छूट गई, ओ सॉरी, निकला कैरी थी फील्डर,
0: रेयर मिस्टेक। कुछ देर पहले हमने तारीफ की थी इस फील्डिंग की, एंड आई थिंक उन्हें पता था कि शायद दो के लिए पुश किया जाए, और नजरें हटी और नाच से वो ब्रंट पुश कर रही है। देखिए फ्रेया कैम्प तो संतुष्ट थी एक सिंगल से, कि उन्हें लगा उन्होंने एश गार्डनर के खिलाफ अपना काम कर लिया, अपनी जिम्मेदारी निभा ली। एक प्रॉपर मैचअप ये लेफ्ट हैंडेड बैटर के खिलाफ। वेदा कृष्णमूर्ति जो

0: रहेंगे हमारे साथ लॉर्ड से। इधर परसेंटेज वाइज मैच कहां पे झुका हुआ देखते हैं अभी। परसेंटेज क्रिकेट तो वैसे इंग्लैंड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉशन और अग्रेशन के बीच में एक जो फाइन लाइन है उस बैलेंस को ढूंढ सकें। 133 इस रन रेट से 153 जो आप फाइनल में मान के चलेंगे शिखा, 170-75 से कम नहीं।
1: यहाँ पे एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा, 10 रन प्रति ओवर भी मेरे हिसाब से 153 काफी नहीं होंगे। प्रिया कैंप पावर हिटिंग के लिए जानी चाहती हैं, यहाँ पे उन्हें और शायद उसके बाद डैनी गिब्सन को भी आके मानना पड़ेगा एंड सिवा ब्रांड को मानना तो है ही। 14 ओवर के बाद 93 for 4। ड्रिंक्स ब्रेक।
2: हेल्प मी प्रेप फॉर माय यूपीएससी एग्जाम।
3: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूरत।
4: कभी एक्साइटमेंट, कभी शॉक, कभी लाउड, कभी साइलेंट। जियो हॉटस्टार पे इमोशंस का रोलर कोस्टर मैदान के बाहर भी रहेगा जारी।
5: गेम का है तुम्हारा
6: खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन।
4: टाइटंस ऑफ एंटरटेनमेंट वॉच लिस्ट में है सुपर हिट्स की कतार ऑन जियो हॉटस्टार।
7: हमें आपके गांव में और जगह खोदने का आदेश दिया गया
8: है। जगह पर कब्जा करने वाले तुम हो?
9: आप लोग ये कुआं बंद करिए या फिर हम खुद ही करते हैं।
7: आपके रोने धोने से ये रुकेगा नहीं।

0: तुम्हारे
1: बाद फ्रिया कैंप अपना खाता खोल चुके हैं और स्ट्राइक पर वापस आने वाले हैं नैट सीवर ब्रंट। मुशवार अली भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ये लेग स्टंप गेंद, बल्लेबाज ने स्वीप किया था, खराब बॉल बहुत ज्यादा बाहर डाली, अंपायर का इशारा जहां पर ये गेंद वाइड है, 11 ओवर।

0: विकेट गिरा, पहला विकेट इंग्लैंड का एमी जोन्स के रूप में। जो साझेदारी चाहिए थी वो एक्चुअली दूसरे विकेट के पतन के बाद आई ही थी, कि फिर एक रिवर्स स्वीप, फिर वो सफलता, सडनली चीजें बदलने लगी। एट द नाइट आउट हुई, चौथा विकेट बनी, 30 गेंदों में 29 रन, 2 विकेट। यहां थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए था इंग्लैंड को, ताकि एक्सेलरेशन के इस फेज का पूरा इस्तेमाल करें, वहां खोया है। लेकिन अभी भी चांस है। अनबल सदरलैंड, तीसरा ओवर, पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, सफल। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहली गेंद, और चौके से स्वागत किया अनबल सदरलैंड का प्रिया कैंप ने।
1: बहुत ही बढ़िया शॉट, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट डाउन द लेग साइड हो गया सदरलैंड से, अब इसके बाद वो चेंज ऑफ पेस ही डालेगी। प्रिया कैंप को पसंद है बॉल पर पेस, और ये डाउन द थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है लाइन खोई।

0: पे, और ये ऑफ कटर ही थी बाय द वे, तो इंटेंशंस बहुत सही, एग्जीक्यूशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सदरलैंड से.
1: He's on the spot. Single up, interesting. And that's how Brunt कैसे अप्रोच करती हैं आने वाले ओवरों को. बार-बार पेस के खिलाफ डिसमिस हुई है 2025 से टी20 में फ्रेया कैंप, हर चौथी गेंद पे, लेकिन बाउंड्री भी है इसलिए स्ट्राइक रेट 161 का है. चांसेस लेना पसंद है, शॉट्स खेलना पसंद है, जैसा थोड़ी देर पहले शिखा बता रही थी कि अगर ये रुकती है तो बड़े शॉट्स लगा सकती है, जहां इंग्लैंड पहुंचना चाहते हैं और जहां अभी है उसका फासला बहुत जल्दी तय कर सकती है. आने वाले बैटर्स चाहेंगे कि वो फाउंडेशन मिल सके ताकि वो खुल के अपने शॉट्स खेल सके. नैट से वो ब्रांड की मौजूदगी बहुत जरूरी. ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट किया था इस लाइन को, लेकिन फिर से सीधे फील्डर की तरफ मारा है. मिलेगा एक वेदा कृष्णमूर्ति, मूर्ति जुड़ती हुई हमारे साथ लॉज से.
2: जी अनंत, इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है इंग्लैंड. यहाँ पे कॉन्शियस स्टार्ट है, वो एक्सप्लोजन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मिडिल ओवर में हुआ नहीं, बट नैट सिवर अभी भी क्रीज पे है.
1: टाइमिंग कमाल की है शॉट पे, एफर्ट भी अच्छा, लेकिन चौका नहीं रोक पाएंगी इस ओवर का दूसरा.
0: 100% एफर्ट वहां पे जॉर्जिया वेयरहम द्वारा, हाथ को लग के गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई. स्लोअर वन को बहुत अच्छा पिक किया था यहां पे प्रिया कैंप ने, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन थी ये.
1: टाइमिंग उस पे 21 वर्षीय प्रिया कैंप इस स्टेज पे फाइनल में एक बहुत जरूरी योगदान देती हुई, लगभग बैक टू द बॉलर, लेकिन शॉट्स खेलने में कोई संकोच नहीं, बड़ा क्लैरिटी के साथ अपनी इस पारी को अभी तक अंजाम दिया है. और वेदा साथ में काम आसान किया है नैट से वो ब्रंट के लिए कुछ हद तक.
2: बिल्कुल बढ़िया इनिंग सो फार फ्रेया कैंप. वो लेफ्ट हैंडर कई बार ऐसे मिडिल ओवर्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है. सनग्लासेस टूट गई है वहां पे जॉर्जिया वेयरहम की, नया सनग्लासेस मांग रही अपनी टीममेट से, बट लेफ्ट हैंडर इंपॉर्टेंट रहता है मिडिल ओवर्स में.
1: सिंगल सिंगल सिंगल के साथ होगी इस ओवर की समाप्ति. 15 में 105, 5 ओवर बाकी.

ओवर, चार गेंदे टीम का स्कोर 75, चार विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से स्वीप किया और बहुत बढ़िया फील्डिंग शॉट फाइनल के पास। किम गर्त ने गेंद को रोका, जो कि एक तेज गेंदबाज हैं और तेज गेंदबाज के द्वारा इस तरीके से डाइव मारना आसान काम नहीं रहता है। इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अपना 100% दमखम लगाते हैं। 76 पर 4 लास्ट बॉल और सामने है प्रिया कैंप।

0: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान शुरू कर रही है अपना तीसरा ओवर, लेकिन स्वागत चौके के साथ कैप्टन वी कैप्टन, रिजल्ट इंग्लैंड के हित में।
1: अपने तीनों स्टंप्स को उन्होंने एक्सपोज कर दिया था, रूम बनाया अपने लिए, और एक्स्ट्रा कवर्स के फील्डर के राइट से कितना अच्छा इन्होंने गैप ढूंढा यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। ये इनका पहला चौका है, पावर प्ले के बाद इन्होंने खाली 20 गेंदें खेली थी, 18 रन बनाए थे और यहाँ पे चौका इन्होंने मार दिया।
0: पहले विकेट के लिए साझेदारी एक बार फिर से नहीं मिली इंग्लैंड को। एमी जोन्स एक बार फिर से सस्ते में आउट हुई, लेकिन सिव ब्रंट और डैनी वॉइट हॉज के बीच 25 रन से 22 गेंदों में सिव ब्रंट और कैप्सी ने 35 रन जोड़े। एक्चुअली उम्मीद तो फॉर्मर कैप्टन हेदर नाइट और करंट कैप्टन सिव ब्रंट से थी, क्योंकि सेमीफाइनल में कुछ ऐसी कहानी रही, मुश्किल से उबारा था इंग्लैंड की उस टीम को जो एक समय 20-25 रनों पे ही 3 विकेट खो बैठे थे। एक्सपीरियंस यहां पे प्रिया कैम, डैनी गिब्सन नीचे 86 मीटर का छक्का जड़ा था हेडिंगली में उन्होंने, बिग हिटिंग है इंग्लैंड के पास नीचे, आउटसाइड एज थोड़ा सा भाग गया लेकिन चलेगा इंग्लैंड के लिए। दो रन और फ्रेया कैम्प के खाते में, एक बहुत जरूरी योगदान ये उनके बल्ले से।
1: बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे सोफी मॉलिन्यू से, वो रूम नहीं दे रही है, वो लेंथ में नहीं डाल रही है, ऑफ साइड में सब अंदर है, बट अक्रॉस जो लेके जा रही है वो थोड़ा सा बैकफुट में डाल रहा है लेफ्ट हैंडर को।
0: बहुत सारे शॉट्स भी मौजूद है फ्रेया कैम के इस तरकश में, इतने तीर हैं, वो स्ट्रेट ड्राइव खेल सकती हैं, स्लॉग स्वीप खेला था कैथरीन ब्राइस पे उन्होंने, मुझे याद आता है, तो मुश्किल होगा फील्ड सेट करना।
1: हाँ, मुझे लगता है इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी में इवन नैट्स सिव ब्रंट इंक्लूडेड जो फ्लुएंसी हमें चाहिए थी वो अभी फ्रेया कैम के बैट से नजर आ रही है, और ये लास्ट गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की है इंग्लैंड एट द एंड ऑफ 16 ओवर्स 114/4।
2: हेल्प मी गेट पापा जी,
3: चले गेंदबाज, यॉर्कर था ऑफ स्टंप की लाइन पर, बल्लेबाज ने सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को वहीं पर ब्लॉक किया। अंतिम बॉल पर कोई रन नहीं, इसी के साथ ओवर का यहां पर होगा समापन। इस ओवर से आए हैं 6 रन, 12 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 76 विकेटों के नुकसान पर। नैट सिव ब्रंट इस वक्त 30 गेंदों में 29 पर, 3 चौके, 96 का स्ट्राइक रेट, और साथ में फ्रेया कैम्प 3 गेंदों में इस वक्त 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अरविंद गिल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं।
4: ये 44 रन की साझेदारी एक तरह से डिलाइट लेकर आ रही है पूरे इंग्लिश क्रिकेट फैंस के लिए, और उसके ऊपर से वो फ्रेया कैम की डिलाइटफुल पारी भी, 25 बनाए हैं, 16 गेंदों का सामना किया है, जिस तरह के सहयोग की जरूरत थी नैट सिव ब्रंट को वो प्रदान किया है कैंप ने, और इससे उम्मीदें जाग रही हैं, बढ़ भी रही हैं इंग्लैंड के चांसेस के लिए। पहली गेंद वाइड, अब थोड़ा दबाव ऐसा लग रहा है कि इस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के ऊपर। वेदा है हमारे साथ यहाँ पे, दो और फीमेल ब्रॉडकास्टर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स रीमा मल्होत्रा और उसके साथ साथ झूलन। एक जो मुझे टैक्टिकल एरर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नज़र आया वो ये था कि जॉर्जिया वेरम से पहला ओवर करवाने के बाद फिर उनको दूसरा ओवर करवाया नहीं, और हम लोग बार बार बात कर रहे हैं वो मैचअप्स के लिए, जॉर्जिया वेरम वर्सेस नैट सिव ब्रंट, वो एक मौका था, 7 बार उनका विकेट ले चुकी थी, पर उनको रोकना वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा मिला है यहाँ पर इंग्लैंड को।
5: सवाल बिल्कुल सही, आई थिंक कहीं ना कहीं एक मोमेंटम था उस टाइम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के पास, वो मोमेंटम ने खोया है। उसके बाद आपने गार्डनर को लेके आए, उसी ओवर से मोमेंटम बिल्ड होते गए इंग्लैंड की तरफ, बड़ा ओवर था वो मैच का, जहां पे आपके सामने इतना बढ़िया मैचअप है, इतना बढ़िया स्टार्ट किया जॉर्जिया वेरम ने, 7 बार आउट कर चुकी थी नैट को, तो मेरे हिसाब से एक और ओवर डलवा सकते थे उस टाइम उनको।
4: वेदा विकेट थोड़ा बहुत ड्राई लग रहा है, स्पिनर अभी भी दो ओवर बाकी है जॉर्जिया वेरहम का, मे बी उस छोर से वेरहम को लगाना वो उचित रहेगा क्योंकि इस समय विकेट की तलाश है ऑस्ट्रेलिया को।
1: देख रहे थे इसके बाद तीन ओवर बचेगा गार्थ का तो स्पेल खत्म हो जाएगा, न ज्यादा हैमिल्टन को डेथ में देखा नहीं है। मॉलिन्यू का एक ओवर है, सदरलैंड का एक ओवर है, तो एक ओवर आपको वेरहम या गार्डनर से डलवाना पड़ेगा। दो ओवर मुश्किल है इस वक्त वेरहम का डालना, स्पेशली जब फ्रेया कैंप स्ट्राइक में है।
4: अच्छी पारी के लिए फ्रेया कैंप ने, बहुत ही फ्री फ्लोइंग बैटर नजर आती है, वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है जिस तरह से वो बैट को होल्ड करती है, यहाँ पर बैट होल्ड करती हैं उससे भी उनको फायदा मिलता है। ऑस्ट्रेलियाई सीमर ने ज़्यादा विश्वास दिखाया है उसी चेंज ऑफ पेस को, और चेंज ऑफ पेस के ऊपर उसमें सफलता भी मिली है।
6: और जब विकेट में आपने धीरे डाला है ना तो वहाँ पे आपने परेशानी में भी डाला है, उसमें सफलता भी हासिल।

0: रन फॉर टू नहीं, एक ही मिलेगा। ये 50 रन की जो साझेदारी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है इंग्लैंड के लिए। अब ये बेस तो सॉलिड हो गया है वेदा, यहाँ से अब इंग्लैंड क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, कम से कम मे बी 155, 160, 165। ये मैच शुरू होने के पहले रीटा ओरा, ब्रिटिश पॉप सिंगर सॉन्ग राइटर, उनका ये ज़बरदस्त प्रदर्शन। वेदा कैसा लगा मैदान पे इस तरह के परफॉर्मेंस को देखकर?
1: काफी एंजॉय किया मैंने, पास में थी बिल्कुल। 17 ओवर खत्म हुआ 122 पे 4।
2: निदा बिलाल हमारे साथ में हैं। मुसवार अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में बने रहने के लिए। आने वाले बल्लेबाजों में डैनी गिब्सन है, चार्ली डीन, लिंसी स्मिथ, सोफिया एक्लस्टन और लॉरेन बेल। अभी जो हालत चल रही है उसके हिसाब से 150 रन बिल्कुल मुमकिन है। और अब ये पारी का 13वां ओवर, गेंदबाजी पर आए हैं लूसी हैमिल्टन। अपने शुरुआती 2 ओवरों में 10 रन दिए, 1 विकेट इनके नाम। राउंड द स्टंप्स के साथ पहली गेंद लूसी हैमिल्टन की। ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से खेला, ये बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। गेंदबाज ने खुद शॉर्ट कवर की दिशा में जाकर बॉल को रोका, थ्रो किया, काफी तेज थ्रो था, लेकिन इसके बावजूद बल्लेबाजों ने यहां पर सिंगल किया मुकम्मल 77 पर 4। 12 ओवर एक गेंद के बाद ये शॉट मेरे ख्याल में जोखिम से भरा था। और जैसी टीम की इस वक्त हालत चल रही है, आप कोई विकेट एफोर्ड नहीं कर सकते।
3: शतक है वर्ल्ड कप में, 45 गेंदे पे अर्ध शतक आया, लेकिन तब आया जब टीम मुश्किल में थी, तब आया जब मंच बड़ा था और प्रेशर दुगना था और सामने ऑस्ट्रेलिया थी। और जिस तरीके से प्रेशर में परफॉर्म करती है ना, ऐसा लगता है कि प्रेशर को अपना लेती है। और शॉट सिलेक्शन सब और झुलन, सबसे बड़ा जो अहम है इस इनिंग की हाईलाइट, और ये वो पल जहाँ पे अपना अर्ध शतक पूरा कहते हैं कि जानती है काम अभी अधूरा है। मेरे हिसाब से इस पारी में अभी तक शॉट सिलेक्शन बेहतर रही है, वो कंट्रोल्ड बैटिंग।
0: रन आउट का चांस हो, डायरेक्ट हिट, बहुत ही धीमी गति से बॉल डाल रही है इस ओवर में एशली गार्डनर। प्रयास यही है कि ज्यादा आपको पेस ना दें बैटर के लिए।
4: बिल्कुल सवादा, बहुत ही स्लो डाली थी इसलिए शॉट खेलने पहले चली गई थी। यहाँ पे डायरेक्ट हिट होता था डेफिनेटली फ्रैंक कैंप को बाहर जाना पड़ता था। बहुत ही बेहतरीन शॉट, क्वालिटी शॉट, बॉयज क्रिकेट में देखने को मिलता है इस तरह का शॉट अगेंस्ट द स्पिन, मिड विकेट के ऊपर से इतना बढ़िया कंट्रोल पे शॉट खेली, मजा आ गया देख के। एंड इस लड़की के पास वो एक्स फैक्टर है, बड़ा शॉट खेल सकती है। उनका बैटिंग ग्रिप भी देखिए, कितना टॉप हैंडल बैट पकड़ती है, कितना लंबा, उसके वजह से आर्क उनको ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा शॉट,
0: गुड थॉट, एक्सेलेंट बैटिंग फ्रेया कैंप की। इसके पहले मिड विकेट पे ऑफ द बैक फुट, इस बार जगह बना के इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश। अंतिम के ओवर कई बार डिसाइड करते हैं कि किस के तरफ मैच ये जा रहा है। 17 से 20 ओवर में फ्रेया कैंप का स्ट्राइक रेट 187, तो इस समय सही बैटर है इंग्लैंड के पास वो मैक्सिमाइज करने के लिए अंतिम के ओवरों को। एक तरफ नैट्से व ब्रंट और फिर फ्रेया कैंप, पुल किया ब्रिस्क शॉट, पावरफुल शॉट, 9 आए इस ओवर में 131 पे 4।
2: सकते हैं और ऐसे में रिस्की फ्री आपको क्रिकेट वहां पर खेलना होगा, मतलब आप जोखिम लेना चाहते हैं तो फिर आप एक बड़े शॉट का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे एक रन के लिए अपना विकेट दे देना, ये मेरे ख्याल में फायदे का सौदा कहीं से नजर नहीं आता है।
5: जी बढ़िया है, लेकिन सातो जिस तरीके से इस वक्त आज के दिन सातो कहीं ना कहीं गेंदबाजी करी है, जिस तरीके से आज के दिन गेंदबाजी देखने को मिला है ऑस्ट्रेलिया विमेंस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं दबाव डालने में कामयाब रही है। फिलहाल चले यहां से इस ओवर की पहली गेंद के साथ सदरलैंड तैयार, और पहली गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड की दिशा में, ऐसे में सिंगल ही मिल पाएगा, बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा, छक्का लगाना पड़ेगा स्कीपर।
0: अंतिम के ओवर में इंग्लैंड की बल्लेबाजी जबरदस्त रहती है,
5: को इतना ज्यादा गेंद खेल चुके हैं तो अब तो इन्हें हाथ

0: खोलना चाहिए। अब सिंगल डबल से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि अब यहाँ से आखिरी के 11 ओवर का ही खेल बचा, 11 गेंदों का ही खेल बचा हुआ है। रिया कैंप ने जरूर बढ़िया बैटिंग करी, 145 की स्ट्राइक रेट के तहत इन्होंने रन बनाया है आज के दिन, और इस ओवर की अगली गेंद के साथ अब एक बार फिर से तैयार हो रही है। 132 चार विकेटों के नुकसान पर टीम का स्कोर। इस ओवर की दूसरी गेंद फ्रैक कैंप ने कदमों का इस्तेमाल किया है, स्कैन को मिड ऑफ की दिशा में खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में स्कैन पर भी एक ही रन मिल पाएगा, और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 133 चार विकेटों के नुकसान पर 18.2 ओवर की समाप्ति के बाद। फिलहाल सदर लेन एक बार फिर से इस ओवर की अगली बॉल के साथ तैयार हो रही है, बढ़िया ये मुकाबला चल रहा है। फिलहाल सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि साथियों लाइक की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, दर्शक तो काफ़ी तादाद में है लेकिन लाइक की संख्या काफ़ी कम है, तो एक बार वीडियो को लाइक करते चलिए। इसी बीच एक और बढ़िया शॉट और स्कैन पर 2 रन भाग कर पूरा कर लिया स्कीवर ब्रंट ने, और ऐसे में इसी 2 रन के साथ इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 135 रन। लो फुल टॉस गेंद थी, छक्का लगाना चाहिए था स्कीवर ब्रंट को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थकी थकी सी ये नज़र आ रही है, कनेक्शन उस तरीके से हो नहीं पा रहा है, बड़ा शॉट आ नहीं पा रहा है बल्ले पर गेंद, और इस वजह से साथ तो यहाँ पर बड़ा शॉट लग नहीं पा रहा है। इस ओवर की अब चौथी गेंद के साथ एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, सामने स्कीवर ब्रंट 49 गेंद पर इस वक्त 54 रन बनाकर खेल रही है। इस ओवर की यह चौथी गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्कैन को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और आसानी के साथ एक और सिंगल पूरा कर लेंगे। इसी सिंगल के साथ इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 136 रन 4 विकेटों के नुकसान पर है। करेंट रेट 7.2 नौका चल रहा है, 47 गेंदों में 66 रन की पार्टनरशिप इस वक्त दोनों बल्लेबाज के बीच में देखने को मिला है। फिलहाल इस ओवर की 5वीं गेंद फ्रैक कैंप ने स्कैन को स्वीप कर दिया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और जब तक फील्डर गेंद को उठाकर फील्ड करेंगे तब तक आसानी के साथ एक और सिंगल पूरा कर लिया जाएगा। इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक वापस से स्कीवर ब्रंट के पास, ये 19वां ओवर है, यहाँ से रन बनाने पड़ेंगे, रन बनाना पड़ेगा, हाथ खोलना पड़ेगा साथियों। आखिरी गेंद के साथ एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, अनाबेल सदरलैंड सामने ब्रंट के लिए, 50 गेंदों में ये 55 रन बनाकर खेल रही हैं, 5 चौका अभी तक इनके बल्ले से देखने को मिला है, और ऐसे में अब यहां से क्या कुछ करेंगी वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। कमाल का ये मुकाबला चल रहा है, आखिरी गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, चोर कर लेते डिलीवरी सिंगल भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज ने तेजी के साथ बॉल उठाकर फील्ड किया है। क्या बढ़िया ओवर निकाला है सदरलैंड ने, मात्र 6 ही रन खर्च किए हैं वो भी 19वें ओवर में। तो ऐसे में सात 19 ओवर की समाप्ति के बाद 137 चार विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर इस वक्त नजर आ रहा है। 19 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, इंग्लैंड की टीम ने 137 रन बना लिए हैं चार विकेटों के नुकसान पर, और अब यहां से 20वीं ओवर का आगाज होने को जा रहा है, आखिरी ओवर का आगाज होने को जा रहा है। इंग्लैंड 137 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 19 ओवर्स, 19 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। और फिलहाल यहाँ
1: हाय गाइस, ये वीडियो हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए है, तो आइए आपको हमारे शहर का वाइब चेक कराते हैं। यहाँ वॉलेट भूल जाओ तो लाइफ नहीं रुकती, लाइसेंस भूल जाए तो भी सवारी नहीं रुकती, क्लिक क्लिक से सारे सरकारी काम हो जाते हैं
0: बिना क्लिक कर दिया है साथियों। मिड विकेट की दिशा में ऐसे में सिंगल ही मिल पाएगा, हवा में जरूर शॉट खेला था, 1 बाउंस 2 बाउंस सीधा फील्डर के हाथ में गई है, और ऐसे में साथ तो आसानी के साथ सिंगल पूरा कर लिया जाएगा। इंग्लैंड 138 चार विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल मॉर्नी नुक्स इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ तैयार, फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ कप्तान मॉलिनुक्स तैयार, और सामने इंग्लैंड के कप्तान स्कीवर ब्रंट हैं, तो देखने वाली बात रहेगी कौन बाजी मारेंगे। एक और बढ़िया गेंद मॉलिनुक्स के द्वारा, और यहां पर पहला रन तेजी के साथ पूरा किया है, दूसरे के लिए घूमे हैं, दूसरे का कॉल है और दूसरा रन भी पूरा कर लिया जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 140 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 19.2 ओवर की समाप्ति के बाद। ये 20वां ओवर चल रहा है। फिलहाल सभी साथी एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक करते चलेगा। गेंदबाज मॉलिनुक्स इस ओवर की अगली बॉल के साथ एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं, बढ़िया ये रोमांचक मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। 19.2 ओवर का खेल खत्म, करेंट रन रेट 7.24 का, 50 गेंदों में इस वक्त 51 गेंदों में 70 रन की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन पार्टनरशिप उतना बढ़िया हो नहीं पाया है। पिछली गेंद पर जरूर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पेड़ों पर ये गेंद 30 गेंद को सीधे बल्ले से

0: खेल दिया फ्रैंक कैंप ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, और ऐसे में एक और सिंगल मिल पाएगा। 141 रन तक ही पहुंच पाया है इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड। आखिरी का तीन बॉल और बचा हुआ है, फ्रैंक कैंप के पास स्ट्राइक रहेगा। इसकी बार ब्रंट आज उतनी खास बल्लेबाजी कर नहीं पाए हैं। 53 गेंद पर 58 रन बनाया है फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, और फ्रैंक कैंप ने इस गेंद को लॉब कर दिया हवा में, और ये बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार बढ़िया कनेक्शन होता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में, ऑफ स्टंप के बाहर आए, फ्रंट फुट पर आकर सीधे बल्ले से गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 147 6 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया छक्का फ्रैंक कैंप के बल्ले से आता हुआ, क्या शॉट खेला है। फिलहाल इस ओवर की अब अगली गेंद के साथ एक बार फिर से तैयार, आखिरी का दो बॉल अभी भी बचा हुआ है मोलिनुक्स के इस ओवर का। फ्रैंक कैंप क्या यहां से अपना दशक पूरा कर पाएंगे। अगर यहां से दो बड़ा शॉट आता है, एक चौका एक छक्का, तो जरूर बाउंड्री पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस ओवर की पांचवी गेंद चतुराई के साथ मोलिनुक्स ने इस गेंद को डाला है, पहला रन तेजी से भागी है, दूसरे रन का भी कॉल है, और दूसरे रन के लिए भी भागी और पूरा भी कर लिया जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद था, मिड विकेट की दिशा में धकेला है, और इसी दो रन के साथ इंग्लैंड पहुंचा 149 के स्कोर पर 4 विकेटों के नुकसान पर। अगर डायरेक्ट हिट होता तो फिर जरूर रन आउट का चांस बन सकता था। फिलहाल मोलिनुक्स इस ओवर की अगली गेंद के साथ एक बार फिर से तैयार हो रही है। सामने फ्रैंक कैंप 27 गेंद में 43 रन बनाकर खेल रही है, बढ़िया ये मुकाबला चल रहा है। एक बार फिर से अपने हल्के हल्के कदमों से रन अप के लिए तैयार। फिलहाल एक बार सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक करते चलेगा, अपने हल्के हल्के कदमों से चले। ये गेंद इस गेंद को उड़ाया हवा में, ये बॉल जा रही है वन बाउंस लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में, और आसानी के साथ सिंगल पूरा कर लेंगे। और इसी सिंगल के साथ ये ओवर खत्म होता हुआ, और 150 रन बना लिए सातों इंग्लैंड की टीम ने। सभी साथी एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और आप सभी साथी कहीं मत जाइएगा क्योंकि सातों अब यहां से इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज होगा। क्योंकि जब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज हो रहा है, एक बार मैच समेरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये फाइनल मुकाबला है सातों दोनों टीमों के बीच
1: का, टोटल दबाव बढ़ता है यहाँ पे जो टीम चेस करती है उसके लिए। अब 5 में से 4 बार उस टीम को जीत हासिल हुई है, तो 80% चांसेस है यहाँ पे। पर ये मुकाबला अभी भी बरकरार है, इंग्लैंड ने बनाया है 150 पे 4 20 के बाद।
2: ट्रेन मी टू बिकम अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट।
0: बीच में खेला जा रहा है इस वक्त देखा जाए तो आज इंग्लैंड की तरफ से स्कीवर ब्रंट ने जरूर अर्धशतक लगाए, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट काफी कम रहा। फ्रैंक कैंप ने बढ़िया बल्लेबाजी करी, और एलिसे कैप्ची ने 23 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी कमाल का रहा। आज शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दबाव डालकर रखा है इंग्लैंड की टीम को, और फिलहाल अब यहां से साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी का आगाज होने को जा रहा है। क्योंकि T20 क्रिकेट में ज़्यादा वक्त दिया नहीं जाता है टाइम आउट का, और ऐसे में साथ इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन स्कोर बोर्ड पर बना दिए हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम को चैंपियन बनने के लिए, ये ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए इस मुकाबले के अंदर 151 रन बनाने हैं 120 गेंद पर 151 रन बनाना है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर चैंपियन बनना है तो। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज जॉर्जिया बॉल के साथ बैट मुनी इस वक्त
3: इंग्लैंड को न्योता दिया बल्लेबाजी का लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पे। सिवर ब्रंट की बैक टू बैक 50s इस विश्व कप में, और अब ऑलरेडी 200 से ज्यादा रन इस वर्ल्ड कप में, लेकिन फ्रैंक कैंप के बिना 150 तक पहुंचना असंभव रहता। 28 गेंदों में उनके 44 रन, और ये साझेदारी जो 57 गेंदों में 80 रनों की जड़ी सिवर ब्रंट और कैंप ने, उसी के दम पे एक फाइटिंग टोटल जो बन सकता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे सफल रन चेस अगर ऑस्ट्रेलिया वहां तक पहुंच जाते हैं। गेंदबाजी के लिहाज से गार्थ हैमिल्टन, मोलिनी और सदरलैंड सबके खाते में एक एक सफलता। जॉर्जिया वेरम और एश गार्डनर ने कुल मिला के 5 ओवर डाले। गार्डनर खासतौर से आज महंगी साबित हुई, लेकिन 4 विकेट चटकाए, 150 तक पहुंची है। लेकिन इंग्लैंड की टीम 151 टू गेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर सातवीं बार इस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे करना है उन्हें कब्जा, अगर इंग्लैंड डिफेंड करते हैं तो एक बार फिर से आईसीसी टूर्नामेंट घर पे जीतने की परंपरा को रखेंगे बरकरार। फिलहाल वक्त हमारे शो का

0: में आप सभी का स्वागत। 32 मैचों के बाद आखिरकार फाइनल की बारी और शुरुआत बिल्कुल परफेक्टली हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए, जब एमी जोन्स एक बार फिर से सस्ते में निपट गई और फिर बेथ मूनी ने एक कमाल का कैच पकड़ा और डैनी वॉइट हॉज इस टूर्नामेंट की टॉप रन गेटर को आउट किया। नैट सिवरब्रंट और फ्रेया कैंप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उन सबके बीच में कुछ विकेट्स भी जो गिरे, जैसे कि एलिस कैप्सी का वो विकेट रिवर्स स्वीप ट्राई करते हुए, हेदर नाइट ने भी डिसअपॉइंट किया। बट आखिरी चार ओवर में 35 रन और स्कोर 150 रनों का, यानी 151 का लक्ष्य दिया है 6 बार के चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को। इंग्लैंड ने जो अपना 5वां फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन घर पे खेल रहे हैं इसलिए उल्लेखनीय है। रीमा मल्होत्रा का बहुत बहुत स्वागत। नैट सिवरब्रंट ऑलमोस्ट फिक्स डिपॉजिट की तरह, आई नो फ्रेया कैंप की पारी भी थी, बट एक कप्तान का ये करना एक ग्रैंड फिनाले में कितना जरूरी था?
1: बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब वो आई थी तो संकट के बादल जो थे इंग्लैंड पे अच्छे खासे अपना घेराव बना चुके थे। वहां पे अंडर प्रेशर अगेन नैट सिवरब्रंट का वो पॉजिटिव माइंडसेट काम आया। लेकिन इस पारी की सबसे खास बात थी अनंत, उनकी वो शॉट सिलेक्शन, वो प्लेसमेंट, वो स्पिन और तेज गेंदबाजों को कंट्रोल तरीके से खेलना, बिना रिस्क लिए भी आप कैसे रन बना सकते हैं, वो रणनीति इस खिलाड़ी के पास है। और मुझे लगता है कि इनको प्रेशर में परफॉर्म करना पसंद है, क्योंकि अगर ये पारी ना आती ना तो शायद बिखर जाती इंग्लैंड टीम। इस पारी ने उतनी तेजी से नहीं आई, लेकिन वो स्थिरता लेके आई जिसपे कैंप ने अपना रन जमाया।
0: 9वीं बार 50 का आंकड़ा पार किया आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में। अब सूजी बेट्स और बेथ मूनी से भी आगे, अकेले नहीं कर पाती है, फ्रेया कैंप की बहुत जरूरत पड़ी। 70 पे 4th विकेट गिरा था रीमा, और उसके बाद ये साझेदारी। 21 वर्षीय फ्रेया कैंप ने इस बिग स्टेज पे बड़ा नर्वलेस क्रिकेट खेला आज।
1: देखिए, मैं जब भी झूलन से बात करती हूँ ना, वो इनको बहुत हाई रेट करते हैं, क्योंकि बड़े कम ऐसे आपको ऑलराउंडर मिलते हैं, मीडियम पेसर ऑलराउंडर जो इस समय आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आते हैं। लेकिन जो पारी इन्होंने खेली वो ताकत अपनी दिखाई, हाई बैकलिफ्ट है, लॉन्ग हैंडल से खेलती है, रीच इनकी ज्यादा है, और जिस तरीके से उन्होंने वो शॉट्स खेले ये बताता है कि इनको पसंद है मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना, अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना। और अगेन इनकी भी शॉट सिलेक्शन इसलिए बेहतर थी कि जब उनके जोन में आ रही थी तो वो बड़ी शॉट्स खेल रही थी, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन की वजह से ही ये 150 तक पहुंचे।
0: हमने वो आंकड़ा देखा था, 140 से ऊपर का आंकड़ा सिर्फ एक बार चेस किया गया, जब वेस्ट इंडीज ने ऐसा किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में। अब ऑस्ट्रेलिया को ये करना पड़ेगा, लेकिन 150 या उससे ऊपर कभी नहीं हुआ है, यानी इतिहास रचना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन वो कर सकते हैं क्योंकि बेथ मूनी जैसी खिलाड़ी उनके पास मौजूद है। रीमा,
1: 100% ये टीम अलग है, इस टीम की सोच अलग है। इस टीम में आपको सीनियर खिलाड़ी नजर आते हैं, अनुभवी खिलाड़ी नजर आते हैं, साथ में फ्रेश फेसेस भी नजर आते हैं। और जो टीम ने सबसे कम गलतियां की ना, मेरा मानना है वो ऑस्ट्रेलिया है। बेथ मूनी की हम बात करेंगे, उनको नॉकआउट मुकाबले पसंद है, इसीलिए हम बेथ मूनी का नाम ले रहे हैं। बिग मैच प्लेयर है, जो आज तक नहीं हुआ वो कर सकते हैं, कि आप बेस्ट औसत कब है इनकी इसी उसमें वर्ल्ड कप में नॉकआउट मुकाबले में, सबसे ज्यादा 50 इनके नॉकआउट मुकाबले में है। और आज फाइनल्स है, फाइनल्स में इनको कुछ नहीं करना, अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, इनकी नेचुरल गेम है, थोड़ा समय लेती है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलती हैं, दबाव को एब्जॉर्ब करती हैं, और नई गेंद को खेलने की कला है, पेसर और स्पिन को दोनों को बेहतरीन तरीके से जब आप खेलते हैं तभी आप इतने लंबे समय तक नॉकआउट मैच में परफॉर्म कर सकते हैं।
0: इंटरेस्टिंग है ना, 166 का एवरेज है इनका वर्ल्ड कप फाइनल्स में, 2 बार 50 का आंकड़ा पार किया है। एंड ऑफ कोर्स वो नाबाद पारी खेली थी सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहां से ऐसा लगा कि फॉर्म जो है पूरी तरीके से उनके साथ है, प्लस क्लास है, क्योंकि एश गार्डनर और एलिस पेरी ऑलरेडी अंडर प्रेशर दो कमाल की नॉक्स खेल चुकी है। एलिस पेरी की जो इंजरी का जो थोड़ा सा क्लाउड था वो भी हट गया, क्योंकि इस मैच में खेल रही है।
1: और आज आप सब कुछ भूलना चाहेंगे, अगर आपको निगल्स भी है वो भी आप भूलना चाहेंगे, क्योंकि पेरी को भी प्रेशर में परफॉर्म करना पसंद है। और जब इतने सारे वर्ल्ड कप खेल के आते हैं तो ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, बट नई चुनौती होगी। इंग्लैंड में कभी ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है, तो आज पेरी की भी उतनी ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगेन क्रिकेटिंग शॉट्स खेलती है, प्रेशर में परफॉर्म करना जानती है, और क्लास है, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इनको इसलिए कहा जाता है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में आता है पेरी सामने आके अपने आप खड़ी हो जाती है, उनके बल्ले से रन आते हैं। एक एलिगेंट प्लेयर है, एक क्लास प्लेयर है, और नई बॉल को खेलना जानती है। ये मेक श्योर करती है कि तीसरे नंबर पे आके कि बैक टू बैक विकेट्स ना गिरे, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करती है पेरी की। आज ऑस्ट्रेलिया को जरूरत पड़ने वाली है, अगर लॉर्ड्स के उस बालकनी में ऑस्ट्रेलियन वो जीत के साथ जाना चाहती है।
0: लुक एट दैट एवरेज, इस विश्व कप में 2 शतक ऑलरेडी लगा चुकी है, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीत चुकी है। गेंदबाजी नहीं की कोई फर्क पड़ता नहीं, बट ओपन करने आएंगी बेथ मूनी के साथ जॉर्जिया वॉल, और सामने होंगी लॉरेन बेल, जिनके आंकड़े अच्छे हैं वॉल के खिलाफ।
1: वही एक चैलेंज रहेगा, अगर वो चैलेंज खेल लिया जॉर्जिया वॉल ने तब मजा आएगा, क्योंकि ये एक मैचअप है। अगर आप 2 बार आउट हो जाते तो कई बार आप सोचते हैं कि मैं संभल के खेलूं या अटैक करूं, उसके बीच में कौन फायदा उठाएगा, निगाहें उस पर रहेंगी। लेकिन लॉरेन बेल के पास इस समय लय है, शुरुआत में आपको बाउंसर से भी वो टेस्ट करेगी। 28 विकेट 20 इनिंग में लेना ये कोई आम खिलाड़ी नहीं कर सकता, ये खास खिलाड़ी कर सकता है, इसलिए लॉरेन बेल के वो 4 ओवर बहुत रहेंगे बेशकीमती।
0: इंग्लैंड का दूसरा टाइटल या ऑस्ट्रेलिया का 7वां वो T20 खिताब?
1: आज पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि ये कलर येलो है।
0: येलो है, ओके येलो है। 151 का लक्ष्य दिया है ऑस्ट्रेलिया को, जो कि सबसे रिकॉर्ड रन चेस होगा। क्या

0: जीतेगी ऑस्ट्रेलिया या रोकेगी इंग्लैंड?
1: तैयार हो रही है मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। जॉर्जिया बॉल, 18 मुकाबला, 595 रन इनके नाम है, 152 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बल्लेबाजी करती है। एक शतक, 3 अर्धशतक इनके नाम है, काफी कमाल के खिलाड़ी हैं। अगर ये मैदान पर टिक गए तो फिर 15 ओवर के अंदर मैच को खत्म करने का ये जज्बा रखती है सातों जॉर्जिया बॉल। इनके साथ में बैट मोनी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। विकेट कीपिंग भी आज काफी बढ़िया इन्होंने किया, 124 मैच, 3719 रन इनके नाम है, 126 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करेगी, 40 की एवरेज, 2 शतक, 30 अर्धशतक इनके नाम है। नंबर 3 पर सातों पोविल स्फील्ड मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाली हैं। 36 मैच, 632 रन इनके नाम, 139 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करती हैं। कमाल के खिलाड़ी ये भी हैं, लेकिन यहाँ से क्या कुछ करेंगी वो देखना दिलचस्प रहेगा। नंबर 4 पर सातों एलिसा पेरी आएंगी, और एलिसा पेरी की बात की जाए तो इनकी जितने भी तारीफें की जाए वो कम होगी, क्योंकि भारत के खिलाफ इन्होंने जो पारी खेला था और इस साल वर्ल्ड कप में भी काफ़ी बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और बस एक कदम दूर है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनने के लिए, वो भी इंग्लैंड के सरजमी पर जाकर है। एलिसा पेरी 180 मैच खेल चुकी हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है, 35 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं, 2482 रन इनके नाम है, 30 की एवरेज, 118 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करती है, तो कहीं ना कहीं आज बढ़िया खेल दिखाती हुई नजर आएगी। बाकी इनके बाद नंबर 7 और 5 पर इसलिए गार्डनर आ जाएंगी, आज गेंदबाजी में भी बढ़िया काम किया था, भले ही विकेट नहीं मिला लेकिन बल्लेबाजी में इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज बल्लेबाजी में ये दम दिखाएंगी। इसके बाद नंबर 6 पर जॉर्जिया बरहम आ जाएंगी बल्लेबाजी करने के लिए, और इनके अलावा नंबर 7 पर अनाबेल सदरलैंड है, नंबर 8 पर सातों निकोला केरी है, और नंबर 9 पर सातों सोफी मोलिनुक्स है। तो बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की टीम का तगड़ा नजर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में ज्यादा आगे नजर आ रही है, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम 180-190 रन अगर कर पाती तो फिर कहीं ना कहीं एक बढ़िया स्कोर रहता। हालांकि इंग्लैंड के पास गेंदबाजी है, लॉरेन बेल है जो कि काफी कमाल के गेंदबाज है, आईपीएल में आरसीबी की तरफ से ये खेलती है, रिकॉर्ड इनका काफी बढ़िया है, 47 मैचों में 66 विकेट, पहले ओवर की बॉलिंग करेंगी। इनके साथ में सातों सोफिया एकर स्टोन है, 112 मैचों में 153 विकेट, लेंसी स्मिथ स्पिनर्स गेंदबाज है बाएं हाथ के, और इनके अलावा सातों चार्लोटे डीन है जो कि गेंदबाजी करती हुई नजर आएंगी, और इनके अलावा सातों कप्तान नेट स्कीवर ब्रंट भी हैं, डेनियल गिब्सन भी हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी तो है इंग्लैंड की टीम के पास है। लेकिन अब इंग्लैंड की टीम यहां से ऑस्ट्रेलिया को रोक पाती है या फिर नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल सातों, जब तक मुकाबले का आगाज हो रहा है, एक बार दोबारा से आप सभी को मैच समेरी की तरफ लेकर चलते हैं। फिलहाल सभी साथी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने कुर्सी की पैटियों को बांध कर बैठ जाइएगा। तो अब यहां से इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज होगा, क्योंकि जब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज हो रहा है, एक बार मैच समेरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये फाइनल मुकाबला है सातों दोनों टीमों के बीच में खेला जा रहा है इस वक्त। देखा जाए तो आज इंग्लैंड की तरफ से स्कीवर ब्रंट ने जरूर 10 शतक लगाए, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट काफी कम रहा। फ्रैंक कैंप ने बढ़िया बल्लेबाजी करी और एलिसे कैप्ची ने 23 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी कमाल का रहा। आज शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दबाव डालकर रखा है इंग्लैंड की टीम को, और फिलहाल अब यहां से साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी का आगाज होने को जा रहा है, क्योंकि T20 क्रिकेट में ज़्यादा वक्त दिया नहीं जाता है टाइम आउट का, और ऐसे में साथों इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन स्कोर बोर्ड पर बना दिए हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम को चैंपियन बनने के लिए, ये ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए इस मुकाबले के अंदर 151 रन बनाने हैं 120 गेंदों पर है। 120 गेंद पर 151 रन बनाना है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर चैंपियन बनना है तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज जॉर्जिया बॉल के साथ बैट मोनी इस वक्त तैयार हो रही है मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। जॉर्जिया बॉल, 18 मुकाबला, 595 रन इनके नाम है, 152 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बल्लेबाजी करती है। 1 शतक, 3 अर्धशतक इनके नाम है, काफी कमाल के खिलाड़ी हैं। अगर ये मैदान पर टिक गए तो फिर 15 ओवर के अंदर मैच को खत्म करने का ये जज्बा रखती है सातों जॉर्जिया बॉल। इनके साथ में बैट मोनी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। विकेट कीपिंग भी आज काफी बढ़िया इन्होंने किया, 124 मैच 3719 रन इनके नाम है, 126 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करेगी, 40 की एवरेज, 2 शतक 30 अर्धशतक इनके नाम है। नंबर 3 पर सातो पोविल स्फील्ड मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाली हैं। 36 मैच 632 रन इनके नाम, 139 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करती हैं। कमाल के खिलाड़ी ये भी हैं, लेकिन यहाँ से क्या कुछ करेंगी वो देखना दिलचस्प रहेगा। नंबर 4 पर सातो एलिसा पेरी आएंगी, और एलिसा पेरी की बात की जाए तो इनकी जितने भी तारीफें की जाए वो कम होगी, क्योंकि भारत के खिलाफ इन्होंने जो पारी खेला था और इस साल वर्ल्ड कप में भी काफी बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और बस एक कदम दूर है यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनने के लिए, वो भी इंग्लैंड के सरजमी पर जाकर है। एलिसा पेरी 180 मैच खेल चुकी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, 35 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं, 2482 रन इनके नाम है, 30 की एवरेज, 118 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करती है, तो कहीं ना कहीं आज बढ़िया खेल दिखाती हुई नजर आएगी। बाकी इनके बाद नंबर 7-5 पर इसलिए गार्डनर आ जाएंगी, आज गेंदबाजी में भी बढ़िया काम किया था, भले ही विकेट नहीं मिला लेकिन बल्लेबाजी में इनका रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज बल्लेबाजी में ये दम दिखाएंगी। इसके बाद नंबर 6 पर जॉर्जिया बरहम आ जाएंगी बल्लेबाजी करने के लिए, और इनके अलावा नंबर 7 पर अनाबेल सदरलैंड है, नंबर 8 पर सातो निकोला केरी है, और नंबर 9 पर सातो सोफी मोलिनोक्स है, तो बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की टीम का तगड़ा नजर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में ज्यादा आगे नजर आ रही है, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम 180-190 रन अगर कर पाती तो फिर कहीं ना कहीं एक बढ़िया स्कोर रहता। हालांकि इंग्लैंड के पास गेंदबाजी है, लॉरेन बेल है जो कि काफी कमाल के गेंदबाज है, आईपीएल में आरसीबी की तरफ से ये खेलती है, रिकॉर्ड इनका काफी बढ़िया है, 47 मैचों में 66 विकेट, पहले ओवर की बॉलिंग करेंगी। इनके साथ में सातो सोफिया एकर स्टोन है, 112 मैचों में 153 विकेट, लेंसी स्मिथ स्पिनर्स गेंदबाज है बाएं हाथ के, और इनके अलावा सातो चार्लोटे डीन है जो कि गेंदबाजी करती हुई नजर आएंगी, और इनके अलावा सातो कप्तान नेट स्कीवर ब्रंट भी हैं, डेनियल गिब्सन भी हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी तो है इंग्लैंड की टीम के पास, लेकिन अब इंग्लैंड की टीम यहां से ऑस्ट्रेलिया को रोक पाती है या फिर नहीं देखना दिलचस्प रहेगा। तो अब यहां से इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज होगा, क्योंकि जब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज हो रहा है एक बार मैच समेरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये फाइनल मुकाबला है सातो दोनों टीमों के बीच में खेला जा रहा है इस वक्त, देखा जाए तो आज इंग्लैंड की तरफ से स्कीवर ब्रंट ने जरूर अर्धशतक लगाए लेकिन इनका स्ट्राइक रेट काफी कम रहा, फ्रैक कैंप ने बढ़िया बल्लेबाजी करी और एलिसे कैप्ची ने 23 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी कमाल का रहा, आज शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दबाव डालकर रखा है इंग्लैंड की टीम को, और फिलहाल अब यहां से साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी का आगाज होने को जा रहा है, क्योंकि T20 क्रिकेट में ज्यादा वक्त दिया नहीं जाता है टाइम आउट का, और ऐसे में साथ इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन स्कोर बोर्ड पर बना दिए हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम को चैंपियन बनने के लिए, ये ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए इस मुकाबले के अंदर 151 रन बनाने हैं 120 गेंदों पर, 120 गेंद पर 151 रन बनाना है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर चैंपियन बनना है तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज जॉर्जिया बॉल के साथ बैट मुनी इस वक्त तैयार हो रही है मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। जॉर्जिया बॉल 18 मुकाबला 595 रन इनके नाम है, 152 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बल्लेबाजी करती है, 1 शतक 3 अर्धशतक इनके नाम है, काफी कमाल के खिलाड़ी हैं, अगर ये मैदान पर टिक गए तो फिर 15 ओवर के अंदर मैच को खत्म करने का ये जज्बा रखती है सातो जॉर्जिया बॉल। इनके साथ में बैट मुनी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, विकेट कीपिंग भी आज काफी बढ़िया इन्होंने किया, 124 मैच 3719 रन इनके नाम, 126 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करेगी, 40 की एवरेज, 2 शतक 30 अर्धशतक इनके नाम है। नंबर 3 पर सातो पोविल स्फील्ड मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाली हैं, 36 मैच 632 रन इनके नाम, 139 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करती हैं, कमाल के खिलाड़ी ये भी हैं, लेकिन यहां से क्या कुछ करेंगी वो देखना दिलचस्प रहेगा। नंबर 4 पर सातो एलिसा पेरी आएंगी, और एलिसा पेरी की बात की जाए तो इनकी जितने भी तारीफें की जाए वो कम होगी, क्योंकि भारत के खिलाफ इन्होंने जो पारी खेला था और इस साल वर्ल्ड कप में भी काफी बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और बस एक कदम दूर है यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनने के लिए, वो भी इंग्लैंड के सरजमी पर जाकर है। एलिसा पेरी 180 मैच खेल चुकी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, 35 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं, 2482 रन इनके नाम है, 30 की एवरेज, 118 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करती है, तो कहीं ना कहीं आज बढ़िया खेल दिखाती हुई नजर आएगी। बाकी इनके बाद नंबर सातों पांच पर, इसलिए गार्डनर आ जाएंगी। आज गेंदबाजी में भी बढ़िया काम किया था, भले ही विकेट नहीं मिला लेकिन बल्लेबाजी में इनका रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज बल्लेबाजी में ये दम दिखाएंगी। इसके बाद नंबर छह पर है जॉर्जिया बरहम आ जाएंगी बल्लेबाजी करने के लिए, और इनके अलावा नंबर सात पर अनाबेल सदरलैंड है, नंबर आठ पर सातों निकोला केरी है, और नंबर नौ पर सातों सोफी मॉलिनोक्स है। तो बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की टीम का तगड़ा नजर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में ज्यादा आगे नजर आ रही है, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम 180-190 रन अगर कर पाती तो फिर कहीं ना कहीं एक बढ़िया स्कोर रहता। हालांकि इंग्लैंड के पास गेंदबाजी है, लॉरेन बेल है जो कि काफी कमाल के गेंदबाज है, आईपीएल में आरसीबी की तरफ से ये खेलती है, रिकॉर्ड इनका काफी बढ़िया है, 47 मैचों में 66 विकेट, पहले ओवर की बॉलिंग करेंगी। इनके साथ में सातों सोफिया एकर स्टोन है, 112 मैचों में 153 विकेट, लेंसी स्मिथ स्पिनर्स गेंदबाज है बाएं हाथ के, और इनके अलावा सातों चार्लोटे डीन है जो कि गेंदबाजी करती हुई नजर आएंगी, और इनके अलावा सातों कप्तान नेट स्कीवर ब्रंट भी हैं, डेनियल गिब्सन भी हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी तो है इंग्लैंड की टीम के पास है। लेकिन अब इंग्लैंड की टीम यहां से ऑस्ट्रेलिया को रोक पाती है या फिर नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। तो अब यहां से इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज होगा, क्योंकि जब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज हो रहा है, एक बार मैच समेरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये फाइनल मुकाबला है सातों दोनों टीमों के बीच में खेला जा रहा है इस वक्त। देखा जाए तो आज इंग्लैंड की तरफ से स्कीवर ब्रंट ने जरूर अर्धशतक लगाया, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट काफी कम रहा। फ्रैंक कैंप ने बढ़िया बल्लेबाजी करी और एलिसे कैप्ची ने 23 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी कमाल का रहा। आज शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दबाव डालकर रखा है इंग्लैंड की टीम को, और फिलहाल अब यहां से साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी का आगाज होने को जा रहा है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में ज्यादा वक्त दिया नहीं जाता है टाइम आउट का, और ऐसे में साथ इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन स्कोर बोर्ड पर बना दिए हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम को चैंपियन बनने के लिए, ये ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए इस मुकाबले के अंदर 151 रन बनाने हैं 120 गेंदों पर, 120 गेंद पर 151 रन बनाना है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर चैंपियन बनना है तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज जॉर्जिया बॉल के साथ बैट मुनी इस वक्त तैयार हो रही है मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। जॉर्जिया बॉल 18 मुकाबला 595 रन इनके नाम है, 152 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बल्लेबाजी करती है, एक शतक 3 अर्धशतक इनके नाम है, काफी कमाल के खिलाड़ी हैं। अगर ये मैदान पर टिक गए तो फिर 15 ओवर के अंदर मैच को खत्म करने का ये जज्बा रखती है सातों जॉर्जिया बॉल। इनके साथ में बैट मुनी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, विकेट कीपिंग भी आज काफी बढ़िया इन्होंने किया, 124 मैच 3719 रन इनके नाम है, 126 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करेगी, 40 की एवरेज, 2 शतक 30 अर्धशतक इनके नाम है। नंबर तीन पर सातों पोविल स्फील्डर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाली हैं, 36 मैच 632 रन इनके नाम है, 139 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करती हैं, कमाल के खिलाड़ी ये भी हैं, लेकिन यहां से क्या कुछ करेंगी वो देखना दिलचस्प रहेगा। नंबर चार पर सातों एलिसा पेरी आएंगी, और एलिसा पेरी की बात की जाए तो इनकी जितने भी तारीफें की जाए वो कम होगी, क्योंकि भारत के खिलाफ इन्होंने जो पारी खेला था और इस साल वर्ल्ड कप में भी काफी बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और एक कदम दूर है यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनने के लिए, वो भी इंग्लैंड के सरजमी पर जाकर है। एलिसा पेरी 180 मैच खेल चुकी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, 35 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं, 2482 रन इनके नाम है, 30 की एवरेज, 118 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करती है, तो कहीं ना कहीं आज बढ़िया खेल दिखाती हुई नजर आएगी। बाकी इनके बाद नंबर सातों पांच पर इसलिए गार्डनर आ जाएंगी। आज गेंदबाजी में भी बढ़िया काम किया था, भले ही विकेट नहीं मिला लेकिन बल्लेबाजी में इनका रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज बल्लेबाजी में ये दम दिखाएंगी। इसके बाद नंबर छह पर है जॉर्जिया बरहम आ जाएंगी बल्लेबाजी करने के लिए, और इनके अलावा नंबर सात पर अनाबेल सदरलैंड है, नंबर आठ पर सातों निकोला केरी है, और नंबर नौ पर सातों सोफी मॉलिनोक्स है। तो बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की टीम का तगड़ा नजर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में ज्यादा आगे नजर आ रही है, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम 180-190 रन अगर कर पाती तो फिर कहीं ना कहीं एक बढ़िया स्कोर रहता। हालांकि इंग्लैंड के पास गेंदबाजी है, लॉरेन बेल है जो कि काफी कमाल के गेंदबाज है, आईपीएल में आरसीबी की तरफ से ये खेलती है, रिकॉर्ड इनका काफी बढ़िया है, 47 मैचों में 66 विकेट, पहले ओवर की बॉलिंग करेंगी। इनके साथ में सातों सोफिया एकर स्टोन है, 112 मैचों में 153 विकेट, लेंसी स्मिथ स्पिनर्स गेंदबाज है बाएं हाथ के, और इनके अलावा सातों चार्लोटे डीन है जो कि गेंदबाजी करती हुई नजर आएंगी, और इनके अलावा सातों कप्तान नेट स्कीवर ब्रंट भी हैं, डेनियल गिब्सन भी हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी तो है इंग्लैंड की टीम के पास, लेकिन अब इंग्लैंड की टीम यहां से ऑस्ट्रेलिया को रोक पाती है या फिर नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। तो अब यहां से इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज होगा, क्योंकि जब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी का आगाज हो रहा है, एक बार मैच समेरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये फाइनल मुकाबला है सातों दोनों टीमों के बीच में खेला जा रहा है इस वक्त। देखा जाए तो आज इंग्लैंड की तरफ से स्कीवर ब्रंट ने जरूर अर्धशतक लगाए, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट काफी कम रहा। फ्रेया कैंप ने बढ़िया बल्लेबाजी करी और एलिसे कैप्ची ने 23 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी कमाल का रहा। आज शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दबाव डालकर रखा है इंग्लैंड की टीम। फिलहाल सातों एक बार फिर से आप सभी तमाम सातों का बहुत स्वागत है सेकेंड इनिंग में, जहां पर जॉर्जिया बॉल के साथ इस वक्त बैट मुनी मैदान के अंदर प्रवेश कर चुकी है बल्लेबाजी करने के लिए। प्लेयर का एंट्री हो चुका है इस वक्त मैदान के अंदर। बैट मुनी के साथ जॉर्जिया बॉल आ चुकी है। ओवर की पहली बॉल के साथ चार तैयार, चोलेटेड रन की है पहली गेंद, और पहली गेंद को उड़ा दिया है जॉर्जिया बॉल ने। बॉल निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। चौके के साथ आगाज कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस पारी का, और पहली गेंद पर जड़ दिया है चौका। इसी चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ चार रन बिना कोई विकेटों के नुकसान पर, पहली गेंद पर चौके के साथ खाता खोलते हुए। फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पर बड़ा विकेट हासिल कर लिया है। अपील जोरदार, LBW आउट, अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी है। दूसरी गेंद थी, कट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बॉल सीधा टप्पा खाने के बाद पैड पर लगा है, और ऐसे में साथियों अंपायर्स ने अपनी उंगली खड़ी कर दी है और चलता कर दिया है। जरूर यहाँ पर रिव्यू का मांग करेंगे जॉर्जिया बॉल। तो देखने वाली बात रहेगी कि बल्ले का किनारा लिया है क्या। अगर बल्ले का किनारा नहीं लिया होगा तो फिर ऐसे में विकेट मिल सकता है। अब सातों यहाँ पर थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। चार लोटेड एन पहले ही ओवर में सातों स्पिनर्स गेंदबाज के साथ बॉलिंग करने के लिए मैदान पर आई। करेंट रन रेट 12 का चल रहा है, रिक्वायर रन रेट 7.47 का, और क्योंकि 8 रन प्रति ओवर लगभग चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंद और बल्ले में कोई कनेक्शन नहीं है ऐसा लग रहा है। गेंद का टप्पा कहाँ है, पिचिंग इन लाइन रहना चाहिए। अगर पिचिंग इन लाइन रहेगा तो फिर यहाँ पर बल्लेबाज नॉट आउट रहेंगे। और जी हाँ, यहाँ पर पिचिंग मिसिंग लेग है, तो ऐसे में सातों नॉट आउट रहेंगी बल्लेबाज। बढ़िया रिव्यू का मांग किया जॉर्जिया बॉल ने, पिचिंग लेग साइड में है और इस वजह से जॉर्जिया बॉल बच जाएंगे। रिव्यू ने बचा लिया है ऑस्ट्रेलिया के जॉर्जिया बॉल को। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खेमे इसमें इस वक्त खुशी देखने को मिलता हुआ। चार लोटे डेन इस ओवर की तीसरी गेंद, और इस गेंद को हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की दिशा में, और आसानी के साथ भागकर इस गेंद पर सिंगल पूरा कर लिया जाएगा। और ऐसे में इसी सिंगल के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना कोई विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। पारी का यह पहला ओवर चल रहा है।
2: थोड़ी बॉल अंदर आई, इनसाइड एज, थिक इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स, और वेलकम ब्रेक यहां पे इंग्लैंड को मिला है। लॉरेन बेल फिर से अमंग विकेट्स, गुड कमबैक इस ओवर में। जॉर्जिया बॉल का विकेट गिरा है, बनाए 9/17/1।
3: Train me to become a professional hairstylist.
1: बैट मुनी दाहिने हाथ के ये बल्लेबाज हैं, बढ़िया बल्लेबाजी करती हैं, और इनका भी स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया है। 124 मुकाबले में 3,719 रन इनके नाम है। 126 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग करती हैं। 40 का एवरेज, 2 शतक, 30 अर्धशतक इनके नाम है। तो अनुभव की कोई कमी नहीं है, 4,000 के लगभग रन बनाने के करीब पहुंच चुकी है। फिलहाल चालोटेड इन स्पिनर्स गेंदबाज बैट मुनी के लिए इस ओवर के चौथी बॉल के साथ तैयार हो रही हैं। बैट मुनी भी बढ़िया खिलाड़ी है। एक और बढ़िया गेंद अंदर आते हुए, और इस गेंद पर रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट बॉल आता हुआ, डॉट बॉल के साथ आगाज इस ओवर का बैट मुनी के सामने। ये चौथा गेंद था बैट मुनी के लिए, पहला गेंद था, और पहला ही बॉल डॉट बॉल बैट मुनी के लिए। 116 में अब चलिए चाहिए 146 ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए, ये फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए। फिलहाल इस वक्त
2: पहले ही गेंद पर स्टेप आउट करके स्ट्रेट ड्राइव, इस तरह के शॉट्स लिचफील्ड को अलग बनाते हैं। 2 समाप्त, 21 पर 1।

0: लिंजे स्मिथ एक स्पेशलिस्ट पावर प्ले में गेंदबाज, ये तीसरा ओवर डालने के लिए अब आई हैं। पहले ओवर में वहां पे ट्राई किया था चार्ली डीन से, पर ये वापस ट्रस्टेड फॉर्मूला।
1: विकेट था, बहुत ही बढ़िया सेटअप करके आउट किया, अंदर लेके आई थी इस बार बॉल को लॉरेन बेल, ऑफ द सीम, थोड़ा सा अंदर आया, यहां पर देखो बैट शरीर से बॉल कितना नजदीक था कट खेलने के लिए, जब शरीर से नजदीक होता है बॉल कट खेलने के लिए हमेशा प्ले डाउन होने का चांसेस रहता है, कहीं ना कहीं शॉट सिलेक्शन वहां पे सही नहीं था।
2: स्कोरिंग एरिया है जॉर्जिया वॉल का, वहां पे बहुत रन बनाती है, बढ़िया गेंद, फील्डर है, ओ ट्राई किया था वहां पे डैनी गिब्सन थी फील्डर, रुकना चाहिए था ये गेंद। लिंसी स्मिथ तीसरी बॉल पे चौका आते हुए, बहुत अच्छा स्लॉग स्वीप मारा था यहाँ पर बेथबूनी ने।
0: इसको कहते हैं कि हमेशा प्रयास पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने का, एक विकेट भले ही गिरा हो पर इस तरह के शॉट्स और भी देखने को मिलेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया की सोच रही है कि T20 मैचेस में वैल्यू बहुत ज्यादा है पावर प्ले का। अब इंग्लैंड ने बनाया सिर्फ 39 इन द पावर प्ले, नॉकआउट में रियल चैंपियन वेस्ट इंडीज के विरुद्ध सेमीफाइनल इनकाउंटर में 61 बनाए थे नाबाद। इन द एयर कैच इट का कॉल, ग्राउंड थोड़ा बड़ा है इस तरफ, और बिग मैच प्लेयर है बेथमूनी, नॉकआउट इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 2023 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वो 74 नाबाद, फिर अगेंस्ट इंडिया 54, फिर 2020 में भी वो 58 बनाए थे, और भाई बहुत ही रिलायबल परफॉर्मर है अपनी टीम के लिए।
1: बिल्कुल, तो फाइनल पे 50 है, दैट मींस बिग मैच प्लेयर तो हो तो है ही, बट आज का मैच का प्रेशर अलग है।
3: Help me get Papa G's yes.
4: ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 रन है। इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ तैयार, लगातार दो डॉट बॉल आता हुआ सातो बैटमोनी के सामने, इस गेंद को कट किया था लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद है और ऐसे
5: मैच का
6: के खिलाफ, और अब एक बार फिर से लॉरेन बेल का ही सामना करेंगे। पहली गेंद खेली स्केले के इलाके पर, सिंगल आसानी से जुड़ा लिया है फेबिलिच फील्ड ने और स्ट्राइक दी उन्होंने बैट मूनी को, पहली गेंद पर सिंगल आ चुके हैं लॉरेन बेल के इस ओवर में भी। पिछला ओवर उनका थोड़ा महंगा साबित हुआ था, 11 रन आए थे उस ओवर से। ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार, एक बार फिर से लॉरेन बेल सामना करेंगे इस बार बैथमुनी जो 11 गेंदों में 9 पर खेल रही है। ओवर की ये दूसरी गेंद, इस बार बैथमुनी ने मिड ऑफ के इलाके पर शॉट लगाया और मिड ऑफ की फील्डर को बीट करके बाउंड्री बटोर ली है, ये दूसरा चौका जड़ दिए बैथमुनी ने अपनी आज की इस इनिंग का, 12 गेंदों में 13 पर पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया तेजी से इस टारगेट को चेस करने की तरफ बढ़ती हुई, 34 रन पर पहुंच भी चुकी है ऑस्ट्रेलियन टीम, एक विकेट गवा कर और 7वां T20 वर्ल्ड कप जीतेगी अगर ये ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई, 6 वर्ल्ड कप ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनकी मेंस टीम भी तगड़ी रहती है और वुमेन्स की भी टीम बहुत ही तगड़ी है, बिना कोई मैच हारे यहाँ तक पहुंची है दोनों ही टीमें, इसलिए जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद थी। फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन किया, पहले उन्होंने गेंदबाजी करते हुए ज्यादा रन बनाने नहीं दिए यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को, सिर्फ 150 पर ही रोक दिया है उन्होंने, लेकिन अब जब बैटिंग करने के लिए आई है तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ तेज गति से रन बटोरते हुए 10.20 का करंट रन रेट चलता हुआ, बैथमूनी ने एक चौका जड़ा इस ओवर की शुरुआत में, 4 गेंदे अभी भी बाकी, पहली 2 गेंदों पर 5 रन आ चुके हैं, ओवर की तीसरी गेंद लेकर चली, इस बार अच्छी गेंद लॉरेन बेल की सीधा पैड्स पर लगी है गेंद, लेकिन लेग स्टंप को मिस करके जा रही थी इसलिए कोई अपील देखने को नहीं मिली इंग्लैंड की किसी भी खिलाड़ी की तरफ से। डॉट डिलीवरी के साथ वापसी की लॉरेन बेल ने 34 पर। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया एक विकेट के नुकसान पर और 10 गेंदों में 17 रनों की यह पार्टनरशिप हुई है। 99 गेंदों में 117 रन चाहिए, लगभग 100 गेंदों में 117 रन चाहिए तो आसानी से ये मैच अपने नाम कर सकती है ऑस्ट्रेलिया। इस बार उठाकर मारा है बैट मूनी ने, देखना होगा यहाँ पर बाउंड्री लाइन को क्लियर कर पाएंगे नहीं। जी हाँ, चौका निकल गया है, ये गेंद चौके के पार चली गई है। दूसरा चौका जड़ दिए बैट मूनी ने लॉरेन बेल के खिलाफ। इस बार तो पीछे हटकर अपने लिए रूम बनाया था और लॉन्ग ऑन के इलाके पर यह बाउंड्री बट हो रही है। मिडान की फील्डर को आसानी से बीट किया, उसके ऊपर से ये गेंद को खिलाता, इस शॉट को खिलाता और 38 पर पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया। दूसरा चौका इस ओवर का बैट मूनी के बल्ले से। लॉरेन बेल आज थोड़ी महंगी साबित हो रही हैं। पहले ओवर में तो उन्होंने विकेट छटका कर वापसी की थी, क्या एक बार फिर से विकेट छटका पाएंगे या नहीं। इस बार पीछे हटकर पॉइंट के इलाके पर शॉट लगाया और सिंगल आसानी से बटोर कर स्ट्राइक रोटेट की है बैट मूनी ने। 15 गेंदों में 18 पर पहुंची मूनी और वही फेबिलिज फील्ड 3 गेंदों में 6 पर, एक चौका जड़कर 39 पर पहुँच चुकी ऑस्ट्रेलिया बड़ी तेज़ी से। चौथा ओवर अभी ख़त्म हुआ नहीं है और 40 के करीब जा चुकी ऑस्ट्रेलियन टीम। 10 के ऊपर का करंट रन रेट चलता हुआ, आखिरी गेंद बाकी अब लॉरेन बेल के दूसरे ओवर की और ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी। वाइड गेंद ऊपर से, सिंगल भी भाग लिया है और लगता है यहाँ पर डबल भी भाग जाएंगी। वाइड गेंद का तो इशारा कर दिया अंपायर ने, देखना होगा सिंगल बागी है या फिर दो रन चुराए हैं। वाइड प्लस सिंगल, चलिए सिंगल ही चुराया, दो रन मुफ्त के मिल चुके हैं फिर भी ऑस्ट्रेलिया को। 41 पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, अब आखिरी गेंद दोबारा करनी पड़ेगी लॉरेन बेल को। 23 रन आ चुके हैं उनके स्पेल में अभी तक का और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद अभी भी बाकी है और इस गेंद को भी गैप पे धकेल कर बैट मूनी ने ओवर का अंत भी चौके के साथ कर दिया है। काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ ये लॉरेन बेल का इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इसमें 16 रन बटोली ऑस्ट्रेलिया ने। 4 ओवर के बाद ही 45 पर पहुंच चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम। जीत के लिए 96 गेंदों में 106 रन चाहिए, इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर सकती ऑस्ट्रेलिया की टीम। और इंग्लैंड को अगर मैच जीतना है तो फिर विकेट चटकानी पड़ेगी, वरना ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर पूरे ओवर खेल जाएगी तो फिर तो आसानी से जीत जाएगी। और वैसे ऑस्ट्रेलिया को पूरे ओवर खेलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो पहले ही मैच ख़त्म कर देंगे। तो इंग्लैंड को अगर ये मैच, ये फाइनल मुकाबला जीतना है तो यहाँ पर विकेट चटकानी पड़ेगी, उसके बिना काम बनेगा नहीं। 16 रन इस ओवर से आ चुके हैं लॉरेन बेल अपने दो ओवर में, अभी तक उन्होंने 27 रन दे दिए और एक ही विकेट चटकाया उन्होंने और अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुकी है पहला
5: आज के मुकाबले से पहले, क्योंकि उसमें दो नाबाद नॉक्स हैं।
6: ओवर डालने वाली चार्ली डीन, जिन्होंने जॉर्जिया वॉल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की थी और विकेट मिल भी गया था लेकिन डियर्स लेकर बच गई थी जॉर्जिया वॉल पर, अब वो आउट हो चुकी है क्योंकि लॉरेन बेल ने उन्हें बोल्ड कर दिया है अपने पहले ओवर में। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत की है चार्ली डीन ने, लेकिन अगली गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार फेबिलिज फील्ड ने, चौके के साथ यहाँ पर इस ओवर की शुरुआत कर दी है। शुरुआत में इस ओवर के चौका लग चुका है दूसरी गेंद पर और बड़ी तेजी से 50 रन की तरफ बढ़ चुकी ऑस्ट्रेलियन टीम। सिर्फ एक रन चाहिए और 50 रन कंप्लीट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं छोड़ने वाली है, वो इस मौके को नहीं छोड़ने वाली है, 7वां वर्ल्ड कप जीत सकती है आज ऑस्ट्रेलियन टीम। ओवर की तीसरी गेंद देकर चली चार्ली डीन, एक बार फिर से फेबिलिज फील्ड ने शॉर्ट टर्म मैन के इलाके पर गेंद को खेला है लेकिन इस गेंद पर कोई रन ना मिलेगा नहीं। डॉट डिलीवरी पहली 3 गेंदों पर 2 डॉट डिलीवरी हुई है और एक चौका लगा है, देखते हैं चार्ली डीन विकेट चुटका कर वापसी कर पाएंगे या नहीं। 3 गेंदें अभी भी बाकी चार्ली डीन के इस ओवर की और इस बार फिर से स्टेप आउट करके फेबिलिज फील्ड ने गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार, देखना होगा ये 4 है या 6, ये तो छक्का ही लग रहा है। ओवर कवर्स ये शॉट लगाया और पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थी, अगर होती भी तो यहाँ पर ऐसा गेंद को रोक नहीं पाती। अच्छा शॉट ये, 6 रन जड़ दिए फेबी लिचफील्ड ने, और जैसे ही वो बैटिंग करने के लिए आई थी तभी मैं आपको बता रहा था और आप लोग भी जानते ही होंगे कि ये ग्लेन मैक्सवेल की तरह बैटिंग करती हैं, आड़े तेजे शॉट्स भी लगाती हैं, और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर स्टेप आउट कर दिया था। तो आक्रामक खिलाड़ी इसी तरह से करते हैं, चाहे पहली गेंद हो वो अपने ही अंदाज में खेलते हैं। लॉरेन बेल को पहली गेंद पर स्टेप आउट करके उन्होंने चौका जड़कर शुरुआत की थी आज अपनी इस इनिंग की, और सात गेंदों में ही 16 पर पहुंच चुकी है, 2 चौके और 1 छक्का जड़कर। ऐसे खिलाड़ी वैसे जल्दी आउट भी हो जाते हैं लेकिन जितनी देर तक पिच पर रहते हैं तेज गति से ही रन बटोरते हैं, इसलिए तो उन्होंने स्टेप आउट करके पिछली गेंद पर ओवर कवर्स बेहतरीन छक्का जड़ दिया था 40 रन के खिलाफ। 55 पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों आप लोग लाइक और वोट जरूर करते चलिए, हम लोग 100 लाइक की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्द से जल्द लाइक का बटन दबाते चलिए, देखते हैं हम अगले ओवर की शुरुआत होने तक 100 लाइक तक पहुँच पाएंगे, नहीं सिर्फ 13 लाइक और चाहिए, जल्द से जल्द लाइक और वोट जरूर करते चलिए। इस बीच सामने की तरफ शॉट लगाया तो चलिए छक्के के बाद 2 डॉट डिलीवरी के साथ चार्ली रीड ने अपने इस ओवर को समाप्त किया, 2 ओवर में 16 रन दिए उन्होंने, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 पर पहुंच चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम, 1 विकेट गवाया उन्होंने बस पहले 5 ओवर्स में। और अब पावर प्ले का आखिरी ओवर है, इसका भी पूरा फायदा उठाना चाहेगी ऑस्ट्रेलियन टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे ही करती है, टॉस जीत कर गेंदबाजी चुनती है और फिर ऑपोजिशन टीम को ज़्यादा रन बनाने नहीं देती, आधा मैच तो वहीं पर जीत लेती है फर्स्ट इनिंग में ही गेंदबाजी करते हुए, इंग्लैंड को सिर्फ 150 रन पर रोका, और उसके बाद पावर प्ले में तेज गति से जितने रन बटोर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश करती हैं ताकि चेज करते हुए भी आसानी हो, और यही किया आज भी ऑस्ट्रेलिया ने, पहले इंग्लैंड को 150 पर रोका और उसके बाद पावर प्ले में 1 विकेट जरूर गवाया लेकिन अच्छे रन रेट के साथ चल रही है, 11 के रन रेट के साथ 55 रन न बना दिए, और अभी भी पावर प्ले का आखिरी ओवर बाकी है, सिंगल के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की। बैथ मूनी ने यहाँ पर पहली गेंद पर सिंगल चुराकर फेबी लिचफील्ड को फिर से दे दिया स्ट्राइक, जो 9 गेंदों में 16 पर खेल रही है, ऑलरेडी 2 चौके और 1 छक्का लगा चुकी हैं। लिंस स्मिथ अपना दूसरा ओवर लेकर आई है, पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दिए थे, ओवर की दूसरी गेंद लेकर चली स्पिनर लिंस स्मिथ, और इस बार रिवर्स स्वीप है शॉट लगाने की कोशिश, गेंद सीधा लगी है पैड्स पर, अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है, 2 रिव्यू बचे हैं पर इंग्लैंड के पास और 2 रिव्यू बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, 56 पर 1, लेकिन नेक्स्ट ओवर ब्रेंट यहां पर डीआरएस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चली, इस बार फिर से फेबी लिचफील्ड ने पॉइंट के इलाके पर शॉट लगाया लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन न मिलेगा नहीं, तो 2 डॉट डिलीवरीज। और थैंक यू सो मच आप सभी भाई लोगों का जिनके लाइक्स की वजह से हमारे 100 लाइक कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच आप सभी भाइयों के प्यार और सपोर्ट का, एक बार फिर से लाइक और वोट जरूर करते चलिए आप सभी भाई लोग, 300 लोगों ने वोट कर दिए हैं और ज़्यादातर भाई लोगों का मानना कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये टारगेट चेज कर लेगी, ये जो 151 रनों का टारगेट इंग्लैंड ने दिया ऑस्ट्रेलिया को उसे आसानी से चेज कर लेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, 75% लोगों का मानना, और वहीं 25% भाई लोगों ने ये भी वोट किया है कि नहीं कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया ये चेज, शुरुआत अच्छी कर ली ऑस्ट्रेलिया ने। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को उठाकर मारे और एक और चौका जड़ती हुई बैथ मूनी रुक नहीं रही है, वो बाउंड्रीज जड़ती जा रही है, 5वां चौका जड़ दिया उन्होंने और 27 पर पहुंच चुकी है, मात्र 18 गेंदों में 27 पर पहुंच चुकी है बैथ मूनी, और 60 रन पार कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। लग तो रहा है अभी तक जितना भी खेल हुआ है इस फाइनल मैच का उसे देखकर लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही चैंपियन बनने वाली एक बार फिर से, 85 गेंदों में 90 रन चाहिए और इंग्लैंड को चाहिए विकेट यहाँ पर मैच जीतने के लिए, और विकेट आसानी से ऑस्ट्रेलिया की टीम देगी नहीं। इस बार मैदान के इलाके पर शॉट लगाकर आसानी से सिंगल बटोर लिया बैथ मूनी ने, तो चौका लगाकर सिंगल भी बटोर रही है बैथ मूनी, लेकिन इस बार ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लिया तो अगले ओवर में फिर से स्ट्राइक अपने पास रखेंगी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 62 पर 1 फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, जीत के लिए 84 गेंदों पर 89 रन और चाहिए, मुकाबला यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से अपने नाम कर सकती है। और थैंक यू सो मच आप सभी भाई लोगों का जिन्होंने एक बार फिर से हमारी इस लाइव स्ट्रीम पर बेहतरीन सपोर्ट दिखाया है। और अभी तक लाइक आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, पावर प्ले में ही आप लोगों ने भी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया तेज गति से रन बना रही उसी तरह से आप लोगों ने भी तेज़ी से लाइक देकर हमारी सेंचुरी कम्प्लीट करवा दी है। लाइक की पावर प्ले में ही आप लोगों ने 100 से ज़्यादा लाइक दे दिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। दूसरी ये पर जब पावर प्ले खत्म होता है तो उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होती है, तो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, ये तो सिर्फ एक मिनट की ही ब्रेक है, तो जल्द से जल्द आप लोगों को ये यहाँ पर अगला ओवर शुरू होने से पहले स्कोर दिखाते हैं। यहाँ पर स्कोर कार्ड देखिए, कुछ भाई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि स्कोर कार्ड दिखाइए कि कहाँ ये मैच कैसा चला है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा रन बनाए नहीं है, 6 पर आउट हो गई थी एमी जॉन्स, डैनी भी 8 रन बनाकर आउट हो गई 9 गेंदों में। नेट सीवर ब्रंट नॉट आउट जरूर लौटी, 53 गेंदें खेली उन्होंने 58 रन बनाने के लिए, अर्धशतक जरूर लगाया नेट सीवर ब्रंट ने, लेकिन उसके लिए 53 गेंदें खेली, स्ट्राइक रेट अपना बढ़ा नहीं पाई आज उतना। 23 रन बनाए कैप्सी ने, हैदर नाइट आज जल्दी आउट हो गई सिर्फ 2 रन बनाकर, और अंत में फ्रेया कैंप ने 28 गेंदों में 44 रन बनाए थे, 4 चौके और 1 छक्का लगाकर, जिनकी बदौलत इंग्लैंड 150 रन बनाने में कामयाब हुई और 151 रनों का टारगेट दिया। और ये देखिए गेंदबाजी कितनी ज़बरदस्त रही थी आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, किन गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी, 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था, 1 विकेट चटकाया किम गार्थ ने, लूसी हैमिल्टन को भी 1 विकेट मिला, 1 कप्तान ने सोफी मोलिनेक्स ने विकेट चटकाया और एनाबेल सदरलैंड को भी 1 विकेट हासिल हुआ। तो सभी खिलाड़ियों ने मिलजुल कर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि एशले गार्डनर गेंदबाजी करते हुए काफ़ी महंगी साबित हुई, 3 ओवर में 32 रन दिए उन्होंने और कोई विकेट भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम को 150 तक रोकने में कामयाब हो गई है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। और अब रन चेज करते हुए 6 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पावर प्ले में ही पूरी तरह से मैच अपनी पकड़ में कर लिया है। जॉर्जिया वॉल जरूर 9 रन बनाकर आउट हुई, एकमात्र विकेट जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया का गिरा है वो जॉर्जिया वॉल का, जो 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गई 2 चौके लगाकर। और अब बेथ मुनी और लिचफील्ड के बीच ज़बरदस्त पार्टनरशिप होती हुई, यहाँ पर तेज गति से बल्लेबाजी कर रही है लिचफील्ड, 12 गेंदों में 17 पर और 19 गेंदों में 28 पर। लॉरेन बेल को एकमात्र विकेट मिला है, उन्होंने जॉर्जिया वॉल को बोल्ड किया था। पावर प्ले खत्म हो गया है, उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था वो भी अब खत्म हो चुका है, तो चलिए चलते मुकाबले की तरफ। लिंस स्मिथ ने किया था पिछला ओवर और अब फ्रेया कैंप आ चुकी है गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले खत्म होने के बाद तेज गेंदबाज फ्रेया कैंप को गेंद थमाई है कप्तान नेट सीवर ब्रंट ने, विकेट की उम्मीद लगाकर आज बल्लेबाजी अच्छी की फ्रेया कैंप ने, अच्छी ऑलराउंडर है, देखते विकेट चटका पाएंगे नहीं। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, गेंद काफी देर हवा में थी लेकिन नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थी। डीप स्केल के इलाके पर चार्ली डीन मौजूद थी जिन्होंने यहाँ पर कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए, डबल जरूर चुरा लिए ओवर की पहली गेंद पर बेथ मुनी ने, 64 पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आप लोग लाइक और वोट जरूर करते चलिए, आप लोगों को क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया ये सब टारगेट को चेज कर लेगी? अभी तक तो आप सभी भाई लोगों ने ज़्यादातर वोट किए हैं कि यस ऑस्ट्रेलिया चेज कर लेगी। सिंगल मिल चुका है इस गेंद पर फ्रेया कैंप के खिलाफ बेथ मुनी को, 21 गेंद में 31 पर पहुंची बेथ मुनी, और लिचफील्ड 12 गेंदों में 17 पर। जीत के लिए 82 गेंदों में 86 रन चाहिए, यह मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 82 गेंदों में सिर्फ 86 रन ही चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट अब तो 6.5 से भी नीचे आ चुका है। ओवर की है तीसरी गेंद, इस बार लिचफील्ड ने फिर से मिड विकेट के इलाके पर शॉट लगाकर तेजी से सिंगल बटोर लिया, दूसरे की भी कोशिश करना चाहती है लेकिन मना किया वहां पर बेथ मुनी ने, अपने पास स्ट्राइक रखेंगी बेथ मुनी एक बार फिर से। 3 गेंदें बाकी अभी भी इस ओवर की, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट तभी करेंगी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जब आसानी से हो रहा होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट उतना ज़्यादा है नहीं, तो रनआउट के रूप में कोई विकेट गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है पर ऑस्ट्रेलिया को। ओवर की है चौथी गेंद और ये गेंद भी निकल गई है बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए, हालांकि ये फ्रेया कैंप की गेंद अच्छी थी, बैट के बॉटम हिस्से पर लगी है गेंद और विकेट कीपर पकड़ नहीं पाई, चौका निकल गया एक और। बड़ी तेजी से ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर बल्लेबाजों से रन आते हुए 4 रन एक और मिल गए और 70 पर पहुंच चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम 10.5 के करंट रन रेट के साथ, जबरदस्त बैटिंग चलती हुई। अब तो 80 गेंद में 81 रन ही रह गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से यह मुकाबला अपने नाम कर सकती है। अगर इंग्लैंड को जीतना है तो विकेट चटकानी पड़ेंगी, और यह 29 गेंदों में 53 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी है, इस चौके के साथ 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी है, और तेजी से एक सिंगल चुरा लिया एक और ओवर की पांचवी गेंद पर बैथ मूनी ने सिंगल चुरा लिया है। हर चौके के बाद बैथ मूनी ने अभी जो 6 चौके लगाए हैं, हर चौके के बाद उन्होंने सिंगल जरूर चुराया है। स्ट्राइक रोटेट भी करती हैं बाउंड्री झड़ने के बाद। 23 गेंदों में 36 पर पहुंच चुकी है बैथ मूनी, और फैबी लिचफील्ड 13 गेंदों में 18 पर। ओवर की आखिरी गेंद लिचफील्ड ने स्ट्राइक पर मिड विकेट के इलाके पर शॉट लगाकर सिंगल आसानी से बट तोड़ लिया है। सिंगल के साथ ओवर

0: सकते हैं। अगले 10 ओवर में 80 रन तो आसानी से बना लेगी ऑस्ट्रेलियन टीम। 150 रन बनाए थे आज इंग्लैंड की टीम ने, 151 रनों का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक विकेट जरूर उनका जल्दी गिर गया था जब जॉर्जिया वॉल लॉरेन बेल की गेंद पर आउट हुई थी, बोल्ड हुई थी, बैट का इनसाइड एज लगा था, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी मौका दिया नहीं है अपना विकेट चटकाने का इंग्लैंड को। लेकिन अब विकेट टेकर गेंदबाजी करने के लिए आई है सोफी एक्लिस्टन, इंग्लैंड की शानदार स्पिन गेंदबाज सोफी एक्लिस्टन, वो विकेट जरूर चटकाती हैं। देखते हैं इस पार्टनरशिप को तोड़ पाएंगे नहीं। 32 रनों यहां पर 32 गेंदों में 56 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है फिबी लिचफील्ड और बैथ मुनी के बीच, उसे तोड़ पाएंगी सोफी एक्लिस्टन या फिर नहीं। अपना स्पेल का आज पहला ओवर लेकर आई है, 8वें ओवर में सिंगल के साथ शुरुआत की फैबी लिचफील्ड ने इस ओवर की और स्ट्राइक दी बैट मुनी को, और बैट मुनी ने भी यहां पर मिड विकेट के इलाके पर शॉट लगाकर सिंगल चुरा लिए हैं। तो सोफी एक्लिस्टन के खिलाफ पहली दो गेंदों पर दो सिंगल आ चुके हैं और 74 पर पहुंची ऑस्ट्रेलियन टीम। और हम लोग भी 150 लाइक की तरफ पहुंच रहे हैं, जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाते चलिए, सिर्फ 10 लाइक और चाहिए 150 तक पहुंचने के लिए। उम्मीद है आप लोग इसी ओवर में 150 लाइक कंप्लीट कर देंगे। इस समय हमें 1100 से ज़्यादा भाई लोग देख रहे हैं, तो 150 लाइक तक पहुंचना मुश्किल होना नहीं चाहिए। एक साथ आप लोग 40-50 लाइक देकर भी हमारी इस लाइव स्ट्रीम को और
1: बाहर आई उस लेग साइड की तरफ खेलने के लिए, आगे डाली वो लेंथ लेकिन फिर भी तैयार थी उस शॉट के लिए, शायद उससे बेहतर जिस दिशा में वो मारना चाहती थी, बट ऑस्ट्रेलिया विल टेक इट। अब रेंज दिखा रही है अपनी, स्टेप आउट करके अब ऑफ साइड की तरफ रूम था, एक रन और, रन रेट अभी भी 10 से ऊपर।
2: और अब बेथ मुनी की बात कर रहे थे ना, बेथ मुनी जब आई थी ना ऑस्ट्रेलिया टीम में तो मिडल ऑर्डर खेलती थी, तो उनके पास जगह थी नहीं टॉप ऑर्डर में खिलाने की। उन्होंने बड़ा समय बिताया है अलग अलग जगहों पर बैटिंग कर करके और हर जगह उन्होंने रन बनाए हैं, उसके बाद उनको ओपनिंग का स्लॉट मिला है और जहां वो अब रन बनाती हैं टेस्ट मैच में फिर भी नीचे आ जाती हैं, लेकिन जहां भी खेलती हैं रन्स बनाती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। 80 पर एक 8 के बाद।
3: हेल्प मी गेट पापा जीज एसडी रोरिंग अगेन।
0: टीम ओवर की आखिरी गेंद, इस बार बैट होनी थी स्ट्राइक पर, हल्के हाथों से मैदान के इलाके पर शॉट लिया था, आसानी से सिंगल लेवर टोली अगले ओवर में, फिर से स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए बैट मुनी ने, तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ती हुई बैट मुनी 25 गेंदों में 38 रन पर पहुंच चुकी है, 12 रन चाहिए उन्हें अपना एक और अर्धशतक लगाने के लिए। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले यहां पर सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने 61 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी बैट मुनी ने और नॉट आउट पवेलियन लाटी थी अपनी टीम को जीत दिलाकर, और यहां पर भी 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रही है बैट मुनी। पहले 8 ओवर में 80 रन जड़ दिए ऑस्ट्रेलिया ने, जी हां 8 ओवर में ही 80 रन जड़ दिए 10 के रन रेट के साथ, और रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ 5.92 का, जी हां 6 से भी नीचे रिक्वायर्ड रन रेट। अब गेंदें बढ़ चुकी हैं और रन कम चाहिए, 72 गेंदों में 71 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए। और इंग्लैंड की तरफ से अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर डैनियल गिब्सन अपना पहला ओवर लेकर, देखते हैं कैसी गेंद,
4: जैसे बल्लेबाजी हुई है कोई भी गेंदबाज को सेटल नहीं करने दिए, और यही एग्रेशन है ऑस्ट्रेलियन टीम का, ये रुकते नहीं है, ये बड़े बड़े शॉट्स और क्रिकेटिंग शॉट्स मारते, बिल्कुल काफी प्रोएक्टिव रहे, हर बार रूम भी बनाया, कट खेले बाद में लेट कट, इतना बढ़िया टाइमिंग के साथ, और कोई भी गेंदबाज किसी को भी सेटल होने दिए, और इतने बढ़िया कदमों का इस्तेमाल किया दोनों बल्लेबाज ने। लेफ्ट हैंडर को गेंदबाजी ऐसे भी करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
2: नो ओवर चल रहा है, ये दो टीमें अलग क्यों नजर आ रही हैं आज, 8 ओवर में से 6 ओवर में 8 के ऊपर के रन रेट से रन बनाए हैं, वहीं सामने जो टीम है उन्होंने केवल 2 बार ऐसे किया था, ये अंतर अभी तक नजर आया है। साथ हमारे वेदा कृष्णमूर्ति जुड़ चुकी है सीधा लॉट से, वेदा यहाँ पे पड़ा भारी ऑस्ट्रेलिया का और ये उम्मीद भी थी।
5: एज एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इनिंग्स चल रहा है,
2: स्ट्रेट डाउन

0: The ground, powerful strike. FE Village feels it. ये रुकेंगे नहीं, इनको पता है कि आगे है इस वक्त और कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश चल रही है दोनों बैटर से.
1: कमाल का शॉट, ये बहुत ही बेहतरीन सीधा शॉट मारा यहाँ पर. ये रुकती नहीं है, ये हमेशा शॉट खेलती रहती है. और जो इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज भी है ना, देखो खत्म हो गई है, ऐसी बल्लेबाजी हो रही है ना, बिल्कुल टॉप पे आने दिया नहीं है इंग्लैंड को. पहली विकेट गई थी, उसके बाद भी देखो रन रेट 10 का रखा है उन्होंने, उससे भी ज़्यादा बढ़ के हो गया अभी तो. और कोई भी गेंदबाज को सेटल नहीं, पर आज मैं थोड़ा सा परेशान हुआ लॉरेन बेल्स के साथ, गेंदबाजी बहुत ही ख़राब की उन्होंने. अब मेन गेंदबाज हो आप, अच्छी गेंदबाजी नहीं करते हो तो बिल्कुल शुरुआत ही आपकी ख़राब हो जाती है. पर यह काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानती है ऑस्ट्रेलियन टीम.
2: केवल एक ही सफलता मिली है बेल को अभी तक, उसके बाद की कहानी इस मुकाबले में अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने लिखी अपनी सोच से. और किस तरीके से आप टीम बनाते हैं, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं वेद और किरण सर, ये उसी का एग्जाम्पल है. कोई भी टीम अगर सीखना चाहती है तो ऑस्ट्रेलिया से इस तरीके से सीख सकते हैं कि यस आप आज ये प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की तैयारी वो चीज़ है जो आप जरूर सीखना चाहेंगे.
1: माइंडसेट कमाल का इनका, और इंटेंट के साथ खेलते हैं. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और अच्छी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की. दूसरे रन की तलाश में, मौका है रन आउट का, बिल्कुल यहां पर चांस है, थोड़ा सा दूर रह गए ऐसा लगता है मुझे.
2: एक समय ऐसा लगा कि बहुत आगे निकल गई है. थर्ड एम्पायर की तरफ रुख हो रहा है.
3: Balls in the gloves. That's there in the air. Grounded there. Yeah, grounded there. Thank you. Have a decision for the big screen.
2: Not out. 88 for one.
4: Help me prep for my UPSC exam.
5: Tropic of Cancer, Surat.

0: बोरिंग फैमिली रोड ट्रिप पे हूँ, बस कुछ फन दिखा दो।
1: गेंदबाजी कर पाएंगे, अच्छी गेंदबाज है डेनियल गिब्सन।
2: लॉरेन बेल वापस आई है तो अलग क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो गुच्छे में विकेट चाहिए होंगी। वेदा क्या नेट सिविल ब्रेंड के गेंदबाजी ना करना एक थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है?
3: इससे पहले रन आउट अपॉर्चुनिटी जो था, डाइव ने यहां पे बचाया एफी विलेज फील्ड को, दो रन नहीं था शायद वहां पे। पहले मूनी ने पुश किया, उसके बाद क्विक टर्न अराउंड, बढ़िया टेक्निक फी विलेज फील्ड के द्वारा। बट रीमा जिस तरीके से नेट सिवर एज अ बॉलर कितना इंपॉर्टेंट है टीम में ये दिख रहा है। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पे आ रही है फी विलेज फील्ड के बाद से, क्रूज मोड में है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया।
2: जिस मोड में है उस समय मूड खराब कर सकती है इंग्लैंड फैंस का। कदमों का प्रयोग किया, सीधे बल्ले से खेला, स्पिन को खेलने की जो कला इनके पास है उसके तो हम फैन बन चुके, लेकिन पेसर को जिस तरीके से कदमों का उपयोग करती है वो देख के और मजा आता है।
4: निकल के खेलती है, कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बॉल, ये हवा में बिल्कुल चौका, वन बाउंस, ये लगातार दूसरा चौका लिचफील्ड का। फिर से स्लो ओवर वन डाला था, अच्छा पिक किया यहाँ पर, देखिए फुल टॉस भी स्लो ओवर वन कभी कभी विकेट दिलाता है आपको। तो जो फील्ड लगाई ना आप स्लो ओवर वन डालो और सामने लॉन्ग ऑफ ले लो आप, ये कदमों का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर पूरा फायदा उठाया उसका, गलत गेंद थी।
2: यहाँ पे तो आप कहीं भी फील्ड ले लो, खराब फील्ड गेंदबाजी के लिए आप फील्ड नहीं सेट कर सकते। जिस तरीके से गेम चलाते हैं ना ऑस्ट्रेलियन, इनको अगर आपको हराना है तो एक तो चक्र भी बुनना पड़ेगा, आपको उस दिन सबसे अच्छा खेलना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी सामने ऑस्ट्रेलिया खराब खेले। लेकिन आज की ये साझेदारी है ना, इसमें वो अटैकिंग मोड नजर आया है, इसमें वो सोच नजर आया है कि ये फाइनल खेलने नहीं फाइनल जीतने आया है, और जीत की नींव किस तरीके से रखते हैं इस साझेदारी ने बता दिया।
4: कदमों का इस्तेमाल जबरदस्त करते हैं और देखो सामने भाग के जा रहे हैं, जो गेंदबाज आ रहा है गेंदबाजी करने है उसके सामने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और उसका पूरा फायदा उठाया है। ये देखो ओनियन लिचफील्ड, आज उनकी बाउंड्रीज देखो कमाल की है, जो लाल डॉट्स है ना बाउंड्री वाली डिलीवरीज है। आगे कदमों का इस्तेमाल करते हैं, बैक फुट पे कमाल के खेलते हैं।
2: दस रन इस ओवर में आ चुके हैं, अंतिम ही गेंद है। धीमी गति है गेंद, इसे एक रन के साथ 10 ओवर समाप्त।
5: हाउ कैन आई अवॉइड मल्टीपल बैंक विजिट्स फॉर माई होम लोन?

0: मिशन वर्ल्ड कप 2027, मेन इन ब्लू ने इंग्लैंड में रख दिए है कदम। क्या रो तो इस चुनौती पर भी हावी होंगे? देखिए इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ओडीआई सीरीज 14 जुलाई से स्ट्रीमिंग लाइव जियो हॉटस्टार पर।
1: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप विजेता पहला एडिशन इंग्लैंड ने जीता था, उसके बाद की कहानी ऑस्ट्रेलिया ने लिखी थी 7 बार 2010, 12, 14, 18, 20 और 23। 6 बार आप जीत चुके हैं, 7वीं बार जीतने के आप कगार पे खड़े हैं, ऐसा पहले किसी टीम ने नहीं किया है और मुझे लगता है आने वाले समय में कोई कर भी नहीं पाएगी जिस तरीके की ये टीम है। 2024 न्यूजीलैंड ने जीता था, इस टूर्नामेंट में बाहर हो चुके, लेकिन इस तरीके की ऑस्ट्रेलिया टीम बनती है ना, आप एक बार अगर जीते हैं समझ में आता है, अगर आप लगातार जीते ना तो सामने वाली टीम को आप समझ नहीं आते। लेकिन एक सवाल ये था कि इंग्लैंड में अभी तक कोई भी विश्व कप नहीं जीता है ऑस्ट्रेलिया, आज वो भी एक इतिहास के पन्नों में जोड़ने का मौका है और इस समय आप कहेंगे कि उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इस एक रन के साथ टीम का शतक तो हुआ पूरा, अब केवल 51 रन की जरूरत है। विदर टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन गया है और आज वो लॉर्ड्स की बालकनी में मौका है इनके पास वो ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाने का।
2: ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जब सब कुछ हासिल किया है उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में, ये आइकॉनिक स्टेडियम में एक फोटोग्राफ ट्रॉफी के साथ वो पेंडिंग था, आज बालकनी में दूसरी तरफ सेलिब्रेशन होगा। हर बार वुमेन्स वर्ल्ड कप में ये होम पेविलियन में सेलिब्रेशन हुआ है क्योंकि इंग्लैंड हमेशा जीती है वर्ल्ड कप यहाँ पे।
3: देखो ये भी क्रिकेट का मक्का है, उस पर आप वर्ल्ड कप जीतते हो तो बिल्कुल एक मजा आता है, एक फीलिंग अलग सी होती है और अब तक एक भी ट्रॉफी उन्होंने मारी नहीं इंग्लैंड में, तो बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत करेंगे और इसके आगे वाले भी वर्ल्ड कप आने वाले हैं, बिल्कुल वहाँ पे इंग्लैंड में जीत के ही आएंगे, ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट खेलेंगे। और ये कमाल खेल प्लेयर है, रिवर्स स्वीप छक्का, इनका रिस्ट कमाल का है, ताकत भी है और काफी रिस्ट ही है।
1: आज इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रखा है, इस तरीके से उस स्विच इट तो था ही, लेकिन जो पावर थी वो फ्लैट सिक्स की, उफ ये खिलाड़ी अलग है, स्पेशल टैलेंट है ये, ऑस्ट्रेलिया का आज भी है और ऑस्ट्रेलिया का कल भी है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया का आज है ना लिचफील्ड, ये आज बिगाड़ सकते हैं और इंग्लैंड का हर गेंद पे रन बनाने की सोच इस खिलाड़ी को अलग करती है। 11 ओवर समाप्त, 107 पे एक।
4: हेल्प मी गेट पापा जीज़ एसडी रोरिंग अगेन।

0: ये वक्त का पहिया है कुलदीप कुमार, कब किस तरफ घूम जाए पता नहीं चलता। इस कुर्सी के ताकत के घमंड को जो तुमने अपने सिर पे
1: दो चाके जड़ दिए थे लिचफील्ड ने वही स्ट्राइक पर, एक बार फिर से मिड विकेट के इलाके पर शॉट लगाकर सिंगल आसानी से बटोर लिया लिचफील्ड ने और स्ट्राइक दी है ओवर की आखिरी गेंद के लिए बेथ मूनी को। दोनों ही खिलाड़ी अपने अर्धशतक की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ती हुई पर लिचफील्ड
2: लॉर्ड्स का ये आइकॉनिक मैदान, फैंस 100% अटेंडेंस में यहाँ पे पहुंचे हैं और ये गेंद कहाँ पहुंचेगी, ओवर द कवर्स चार के लिए। बेथ मूनी अगर पावप्ले में सेट हो जाती है तो विन परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया का 100% होता है और आज जिस तरीके का बल्लेबाजी हो रही है वो 100% ही रहने वाला है।
3: रूम बनाया था यहाँ पर, देखो कहाँ लेग स्टंप के बाहर कितने दूर चली गई थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक कमाल खेलती है ये शॉट, क्लास शॉट है, ओपन करके ओवर द कवर्स इंटेंस से खेलते हैं, जबरदस्त उनका माइंड सेट एग्रेशन वो दिखता है, यानी हमको मैच जीतना है और कोई भी गेंदबाज को अब तक किसी को सेटल होने दिया नहीं है लोग।
2: बड़ी देर बाद ये डॉट गेंद आई है विदा, आज ऑस्ट्रेलिया की जितनी तारीफ करो उतना कम है सबसे ज्यादा रन T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में बेथ मूनी, इसलिए कह रहे थे जितनी तारीफ करें कम है। मैग लेनिंग को अपने फॉर्मर कैप्टन को बीट किया, 407 रन उनके नाम थे, 408 इनके नाम है और आज मौका है वो नाबाद रहने का।
4: एक चैंपियन स्क्वाड को कैसे खेलना है, परफेक्ट लाइव एग्जांपल दिया है ऑस्ट्रेलिया ने आज, बीट बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब चीज में टॉप क्लास परफॉर्मेंस।
2: एक चीज मैं आपसे और किरण से दोनों से पूछना चाहूंगी, पहले आपसे कि कौन सी वो एक चीज है जो ऑस्ट्रेलिया से बाकी टीम सीख सकती है स्पेशली इंडिया।
4: तो पहली तो इनका डेप्थ बहुत बढ़िया है एंड आप अगर टीम देखोगे ज्यादा चेंजेस नहीं होता उनका, प्लेयर्स को सेटल होने देते हैं, एक रोल दिया जाता है एंड उसी रोल में कंटिन्यूटी आप देखते हो, आपको जब कॉन्फिडेंस मिलता है सामने की तरफ से कि आप ये सीरीज अगर 5 मैच की सीरीज और 5 मैच आप खेलोगे। एज ए प्लेयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो परफॉर्मेंस, अगर आप इंटरनेशनल लेवल में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपके पास स्किल सेट तो है ही, आप रन बना के पहुंचे हो या विकेट निकाल के पहुंचे हो, पर टॉप ऑफ द टेबल रहना है, टॉप परफॉर्मेंस आना है तो आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए,
3: फिर से डालनी पड़ेगी गेंद। बिल्कुल एग्री करता हूं वेदा से, पर एक प्रोसेस होता है और आपको ज्यादा ऑलराउंडर लाने हैं आपको इंडियन टीम में और वेरिएशन लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर, अच्छी ओवर ये कमाल की ओवर डाली अब तक 113 पर एक ऑस्ट्रेलिया।
1: हमारी इस लाइव स्ट्रीम पर थैंक यू सो मच 200 लाइक कंप्लीट करवाने के, ये ओवर अच्छा गया अभी तक, लिंसे स्मिथ का सिर्फ 3 सिंगल ही आए हैं। इस बार रिवर्स स्वीप है, शॉट लगाया और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार बेहतरीन अंदाज में, ये छक्का जड़ दिया लिचफील्ड ने, एक तरह से ये स्विच हिटर शॉट था, ग्लेन मैक्सवेल की तरह बैटिंग करती है, जैसे ही बैटिंग करने के लिए आई थी तभी आपको बता रहा था और आप लोग भी जानते होंगे लिचफील्ड ग्लेन मैक्सवेल की तरह आड़े तिरछे शॉट लगाना पसंद करती हैं और ये स्विच हिट लगाकर उन्होंने गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए।
5: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 38 रन 48 गेंदों में और विकेट हो हाथ में 9, आप कहेंगे कि यहां पे लगभग चीज निश्चित हो चुकी है जिसकी तलाश में ऑस्ट्रेलिया आई थी इंग्लैंड की सरजमी पे। 49 पे नाबाद बेथ मूनी ऑन स्ट्राइक, ये आदत ये परंपरा ये रिवायत, वर्ल्ड कप फाइनल एक बड़ा मंच एक आइकॉनिक मैदान, क्रिकेट की सबसे पुरानी राइवलरी यानी कि सबसे पुराने राइवल सामने और ये बल्ला एक बार फिर से उठेगा, बेथ मूनी का अर्धशतक एक प्रेशर मुकाबले में फिक्स डिपॉजिट की तरह
6: बेहतरीन बेहतरीन अंडर प्रेशर कैसे बैटिंग करना है वो सिखाते जा रही है हम सबको। सबसे बड़ी बात है ये थर्ड टाइम उन्होंने किया वर्ल्ड कप फाइनल में, उनको पता है कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, इसलिए वो सबसे अलग है, इसलिए वो सबसे डेंजरस बैटर है वर्ल्ड क्रिकेट में।
4: रन मशीन मुनी, एक और 50।
5: मन तो इनका भी था कि एक चौका लगा के अपना भी 50 पूरा कर लें। पीबी लिचफील्ड इस बल्ले की गूंज का इंतजार इनसे भी रहा है, लेकिन बैक टू बैक 50 अब बेथ मुनी के लिए, जहां पे थोड़ा सा शिखा सवाल उठा कि क्या बेथ मुनी अपना बेस्ट फॉर्म तलाश रही है। ये वाइड है, दोबारा डालनी पड़ेगी। इंग्लैंड की स्टैंड इन स्किपर कई बार जो रही है इस कैंपेन में, उनको कैसी सवाल उठा कि एक ही अर्शा तक है बेथ मुनी का, सडनली सेमीफाइनल फाइनल, देयर यू गो।
4: बेथ मुनी बिग मैच प्लेयर हैं और ये बहुत क्लोज होगा शायद, एम्पायर ने नॉट आउट दिया है। चार्ली डीन बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं और लेफ्टीज को बढ़िया ही डालेंगी। बेथ मुनी की बात कर रहे थे हम, बेथ मुनी का एक ही हमेशा शॉर्ट कमिंग उनके अगेंस्ट जो बोला जाता है उनका स्ट्राइक रेट, बट इस मैच में 135 या 140 की स्ट्राइक रेट से खेल रही हैं एंड हैविंग लिचफील्ड ऑन द अदर साइड हैज हेल्प्ड हर इन द सेंस की फ्लो बहुत अच्छा रहा है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में। ये जो ओवर्स पहला विकेट गिर गया था उसके बाद भी ये शायद इंग्लैंड के बल्लेबाजी के इनिंग्स में थोड़ा सा पीछे रह गई थी इंग्लैंड, फ्लुएंसी नहीं आ पाई थी इंग्लैंड की बैटिंग में।
5: तो शिखा की बात बोरो करने वालों की, लूसी हैमिल्टन नंबर 11 पे है बैटिंग के लिए उपलब्ध, उनको आप 5-6 पे भी बेच सकते हैं। गजब की गहराई है और वो गहराई गहरे संकट में ऑपोजिशन के लिए इसलिए और तब्दील हो जाती है जब आपके प्रूवन मैच विनर्स इस तरीके से बल्ला चलाते रहते हैं, आपके लिए वो कभी डाउनफॉल या कभी उस तरह का कोलैप्स नहीं होता।
6: बिल्कुल सही बोले आपने, जिस हिसाब से उन्होंने ना प्रेशर को हैंडल किया, जिस हिसाब से उन्होंने नर्वस सिस्टम को सेटल डाउन होने दिया, बिहाइंड द स्टंप भी बहुत बेहतरीन कलेक्शन थी, जो कैच था वो, और इसी के साथ एक ब्रेक थ्रू यहां पर 100 रन के पार्टनरशिप को ब्रेक थ्रू दिया चार्ली डीन ने अगेंस्ट ऑफ स्पिनर। अगेन यहाँ पर लिचफील्ड को आउट होते हुए देखने को मिला हम लोगों को, ये मैचअप हमेशा था हमेशा रहेगा।
4: चार्ली डीन बहुत ही समझदार गेंदबाज, आगे की गेंद को पीछे खेलने गई वो, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी चार्ली डीन की। यही हम बात कर रहे थे जुलुदी, और यहाँ पे फीबी लिचफील्ड वापस जाती हुई 35 बॉल्स में 48 बनाकर ऑस्ट्रेलिया 117 for 2।

0: ये कहानी है इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड की।
1: फर्स्ट एवर टीम इंडिया इन ब्लाइंड क्रिकेट, आई थिंक दे आर राइटिंग हिस्ट्री।
2: हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है
3: इस वर्ल्ड कप में गोल्ड लेकर ही आना।
4: एक सौ पिचासी रन इस विश्व कप की कैंपेन में, या एब्सोल्युटली अगर बेट मूनी आपके लिए गारंटी है रनों की एक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, हैट्रिक ऑफ 50 लगा चुकी हैं, एलिस पेरी के 8 आईसीसी टाइटल हैं। लेकिन पुशबैक किया यहाँ पे क्रीज पे,
5: यही हम बात कर रहे थे कि जब लिचफील्ड आई थी तो इंग्लैंड को टैक्टिकली एक रिस्क ले सकते थे वो शायद टाली डीम को एक और ओवर देकर, जो जुलूदी भी वही कह रहे थे। यहाँ पे फ्रेया कैंप अपनी कटर्स डालने के लिए आ गई हैं, वो बहुत बढ़िया, इन्होंने शायद थोड़ा पैट्स पे चली गई थी वो, और ये चौका डीप स्क्वायर लेग की तरफ, बॉल को अच्छा ग्लाइड किया था बेथ मूनी ने, मैच विनिंग पारी खेलती हुई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मूनी।
6: समय है उनके पास शॉट से खेलने के लिए, थोड़ा सा बॉल डाउन द लेग था, फील्डर थी वहां पे, बट फिर भी उन्होंने जिस हिसाब से प्लेसमेंट किया ना, इतना कंट्रोल है उनके बॉटम हैंड पे भी।
4: और भाग्य भी पूरी तरीके से साथ चमकता हुआ, क्योंकि जुझारू हैं, क्योंकि जोखिम उठाती हैं, क्योंकि मुश्किल समय में मुश्किल रन बनाती हैं, तो थोड़ी सी किस्मत भी डिजर्व करती है बेथ मूनी।
5: फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, पूरे इनिंग्स में हमने देखा है जुलूदी की कभी एक जगह पे खड़े होकर बैटिंग नहीं किया है, लैटरली मूव करके बॉलर्स को खेल रही हैं ये। यहाँ पे वो थोड़ी सी लकी रह गई, इनसाइड एज लेके बाउंड्री चला गया है फ्रेंच कट, बट लाइक यू सेड बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने अभी तक। स्ट्राइक रेट है उनका 4 इनिंग्स में 220 रन, 220 का औसत, नॉट आउट रही हैं बहुत सारे इनिंग्स में ये, और स्ट्राइक रेट भी बढ़िया।
4: क्या हाथ लगाए फ्रेया कैंप का, अगर ऐसा है तो एलिस पेरी की पारी समाप्त हो सकती है, नहीं लगा और क्लेम भी नहीं किया। बेथ मूनी की बात कर रहे थे अंजुम चोपड़ा के साथ झूलन, 2016 में जब अलीसा हिली को इंजरी हुई तब पहली बार मौका आया ऑस्ट्रेलिया के लिए, ओडीआई डेब्यू पे अर्धशतक जड़ा, ब्रिस्बेन हीट को 2 बार टाइटल्स जिताए, फिर पर्थ स्कॉचर्स गई तो वहां पे भी टाइटल, 2 बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड की विनर, और उसके बावजूद शायद उतना क्रेडिट नहीं। ये हम चेक कर रहे हैं कि फिंगर्स लगी हैं कि नहीं, ऑल्दो फ्रेया कैंप ने बिल्कुल क्लेम किया नहीं।
6: देखिए यहाँ पर थर्ड अंपायर के पास गए क्या नहीं पता नहीं, बट एक चीज तो है,
4: टीवी अंपायर बहुत इंटरेस्टेड है,
5: गेंद अगर डिफ्लेक्ट होती तो जिस तरह से वो घूम रही है, रिवॉल्व हो रही है, रिवॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है लगा है हाथ में जुलूदी, जुलूदी कहते हैं लगा है।
4: ओके, लगभग हर एंगल ट्राई कर लिया, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एलिस पेरी स्ट्राइक पे है। चेक तो बहुत समय से किया जा रहा है लेकिन रेफरल अभी हुआ है अंपायर द्वारा। ओके इंटरेस्टिंग, दिनेश के लिए भी बड़ा दिन है।
7: सो दिस गेट देयर Thank you. Yeah, no touch. Thank you. So, decision for the big screen.
4: Well done, TV umpire. The ultra edge का इस्तेमाल उंगलियों के लिए किया गया है। ऐतिहासिक मैदान में थोड़ा सा और इतिहास। Kemp. Room बनाया। और एक बार फिर से एक बहुत काबिल गेंदबाज को बहुत साधारण दिखाया।
6: बहुत ही बेहतरीन शॉट फिर से, बहुत जल्दी लेंथ को पिक किया, बैक के सामने था, डॉप भी सर्कल के अंदर, उसके ऊपर से खेली, इस बार कंट्रोल में है। और इस बार अभी क्रिकेट बॉल नहीं देख रही है, फुटबॉल देख रही है, जिस हिसाब से गेम को चला रही है वो अपने टर्म्स में चला रही है गेम को। 37 बॉल्स पे से 22 रन चाहिए जीतने के लिए।
4: विद द एंगल बॉडी की तरफ वो गेंद, लेकिन डॉट गेंद, एक रेयर डॉट गेंद के साथ होगी इस ओवर की समाप्ति।
8: Help me prep for my UPSC exam.
9: Tropic of Cancer, Surat.
0: ये कहानी है इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड की।
1: फर्स्ट एवर टीम इंडिया ब्लाइंड क्रिकेट, आई थिंक यार आई डोंट
2: नो, आप लोग कैसे खेलते हो, हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है।
0: जब बात इंडियन क्रिकेट टीम की होती है तो दिल में सिर्फ एक बात धड़कती है, जीत का जुनून।
3: इस वर्ल्ड कप में गोल्ड लेकर ही आना।
10: यार एसी नहीं चल रहा है क्या इस घर में?
11: एसी वाला रूम सिर्फ मेरा है, इस दिस साइड बड़ा रूम दादा का, छोटा रूम मेरा, टैक्सी में ही सेटल हो जा। ए, ए, ए, ए, ए,
12: ए। नए मेहमान, नई कहानी, उड़ने की एक नई आशा, स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर।
13: 108 बेस हॉस्पिटल की नींव तीन बातों पर टिकी, सेवा, सजग, साहस, समर्पण।
14: यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं स्ट्रेचर पे लेकिन जाते हैं अपने पैरों पे।
15: इनसाइड एज लगातार, फिर भी गेंद अब बाउंड्री के पार चली गई चार रनों के लिए। वैसे ही शॉट लगाती जा रही है बैट मुनी, गैप ढूंढती जा रही है और जिस गेंद पर कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं उस पर भी उन्हें चाका मिल गया है। 125 रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। अब बस 26 रन और चाहिए 39 के लिए। इस बार फ्रेया कैम के पास अपने ही फॉलो थ्रू में कैच करके कॉटन बोल करने का चांस था बेथ मुनी को, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया गया फ्रेया कैम्प की तरफ से, पकड़ नहीं पाई ये कैच।
5: 2016 और 2017 का भी सिमिलर कहानी था। 2016 T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के साथ हारे थे, 2017 में भारत के साथ सेमीफाइनल हार के, उसके बाद जो 2028 से लेके 2023 तक उन्होंने वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते हैं। ऑल्सो to be remembered is Meg Lanning के retirement के बाद ये शायद ऑस्ट्रेलिया का पहला टाइटल होगा।
4: It never easy, right? जब कप्तानी बदली जाती है, सोफी मॉलिन्यू को वो जिम्मेदारी दी गई, कि चलिए आप वही कीजिए जो Meg Lanning ने एक दशक किया है स्ट्रेट अवे। और आज बड़ा खास दिन है, बचपन में इनका सपना था, ऐसा मेल जोन्स बता रही थी टॉस पे कि वो टेस्ट मैच यहाँ पे देखना चाहती थी अपने परिवार के साथ। आज उनके पिता मौजूद हैं स्टैंड्स में, बतौर कप्तान अपनी टीम को एक विश्व कप जीतते हुए जिताते हुए देखने का सम्मान हासिल होगा।
5: बिल्कुल, एंड सबसे अंडररेटेड क्रिकेटर रही ऑस्ट्रेलियन टीम में सोफी मॉलिन्यू। हम जब लोग खेलते थे हम उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, ऑब्वियसली उनके बॉलिंग के ऊपर चर्चा होता था हम लोगों को, बट कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था वो कभी एक दिन ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन बनेगी एंड विश्व कप में जाके टीम को लीड करेगी। एंड जिस हिसाब से आज का मैच चल रहा है, अगर जीते तो 7-5 ट्रॉफी उनके हाथ से ही आएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम में। WBBL में तो शी इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड बैट कैप्टन। रेनेगेट्स के अंडर उन्होंने 2024 में WBBL टाइटल भी जीता है। मैं उस साल ब्रिस्बेन हीट से हम लोग फाइनल में हारे थे उनसे, और यहाँ पे इंग्लैंड ने लास्ट दाव खेला है, उनकी जो बेस्ट बॉलर है चार्ली डीन उनको ले आए हैं अपने चौथे ओवर के लिए।
4: जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, थोड़ा सा कम्युनिकेशन लॉस, लेकिन पूरी तारीफ स्मिथ की, ये जरूरी है। आप मैच ना जीते कोई बात नहीं, लेकिन जो फैंस आए देखने आपकी टीम को, अंत तक वो लड़ाई लड़नी चाहिए।
5: बिल्कुल, क्वालिटी कमिटमेंट, इसलिए इंग्लैंड टीम इस कप की फाइनल पे है जिस हिसाब से यहाँ पे, और हमेशा होती है ये, हमेशा होती है वेट मुनी के साथ

0: तो अंत तक वो लड़ाई लड़नी चाहिए।
1: बिल्कुल, क्वालिटी कमिटमेंट, इसलिए इंग्लैंड टीम इस कप की फाइनल पे है जिस हिसाब से यहाँ पे, और हमेशा होती है ये, हमेशा होती है वेद पुनी के साथ